0: साहिब तुठै जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है जे सेती कसम समाए पौड़ी नान।

और दूजा कौन त्याई है, और दूजा कौन त्याई है। हर जुग

सब किच आपे आ, सब किच आपे आ, पौड़ी बटे क्या बने आई कुछ कहना।

0: श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवन कर रहे सी। साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 6 बज रहे ने। हुण तुसी साडी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

I'm not going to lie.

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स। तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिं खां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:42 ते फिल्मी संगीत ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम।

तवां भगत कंवर राम जी जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधी रहा हुआ। तवां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो। हियर पेश आहे तपसिरो। भारत म्यांमार रिश्तन जी साझी तारीख नस्ली सकाफती ए धार्मिक रिश्तन में जुड़ियल आहिन। भगवान बुद्ध जी धरती हुआ करे भारत म्यांमार जे माण्हुनि लाइ हिक धार्मिक ज़ियारत आहे। भारत ए म्यांमार विच में 1600 किलोमीटर खां वधीक जी लंबी ज़मीनी सरहद ए बंगाल जी खलीज में सामुंडी सरहद साझी आहे। हिक वॾो तादाद भारतीय मूल जे माण्हुनि जो म्यांमार में रहंदो आहे। भारत ए म्यांमार 1951 में दोस्ती जे मुहाइदे ते दस्तखत कया हुआ। बिन्ही धुरियन जे रिश्तन में सुठो विकास थियो हो ए हाणे बि ॾाढो मजबूत थी वियो आहे। बिन्ही धुरियन जे सहकार खे वधाइण लाइ केतिरा ई समझौता कया विया आहिनि। बिन्ही जे फ़ाइदनि जे केतिरनि ई मसलनि ते रीत सर ॻाल्हि ॿोल लाइ संस्थागत तरीक़ा यानी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म बि ठाहियो वियो आहे। रखिया जो सहकार सालनि खां मजबूत थियो आहे। सितंबर 2017 में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन ते हिकु एमओयू ऐं जुलाई 2019 में डिफेंस कोऑपरेशन ते हिकु एमओयू सही कयो वियो हो। बिन्ही तरफ़नि खां रीतिसर ख़ासि दौरा थींदा रहिया आहिनि। भारत सदियुनि खां म्यांमार जो हिकु वॾो व्यापारिक साझेदार रहियो आहे। भारत म्यांमार जो चौथो सभ खां वॾो व्यापारिक साझेदार बणिजी चुको आहे। हाणे खां पहिरीं भारत 7 नंबर ते हो। भारत जी म्यांमार खां थियण वारे इम्पोर्ट में 64% जी वाधि थी आहे। भारत ख़ासि करे म्यांमार खे दवायूं जानवरनि खां मिलण वारो सामान अनाज खाधे जो सामान मवेशियुनि जो खाधो कपह मशीनरी गाॾियूं बिजली जी मशीनरी वग़ैरह एक्सपोर्ट कंदो आहे। ख़ासि करे दवायूं हिकु वॾो एक्सपोर्ट आहे ऐं भारत म्यांमार जे मार्केट जे 60% हिसे ते कब्जो कयो आहे। भारत जी ठहियल दवायूं म्यांमार में उन्हनि जी सस्तेपण ऐं सुठी क्वालिटी करे ॾाढो इस्तेमाल कयूं वेंदियूं आहिनि। ॿिए पासे म्यांमार भारत खे दालियूं काठ जो सामान ऐं खेती बाड़ी जो सामान एक्सपोर्ट कंदो आहे। दालियूं जीअं मूंग चणा ऐं ॿियूं दालियूं भारत लाइ हिकु वॾो इम्पोर्ट आहे छो त इहे घरेलू ज़रूरत खे पूरो करण में मदद कंदियूं आहिनि। 28 मार्च 2025 ते म्यांमार में आयल ख़तरनाक भूकंप खां पोइ भारत म्यांमार जे मुतासिर माण्हुनि खे फौरी मदद ॾियण लाइ हिकु वॾो इंसानी बचाव ऐं राहत कम ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कयो हो। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार जे माण्हुनि लाइ भारत जे तरफ़ा उमेद सहारो ऐं लंबे समय जे सुधार लाइ हिकु पैगाम हो। हिन वॾे भूकंप ऐं उन खां पोइ आयल झटकनि म्यांमार जे केतिरनि ई इलाइक़नि खे मुतासिर कयो जिन में सगाई मांडले नेपीदा शान ऐं बागो इलाका शामिल आहिनि। इलाइक़े में कुदरती आफ़त जे वक़्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर जे रूप में भारत फौरी तौर ते इमरजेंसी इमदाद बचाव ऐं मेडिकल माहिरनि जी टीम राहत सामग्री जीअं खाधो पाणी तंबू दवायूं ऐं ज़रूरी सामान म्यांमार ऐं उन जे माण्हुनि खे असिस्ट करण लाइ इन मुश्किल ऐं नाज़ुक घड़ीअ में रवाना कयो। रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार जे राष्ट्रपति मिस्टर यू मिन आंग हलाइंग प्रधानमंत्री

मोदी जे सॾ ते 30 मई खां 30 जून 2026 ताईं भारत जो सरकारी दौरो कयो। उन सां गॾु हिकु ख़ासि डेलीगेशन हो जंहिंमें केतिरी कैबिनेट मंत्री, सीनियर अफसर ऐं बिज़नेस लीडर शामिल हुआ। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग जो रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार जे राष्ट्रपति जे तौर ते ई भारत जो पहिरियों दौरो हो। प्रधानमंत्री मोदी सूमर ते नई दिल्ली जे हैदराबाद हाउस में म्यांमार जे राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग सां द्विपक्षीय ॻाल्हि ॿोल्हि कई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन मीटिंग खे दोस्ती ऐं सहकार जे रिश्ते खे मज़बूत करण वारो ॿुधायो। बिनी पासे अमन, तरक्की ऐं खुशहाली लाइ भागीदारी खे अॻिते वधाइण ते रज़ामंदी ज़ाहिर कई ऐं व्यापार, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, सुरक्षा ऐं सरहद इंतज़ामिया जे इलाइक़े में वधीक सहकार करण ते राज़ी थिया। मीटिंग जे दौरान मिस्टर मोदी भारत जे म्यांमार खे हिकु भरोसेमंद पाड़ेसर ऐं पको साझेदार मञण जे वादे खे दोहरायो। प्रधानमंत्री चयो त भारत म्यांमार जो भरोसेमंद पाड़ेसर, पको साझेदार ऐं मुसीबत जे वक़्त हमेशा पहिरियों मददगार रहंदो, जेको भारत जी नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट ऐं महासागर पॉलिसियुनि जे मुताबिक़ आहे। मिस्टर मोदी म्यांमार में अमन ऐं ॻाल्हि ॿोल खे ॾियण लाइ भारत जी तयारीअ खे बि साफ़ कयो, जंहिंमें फेडरल गवर्नेंस ऐं इकॉनॉमिक ग्रोथ जो तजुर्बो साझो करण शामिल आहे। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 30 मई 2026 ते बोध गया ऐं 2 जून 2026 ते मुंबई जो बि दौरो कयो, जिते हुन बिज़नेस ऐं इंडस्ट्री जे माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं जायुनि जो मुआइनो कयो। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग जे इन सरकारी दौरे खां उमेद आहे त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में बहुआयामी मल्टीफेसिटेड संबंध वधीक मज़बूत ऐं गहरा थींदा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ पे। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

हेयर अचो पेश आहे फिल्मी संगीत सब का अवल असी बुधू था मास्टर चंदर जी पार्टी जो अबाणा फिल्म जो वतन खां गीत।

0: हलंदो।
1: हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर ॿुधूं ख़ास ख़ास ख़बरूं। भारत नेपाल सां गॾु सरहदी मामलनि खे हल करण में ॿी धुर जी शमूलियत खे रद्द कयो। नई दहलीअ नओं इमिग्रेशन नियम लागू कयो आहे। विदेशी जेके 180 ॾींहनि खां वधीक रहण या चाहीनि था, तिन खे वीज़ा ख़तम थियण खां पहिरीं ई रजिस्ट्रेशन कराइणो पवंदो। भारत स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू सर्फेस मिसाइल जो कामयाबीअ सां टेस्ट कयो आहे। यूक्रेन में रूसी हमलनि में माण्हू मारिजी विया आहिनि। वुमेन क्रिकेट में इंग्लैंड भारत खे 6 विकेटनि सां हराए 3 मैचनि जी T20 सीरीज़ 2-1 सां पाण जे नाले कई।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

0: यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपमालाई पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने आनंद लिया ऐश्वर्य आनंद द्वारा गाए भजनों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग।

दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कौर और लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा शो गीत भरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:33 और मुझे उम्मीद है कि आपकी चाय की चुस्की जो है वो शुरू हो गई होगी और आज का दिन भी आपका शानदार तरीके से शुरू हो चुका होगा। वैसे शानदार तो होना ही है जब बप्पा का आशीर्वाद हमारे साथ है। बुधवार का दिन है और बप्पा हमारे साथ है, यानी कि गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और फिलहाल के लिए चलिए एक बार और उनका आशीर्वाद लें।

दोस्तों, आज आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जो लोग हैं वो राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट है ना? तो भाई, बात तो इतनी सी होती है कि हम सोच समझ कर उसे ब्रह्मांड जितना बड़ा बना देते हैं, लेकिन होती वो छोटी सी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम का नाम होता है ओवर थिंकिंग। और इसी के जाल में आजकल ना हम सब फंसे हुए हैं। जैसे आप हमेशा अपने आप को देखिएगा कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, जिसका मतलब कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस फालतू की चीज पर इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वो उसे अलग ही तरीके से प्रोसेस करने लगता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको आपके बॉस ने ईमेल भेजा, तो आप सोचते हैं क्यों भेजा, क्या मतलब हो सकता था। या आपने कोई स्टोरी डाली, कोई पोस्ट डाला, कोई स्टेटस डाला, और उस पर किसी ने लाइक नहीं किया जिससे आप उम्मीद कर रहे थे, फिर कहें क्यों लाइक नहीं की, क्या हो सकता है। इसी तरीके की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं, जिसका प्रॉपर नाम ओवरथिंकिंग है। तो आज मैं ओवरथिंकिंग के बारे में ही बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में भी कोई ओवरथिंकिंग का कीड़ा दौड़ रहा हो तो फिर आप जरा इस बात को गौर से सुनिएगा।

दोस्तों ये बात तो सच है कि आजकल हर कोई कहीं ना कहीं ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा हुआ है। रात में सोने के वक्त में भी लोगों के दिमाग में न जाने कितने विचार उथल पुथल मचाते रहते हैं, और इसी के साथ अगर बात करें तो न जाने कितनी सारी बातें हैं जो दिन भर हमारे दिमाग में छाई रहती हैं। तो इन्हीं से जुड़ी और इन्हीं से बचने का एक तरीका लेकर आपके सामने आई हूँ। आपको एक कहानी सुनाती हूँ इस ओवरथिंकिंग के जाल से बचने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर जो थे वो क्लास में आए, उनके हाथ में पानी का एक ग्लास था। उन्होंने छात्रों से पूछा, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने कहा 200 ग्राम। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, इसका असली वजन मायने रखता ही नहीं है, मायने ये रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 मिनट तक के लिए पकड़ूं तो कोई बात नहीं, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा, मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे पैरालिसिस जैसा महसूस भी होने लगेगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन मैं इसे जितनी देर तक पकड़े रहूंगा वो उतना ही मुझे भारी लगता जाएगा। कुछ समझ में आया दोस्तों क्या समझाना चाह रही हूँ? हमारी चिंताएं और ओवरथिंकिंग भी ठीक इसी पानी के गिलास जैसी हैं। उनके बारे में थोड़ी देर तक अगर सोचना चाहते हैं तो सोच लीजिए, लेकिन अगर आप दिन भर सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा और आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई ग्लास को नीचे रखना सीखो, टेंशन को बाय बाय करना सीखो और आज की सुबह ही नहीं बल्कि आज के पूरे दिन को, अपने हर पल को एंजॉय करना सीखो। और इसी बात पर एक खूबसूरत गाना तो बनता है।

तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरती गौर को और कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गाने ने पक्का मूड तो बना दिया होगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग की। अभी सोचा है हम ओवर थिंक आखिर करते क्यों हैं? क्योंकि हम जो है ना अक्सर बीते कल में खोए रहते हैं, उसको बदल नहीं पाते और आने वाले जो कल होता है यानी कि फ्यूचर होता है उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल वैसे भी नहीं है। तो हमारे पास जो हाथ में है वो है आज, उसके बावजूद हम कल और आने वाले कल यानी कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच इस तरह फंस जाते हैं कि उसके बीच में से चुपके से हमारा आज जो है ना वो निकल के भाग जाता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो बीता हुआ कल है उसे हम बदल नहीं सकते और जो आने वाला कल है उस पर हमारा कोई भी वश है ही नहीं। तो क्यों ना आज में जिया जाए। सैड होने की बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जो गीत है ना इसमें भी हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हीर भाई तू सैड हो तुम।

तो भाई हीर तो बड़ी सैड है, लेकिन उस सैड हीर के चेहरे पर चलिए मुस्कान सजाते हैं। कहते हैं कि प्रिटी वुमन आप भी खुश हो जाइए, यानी कि ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ बदलने वाला आपके जीवन में नहीं है। तो जो जीवन है ना, जो आपके पास अभी है, उसमें मुस्कुराना सीखो। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका दिमाग भी थॉट मशीन बन गया है तो बस लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए और खुद से कहिए जो होगा देखा जाएगा। चलिए आपको थोड़ा और रिलैक्स करने के लिए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा। वैसे भी अपनी तारीफ सुनना तो हर किसी को अच्छा ही लगता है और इस गीत को तो भर भर के तारीफ ही की गई है।

और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते आपको यही कहना चाहूंगी कि ऑल इज वेल वाली फीलिंग अपने अंदर जगाइए, और आज का मेरा गुरु मंत्र भी यही है कि सोचिए मत, शुरुआत कीजिए और ओवर थिंकिंग को फुल स्टॉप लगाइए, एक्शन मोड में आइए और आज को जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जो आपके हाथ में है ही नहीं उसके बारे में सोच के फायदा भी नहीं, इसलिए जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचिए। तो इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतो भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर।

0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अरवन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस

0: योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि गरीब से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए का ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय देश के मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था

0: से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New

0: को रोक दिया गया था। बलदियाती इदारों की मुद्दत कार अक्टूबर नवंबर 2023 और जिला तरक्याती काउंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकतदारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है मोदी सरकार ने सीबीएसई चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है दिल्ली में बीजेपी सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफे अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहले कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रूपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 20 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद्रमा मजूमदार द्वारा सरोद वादन राग बिलासखानी तोड़ी।

मैं आपको बता दें पिछले कुछ ही देर बाद यानी 9:35 मिनट पर सुगाई प्रोग्राम स्मार्ट फरमाइएगा शब्द, 9:45 मिनट पर प्रोग्राम होगा आज सवेरे, 9:50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और अखबार जर्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मे फरोज आप सुन सकते हैं 10:00 बजे। गैर फिल्मी गजलों के प्रोग्राम हुस्न गजल में आज समाप्त फरमाइएगा डॉक्टर रोशन भारती और सरला कपूर की गाई गजलें। वक्त रहेगा 10:05 मिनट। 10:30 बजे हम पेश करेंगे जनाब जितेंद्र पाल सिंह की तहरीर करदा गीत भरी कहानी फासले। 11 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का, प्रोग्राम होगा मेरी पसंद। 11:30 बजे हम पेश करेंगे जनाब रफी पीर का तहरीर करदा और पेश करदा ड्रामा सन्नाटा। 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 मिनट पर आप सुन सकेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। इस दौरान 12:40 मिनट पर हम पेश करेंगे प्रोग्राम तारीख सास। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 मिनट पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो समझने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में सामान्य समाप्त फरमाइए। प्रीता बलबीर सिंह से शब्द।

0: हूँ, ये पार्श्व में चलता हुआ जो आप गीत सुन रहे हैं ये मारवाड़ी भाषा में लिखा गया गीत है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने माता पिता से कहती हुई प्रतीत होती है कि आपका मैंने क्या कसूर किया जो आपने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में किसी के साथ विवाह में सूत्र में बांध दिया। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का बचपन उनसे ना छीने और वे अपनी बचपन को जी सके।
1: Yes. And friends, a tennis legend Rafael Nadal celebrates his birthday. He won a record 14 career French Open championships and was the first player to win 22 Grand Slam men's singles titles. And
2: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। 17:50 हुए हैं, खबरें न शुरू होंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एनुएना रोड्रिग्स गोमेज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3000 रूपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल्कौमी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई, हिफाज़त सेहत और दवासाजी समेत अहम शोबों में

0: यूएनजीए का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और बांग्लादेश की मुश्तरक तरजीहात को पूरा करने और कसीर मुल्की ताउन को मुस्तहकम करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजे को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की एक दो रोजा मीटिंग मुनक्किद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में पंचायत और जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना है। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अदा किया जाता है जिन्होंने बहादुर समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। खवातीन क्रिकेट में कल रात टोरंटो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी एलियाना रोड्रिग्स गोमेज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहले कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रूपए महाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी है। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है अखबार जर्री पर मबनी प्रोग्राम शम फरोजा।
2: वक्त हम सब का साथी है, हमारे सुख हमारे दुख सब इसी वक्त का हिस्सा है। कहा जाता है कि वक्त अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और वक्त खराब हो तो सब कुछ होते हुए भी काम बिगड़ जाता है। वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। हमारे सारे अच्छे और बुरे हालात इसी वक्त का हिस्सा हैं। वक्त को बनाना और बिगाड़ना इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया में हर इंसान को एक जैसा ही वक्त मिलता है, मिनट और घंटे हों या दिन और महीने, यह हर इंसान को बराबर हासिल होते हैं। और यह भी हकीकत है कि मालदार के पास भी 24 घंटे का दिन होता है और गरीब के पास भी, आलिम के पास भी 30 दिन का महीना होता है और जाहिल के पास भी, शहरी के पास भी 12 महीनों का साल होता है और देहाती के पास भी, बस फर्क इनके इस्तेमाल का होता है। वक्त की मिसाल बर्फ की एक सिल्ली की तरह है कि अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो बहुत कारामद बन जाती है, लेकिन अगर कारामत बनाने की कोई मेहनत न की जाए तो वो बर्बाद तो खुद अपने आप हो जाती है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वक्त का सही इस्तेमाल इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करता है और वक्त को बर्बाद करना इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद करता है। एक डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक

0: मेरी बेटी कोमल 10 साल की हो गई है, यही मेरा सब कुछ है, इसके सिवाय मेरा और कोई नहीं। मेरी जिंदगी का यही एक मकसद है, वरना मेरी खुद की जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी। जी रही हूँ तो बस बेटी कोमल के लिए।
1: मम्मी आप कहाँ हैं? ओहो आप यहाँ बैठी हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उठ ही रही थी। तुम तैयार हो गई?
1: हाँ मम्मी, ड्रेस पहन ली है। आप जरा बालों में कंघी कर दीजिए।
0: हाँ हाँ आओ यहाँ आओ, लाओ कंघी मुझे दे दो।
1: मम्मी आपको याद है ना, आज हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम है, शाम को आप जरूर आइएगा।
0: हाँ बेटी मैं वक्त पर पहुँच जाऊंगी। लो कंघी हो गई।
1: अच्छा अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय मम्मी।
0: बाय। कोमल अब काफी समझदार हो गई है, अपना काम खुद कर लेती है। जब कोमल छोटी थी तो उसे क्रेच में छोड़कर मैं दफ्तर जाती थी। अब तो घर में वो अकेली रह लेती है, उम्र के हिसाब से तो अभी बच्ची है, लेकिन हालात ने उसे समझदार बना दिया है। बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए अकेले रहना, बिना मर्द के जीना, लेकिन मैं जी रही हूं एक सहज खामोश जिंदगी। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, हम दो बहनों को मामा ने पाला पोसा,

0: मैं पढ़ती रही, खूब पढ़ाई की। साइंस में बहुत दिलचस्पी थी, बीएससी कर ली। फिर एक साइंसी इदारे में नौकरी मिल गई। इस दौरान जितनी तकलीफें मैंने उठाई वो मैं ही जानती हूं। फिर मेरी शादी हो गई एक इंजीनियर नरेश के साथ। वो भी मुझ जैसी पढ़ी लिखी बीवी पाकर बहुत खुश हुई।
1: ओ सुमन सुमन, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ। तुम बिल्कुल चौदहवीं का चांद लग रही हो।
0: क्यों छोटी तारीफें करते हैं? मुझ में ऐसी क्या बात है? और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं।
1: अरे खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। तुम दिल में ऐसे समा गई हो जैसे
0: बस बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम तो बिल्कुल दीवानी हो गए हो।
1: और तुम दीवानी? अब तो बस सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में गुजरेगी।
0: ऐसा भी क्या?

0: घर का काम, एक मशीन बन गई थी मैं। पहले तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के तेवर बदलने लगे।
1: सुमन, मम्मी कह रही थी कि तुम सारा काम यूं ही छोड़कर चली जाती हो।
0: देखो जी, मैं ये तो नहीं जानती मेरे आने से पहले ये घर कैसे चलता था, कौन करता था काम। मैं तो सुबह से शुरू होती हूँ, रात कहीं भी फुर्सत नहीं मिलती।
1: तो मम्मी क्या झूठ बोलती हैं? जब सारा काम उन्हें ही करना पड़े तो तुम्हारा उनको क्या सहारा?
0: ओहो, तो फिर किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेते। पहले तो बड़ी बेताबी थी कि नौकरी करने वाली बहू चाहिए।
1: नौकरी करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम घर का काम काज ही न करो।
0: देखिए, उससे जितना हो सकता है मैं काम करती हूँ। ये भी तो सोचिए, अकेली जान किस किस का काम करे, कोई हाथ हिलाने को राजी नहीं।
1: तो कहना क्या चाहती हो?
0: यही, आपके दोनों भाइयों के अपने नखरे हैं, काम वाम कुछ करते नहीं, बैठे बैठे हुक्म चलाते रहेंगे। बर्तन जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, मैं सारा काम खुद निपटा लेती हूँ।
1: ठीक है, मैं मम्मी को समझा दूंगा।

घर का यही मामूल बदस्तूर जारी रहा। कोई घर का काम करने को राजी नहीं था। जहां दफ्तर में मैं साइंस की नई इजादात पर रिसर्च करती, वहीं दूसरी तरफ घर आकर मुझे दो सदी पीछे की औरत बनकर जीना पड़ता। सास भी अक्सर टोकती रहती थी, मुझे तरह तरह के ताने देती थी। मैं अपने शौहर को ही सब बताती थी तो वो उल्टी मुझ पर ही बरस पड़ते थे। कभी कभी तो मैं रो पड़ती थी।

इस दौरान मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। मेरे ससुराल वालों को तो इस पर कोई खुशी नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरे शौहर ने भी कोई खुशी का इजहार नहीं किया। उन सबको एक लड़का चाहिए था। इतने पढ़े लिखे इंसान से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कोमल कुछ बड़ी हुई तो मैं दफ्तर जाने लगी। मेरा ख्याल था कि मेरे पीछे कोमल की देखभाल घर में हो जाया करेगी, लेकिन कुछ दिनों में ही मुझे एहसास हुआ कि कोमल की देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है। एक रोज मैं दफ्तर से लौटी तो कोमल जोर जोर से रो रही थी। मम्मी पास बैठी अपने काम में मशगूल थी। मैंने कोमल को चुप कराया, वो लगातार रोए जा रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर लोरी सुनाई।

0: ऐसे होता है तुम्हारा काम। दफ्तर से आते ही बिस्तर पर लेट गई। मम्मी ठीक ही कहा करती है।
1: कोमल अभी सोई है, धीरे बोलिए ना, बच्ची जाग जाएगी। बड़ी मुश्किल से सुलाया है।
0: अरे मुझे घर आए कितनी देर हो गई, लेकिन किसी ने पानी तक को नहीं पूछा।
1: घर में और लोग भी तो है, क्या मैं ही सबका काम करती रहूं? मेरा काम तो कोई नहीं करता। बच्ची न जाने कब से रो रही थी, कोई उसे चुप कराने वाला भी नहीं था।
0: अरे तो मम्मी से अब इतना काम नहीं होता, खुद अपना वजूद तो उनसे संभलता नहीं, उस पर बच्ची का बोझ और डाल दिया जाए। खुद तो सारा दिन ऐश करती है और मम्मी वहाँ।
1: मेरी नौकरी अब इतनी बुरी लगने लगी है, जब रुपए मांगते हो उस वक्त तो शर्म नहीं आती।
0: देखो
1: कभी पापा मम्मी की दवाइयों के लिए पैसे, तो कभी अपने भाइयों के लिए मुझसे रुपए लेते हो, फिर भी मैं अपना समझ कर रुपए दे देती हूँ।
0: अरे तो हम दोनों को मिलकर ही तो इस घर का खर्च चलाना है, और कौन चलाएगा?
1: फिर क्या वो हमारी कोमल की देखभाल नहीं कर सकती? क्या इस बच्ची के लिए उनका कोई फर्ज नहीं है? लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं।
0: तुम्हें बच्ची की ज्यादा परवाह है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? या फिर और कोई इंतजाम कर लो।
1: मैं नौकरी हरगिज नहीं छोड़ूंगी, समझे? अगर ये हमारी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती तो हम अलग रह लेंगे।
0: नहीं सुमन, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे मैं ही तो उनका सहारा हूँ।
1: ठीक है, फिर मैं ही अलग हो जाती हूँ।
0: तुम्हारे जो दिल में आए वो करो, हर वक्त बच्ची का रोना लिए बैठी रहती हो।

0: घर में दूसरे मसलों पर तनाव बढ़ता गया। वो लोग मुझसे रोज रुपए पैसे की मांग करते, बेवजह बच्ची को तंग करते, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने इनकार करना शुरू कर दिया। घर में रोज रोज की बहस और तकरार की वजह से मेरे और इनके बीच फासले बढ़ते गए। फिर मैं एक रोज कोमल को साथ लेकर उस घर को छोड़कर चली आई। शुरू में अपनी बहन के पास गई। कुछ महीने बाद मुझे कंपनी की तरफ से क्वार्टर मिल गया। मैं यहां आ गई। कोमल को क्रेच में छोड़ मैं दफ्तर चली जाती। इस दौरान इनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। मैंने ये सोचकर घर छोड़ा था कि थोड़े दिनों बाद मेरी कमी महसूस होने पर ये खुद मुझे मनाने चले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया, वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं कोमल के साथ अकेले जिंदगी गुजार लूंगी। वक्त गुजरता गया। कोमल बड़ी होने लगी। उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। हालांकि मैं कोमल को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने देती थी, लेकिन कभी कभी वो अपने पापा का जिक्र छेड़ देती।
1: मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? वो घर क्यों नहीं आते?
0: क्यों? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या?
1: मम्मी, स्कूल में सबके पापा छोड़ने आते हैं।
0: मैं भी तो तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तुम्हें जो पसंद होता है लेकर देती हूँ।
1: नहीं मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। बताओ ना, मेरे पापा कहाँ हैं?
0: अच्छा अच्छा, चलेंगे। लो, पहले दूध पी लो।
1: नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी। मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे पापा के पास ले चलो ना।
0: अरे ले, हमारी कोमल बिटिया तो रूठ गई।
1: मैं आपसे नहीं बोलूंगी कुट्टी।
0: अरे
1: मैं बिल्कुल

कितना मुश्किल होता है बच्चों की जिद को पूरा करना। उसे मारना पीटना भी पड़ा। धीरे धीरे कोमल ने ऐसे जिदें करनी छोड़ दी। मुझे आस पड़ोस के लोगों से उनके घर बार की जानकारी जरूर हासिल हो जाती। मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था, मेरे शौहर के भाइयों का कोई अता पता नहीं था, लेकिन मैं इन खबरों पर कोई तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कौन सी मेरी खबर ली है? अरे, जिंदगी के पिछले अवराह को पलटते पलटते वक्त का पता ही नहीं चला। स्कूल का हॉल खचाखच भरा है, सारी सीटें भर चुकी हैं। कोने में एक सीट खाली दिखाई दी, मैं यहीं बैठ गई। आसपास नजर दौड़ाई तो बगल की सीट पर नरेश बैठे नजर आए। मैं उन्हें देखकर भी अनजान बनी रही। पहला आइटम कोमल और उसकी सहेली का है। पूरे हॉल में दोनों बच्चों की आवाज गूंजने लगी।

0: मम्मी देखिए ये फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है।
1: वेरी गुड बेटे।
2: क्या क्या ये हमारी बेटी है?
1: हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है। आज किस मुंह से दावा कर रहे हैं? इतने परसों में कभी इसका ख्याल आया?
2: सुमन, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी। तुम शायद नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में ऐसी तबाही आई कि मैं कहीं का ना रहा। सुमन, हाँ। चलो आप वापस घर चलो।
1: मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आपको मेरा साथ चाहिए तो अलग मकान ले लीजिए।
0: मम्मी ये कौन है?
1: बेटी,

0: ये तुम्हारे पापा हैं।
1: पापा? मेरे पापा?
2: हाँ, तुम्हारे पापा।
1: आप कहाँ चले गए थे? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते?
2: वो कितनी प्यारी बेटी है हमारी, हम कितना गलत सोचते थे। हमारी बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है और हम इसे नजरअंदाज किए हुए थे।
0: ये सब मेरी मेहनत का फल है। मैंने इसे इतना मजबूत कर दिया है कि ये मुसीबत में भी घबराएगी नहीं।
1: पापा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते?
0: बेटे, इनकी राहें हमसे जुदा हैं।
2: नहीं सुमन, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हम सब अब इकट्ठे रहेंगे।
1: सच पापा?
2: हाँ बेटे।
1: फिर तो बड़ा ही मजा आएगा।
0: लेकिन हमारा घर कहीं और होगा, जिसमें सिर्फ हमारा छोटा सा परिवार होगा।
2: सुमन, मुझे मंजूर है। सुमन
0: सच?

परेशान नहीं ली, जब सुनी लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म है राम तेरी गंगा माली, नगमा निगार है संजय पुरी, मौसीकार रविंद्र जैन।

सुनो दी सुनो हमारी भी सुनो अजी मेहरबान हमारी भी सुनो न ठप्पा न ठुमरा।

हमारी भी सुनो आजी मेहरबान हमारी भी सुनो ना ठप्पा ना ठुमरी गजल है ना कजरी ये रागनी है प्यार की सुनो जी सुनो हमारी

0: हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो।
1: आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, ये नगमा फिल्म थी एक दिल सौ अफसाने, और अब सुनिए मन्ना डे और साथियों को, फिल्म है श्री 420।

नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है जनाब रफी पीर का तहरीर करदा और पेश करदा ड्रामा सन्नाटा।

0: गाड़ी से बंद कर दो ना, दुनिया तो सर्दी से बुरा हाल हो रहा है।
1: सब मेरे भूकंप की नाफरमानी का नतीजा है। मैं तुमसे कह रहा था कि अपना गर्म कोट साथ ले लो। क्या खबर किस्मत
0: खराब है? सब तो अच्छी खासी धूप थी, गर्मी से बदन को कपड़ा नहीं रखा जाता था।
1: अरे भाई, हमें तो उस वक्त भी गर्म सूट के अंदर ठंड लग रही थी। यूं कहो कि नई साड़ी की नुमाइश के लिए
0: तैयार हो रही थी। वो ओवर कोट नई साड़ी के साथ कैसे पहन लेते थे?
1: उस कोट में क्या है? क्या है
0: आपके पुराना कोट?
1: पुराना? अरे उसका शरीर तक पूरे अभी 3 महीने भी तो नहीं हुए।
0: बात को समझते ही नहीं।
1: तो कुछ मुश्किल से ही ना।
0: अरे भाई, उस कोट का इस कोड़ी के साथ क्या जो?
1: अच्छा, आप समझ गए।
0: क्या समझ गए?
1: अरे वही जो तुम्हारा मतलब है।
0: अच्छा, लेकिन आप दरवाजे में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसे बंद भी करोगे?
1: ये तुम्हारी नई बदबू के पार्सलों ने परेशान कर रखा है।
0: पार्सलों ने?
1: जी बेगम साहिबा, मैं कह रहा था कि एक एक करके अंदर ले आऊंगा, मगर तुमने सारा कहा सारे पास से लेके मतलब उठाकर मेरे ऊपर ला दिए। ना कौन बिना दरवाजे में से गुजरना मुहाल हो गया है। एक को काटो तो ये पूरा फंस जा रहा है। ऐसा खुली मियां तुम्हें कहा नसीब?
0: अरे सुनिए, मेरे को पास टैक्सी में तो नहीं रहना। 40
1: बेगम, मुझे तो इस वक्त एक एक के 100-100 दिखाई दे रहे हैं।
0: दिखाई भी तो नहीं देता। अभी रहने का आज घर में खड़े खड़े बातें बना रही हूँ। अब अंदर क्यों नहीं आ जाते?
1: बेगम, मैं तो पार्सलों को छोड़ता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ते। अब हर हाथ की हर उंगली पर, कोट के हर बटन पर पार्सल के पास टंगे हुए हैं।
0: हाय, तो ये तूफान थमने में नहीं आता। ये दरवाजा तो बंद कर दूं मैं।
1: अरे मियां, बीवी को पैदा करने वाले खुदा, अरे तूफान को लाने वाले खुदा, तू देख रहा है? अरे बादलों में छुपे हुए चांद और सितारों, अरे जमीन जिस पर इस वक्त मूसलाधार बारिश पड़ रही है, तुम गवाह? मियाँ की हैसियत एक नाज़नीन बीवी के सामने और एक टट्टू के सिवा कुछ भी नहीं।
0: मैं कहती हूँ, पास पर पड़े पड़े क्या चिल्ला रहे हो? अब उठोगे भी? अंधेरे में मेरा तो जी घबरा रहा है।
1: तुम समझते हो ज्यादा हो जाएगा? वाह, पार्सलों के रूप से शौहर का रुखे सिवा दूसरे आफ्ताब की तरह निकला और घबराई हुई बीवी के देखते देखते गंगजून में राशि हो गए। वाह, क्या नक्शा है! वाह,
0: हाय हाय, मुझे क्यों सता रहे हो तुम?
1: खुदा की कसम बेगम, मुझे तो मोबाइल का मालूम होता है। सर तो मैंने बड़े एहतमाम से पार्सलों के बाहर निकाल रखा है, मगर वो सूरज देवता वाली पैटी पैदा होती नहीं दिखाई देती।
0: खुदा के लिए अनवर, उसको बिजली जला दो ना, क्योंकि मुझसे अंधेरे में इंतजार नहीं किया जाता।
1: बेगम, अगर तुम्हारी उंगली में बल आ जाने का अंदेशा न हो तो जरा खुद ही बिजली जला दो।
0: खुद कैसे जला दो? मैंने फिर तलाश करने की हजार कोशिश की है, कि इस अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे।
1: ये बात है, तो ठहर जाओ, मैं ही कोशिश करता हूँ। क्या
0: ये किस चीज का शोर था?
1: ओवरकोट का बटन उखड़ गया।
0: बटन इतना शोर कैसे कर सकता है?
1: इस पर तुम्हारा पार्सल टंगा हुआ था बेगम।
0: पार्सल? कौन सा पार्सल? अम्मा,
1: पार्सलों की फहरिस्त बनाई नहीं गई थी बेगम, कि कौन सा किस बटन पर टांगा गया है।
0: मेरे पार्सल मेरी सारी चीजों पर टकराव हो गया है। ओ अम्मा, खुदा के लिए बिजली जला दो ना जल्दी से।
1: अंधेरा वाकई बहुत ज्यादा है, कुछ करना चाहिए।
0: बिजली क्यों नहीं जलाते? खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
1: मैं सोच रहा
0: हूँ, अभी तक खड़े खड़े सोच रहे हो?
1: मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमरे के अंदर
0: मैं जानू कि तुम कहाँ हो
1: और स्विच मेरे कौन से

0: άσπρα.
1: Όχι, μάλλον εγώ δεν έχω να γελάνεσαι.
0: Μα, μερικές παιδιές του με νιχάει μάμουλ μπάτυχε. Αλλά τον χαρίσει μάμουλ για πως το με φαρέσει στα μου.
1: Ατσα, ατσα. Τον πηγή δεν έχει γελάσει. Τον άντα γιατί μου. Καλέφανε πόδι και τον δέχε. Τον πάρει πάρει πόδι.
0: Γιατί κάτι. मुझे डरता कि कहीं चोट ना लगी हो। मैंने कहा हम दर्दी का हस्तार बेचारा फर्नीचर मालूम होता है। ओहो लेकिन तुम कर क्या रही हो बिल्किस? अरे खैरियत तो है। ओहो चोट तो नहीं आई। ओहो तो इस सितम रसीदा लहजे में क्यों बोल रही हो? बेचारे शोहर का दिल को मुफ्त में आया हुआ है। अरे सर बशाश लहजे में बोलो, किसी को तुम्हारी बात का यकीन भी आए। ओहो लेकिन तुम हो कहाँ? अरे भाई इस कमरे के अंदर हो या इस कमरे के अंदर किसी चीज के अंदर? ये तुम्हारी आवाज यकला जमीन दोस्त क्यों हो गई बिल्किस?
2: अरे मैं अलमारी के अंदर हूँ।
0: अलमारी के अंदर? अरे भाई तुम अलमारी के अंदर क्या कर रही हो?
2: मैं बेडरूम का दरवाजा समझ कर अंदर घुस गई थी, निकली ये संभव अलमारी।
0: चलो ठीक है, तुमने सोचा बेडरूम ना सही तो चलो अलमारी ये गनीमत है। अरे भाई तुम अभी तक अलमारी के अंदर ही हो क्या? ओहो और अपना ये हाल है कि तुम्हारे पार्सलों की वजह से हरकत नहीं कर सकता। बिल्किस और ये इतनी बड़ी अलमारी इस कमरे में कैसे आ गई?
2: मेरी जान है बना, इसी पर तो मैं हैरान हो रही हूँ। हमारे ड्राइंग रूम में कोई अलमारी थी नहीं।
0: मालूम होता है तुम्हें इस हैरानी में अभी तक अलमारी से बाहर निकलने का ख्याल ही नहीं आया, लेकिन तुम इसके अंदर खड़ी कर क्या रही हो? मैं इस ख्याल से रुक गया था कि तुम इसका बंदोबस्त करने चली हो, मगर मालूम होता है कि तुम्हारा इरादा अलमारी में ही रात बसर करने का है। लेकिन तुम अलमारी के अंदर से निकलते क्यों नहीं? अरे भाई अलमारी तुम्हारे ऊपर तो गिरी हुई नहीं है। फिर क्या है?
2: निकल के तेरा नाम
0: हो जाए। अरे कोई अलमारी के अंदर कोई और थी है क्या?
2: कौन?
0: क्या मालूम कोई चोर छुपा बैठा हो? नौकर यहाँ पर मौजूद नहीं थे और मौसम चोरों की कार्रवाई के लिए निहायत मुनासिब मालूम होता है।
2: नहीं मेरी साड़ी का बलो अलमारी में फंस गया है, निकलता ही नहीं।
0: क्या हुआ?
2: मेरी साड़ी को किसी ने खींचा है।
0: और जानते नहीं मुझे कौन है मेरी बीवी के साड़ी को खींचने वाले? मैं थोड़ा सड़क कर चल पार्सल मेज पर रख दूँ। तुम इत्मीनान रखो बिल्कुल, मैं अभी आया अभी आया। पार्सल बिल्कुल तुम्हारे कांच की चीजों वाला पार्सल था, अरे गिर जाता तो 50 रुपए का पानी फिर गया होता, लेकिन इस उस्तादी से हवा में बल खा के मचाया है कि बल्ला सर्कस वालों को भी माफ कर दिया।
2: जिंदगी कर रहे हो, मेरे तो सब बाप के हाथ कहाँ खुल गए हैं। मैं समझी कि कोई चोर है।
0: चोर? बिल्किस अब तुम्हारे कहने से मुझे ख्याल हो रहा है कि इस मकान के अंदर आज कुछ गड़बड़ जरूर मालूम होती है। पहले इस अलमारी का कहीं से ड्राइंग रूम में आना, फिर तुम्हारी साड़ी का पुरेसरार तरीके से खींचा जाना, और अब अच्छी बात है यहाँ पियानो रखा था। मैंने सोचा जरा मैं पियानो बजाने को कह रहा हूँ, पियानो गायब है। बस है कह चुकी चोर मोर उठा कर ले जाऊंगा और क्या।
2: लेकिन तो देता नहीं
0: कुछ। देखो ना बेगम, मैंने सोचा कि बढ़कर तुम्हारे चंद पार्सल पियानो पर सरका दूं, हाथ सारे खो जाएंगे तो तुम्हें अलमारी से निकालूंगा और फिर रोशनी करूंगा, मगर पार्सल को रखने के लिए चुगिया आगे बढ़ा सहन ही न दर्द है ना जी बात
2: मेरे तो होश गुम हो जा रहे हैं क्या तेरी सारी
0: खींचा इस मजदूर को थाली को इसकी ये जोरत अभी देखता हूँ कि कहाँ जाता है ये निकाल करके किसने पकड़ रखा था बिल्कुल किससे अंकर तुरंत रसीद किया है लहू लुहान कर दिया
2: भैया मुझे क्या पता था कि तुम हो
0: निकलो भी अलमारी में से
2: निकली तो खड़ी हो
0: सारी काम बची हुई है
2: सही आप तो मुझे नहीं मालूम होते
0: अब खैर नहीं है
2: ये क्या था
0: मुझे तो दरवाजा खुलता और बंद होता सुनाई दिया था
2: निकल गया
0: कौन
2: निकल गया
0: कौन
2: चोर कौन अनवर अब जल्दी से बिजली चला दो ना मेरा तो
0: अभी देखता हूँ क्या है बिल्कुल ऐसी दहशत ज्यादा आवाज में क्यों बोल रही हो क्या है
2: अब हम क्या करें
0: थोड़ा सा सब्र
2: मेरा मतलब है इन चोरों का क्या इंतजाम किया जाए
0: कैसे चोर
2: अरे वही जो जो हमारा प्यालो उठा कर ले गए
0: मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आई है सुन रही हो मेरा मतलब है जो चोर पियानो उठाकर ले गया है ना वो बड़ा मुस्तकिल मिजाज मालूम होता है इसलिए मुझे यकीन है कि वो थोड़ी देर में बाकी फर्नीचर को ले जाने के लिए जरूर आएगा इसलिए अगर हम आराम से यहाँ बैठ कर इंतजार करें और उसे चुपचाप आ जाने दें
2: तुम चाहते हो कि हम अंधेरे में बैठकर चोर की राह देखें
0: और जो ही वो कमरे में दाखिल हो उसे
2: क्यों मेरे रहे सही होश भी गुम कर रहे हो अनवर बिजली चला दो खुदा के लिए फौरन वरना मैं दीवानी हो जाऊंगी अनवर बिजली चला दो
0: अच्छा
2: दीवानी हो
0: जाऊंगी
2: बिजली चला दो बिजली चला दो
0: बिजली पता नहीं कहाँ गायब हो गया है
2: अनवर
0: हिम्मत से काम लो
2: अनवर तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है
0: तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है वो सुन रहा हूँ
2: नहीं
0: और क्या है
2: अनवर सुनो आ रहा है
0: कौन आ रहा है कौन
2: चाल के कपड़े में तुम्हें कपड़ों की आट
0: मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे कुछ नहीं तो नहीं था बिल्कुल ये मेरे ओवरकोट का दूसरा बटन था
2: मैं समझी कि अलमारी गिर पड़ी है
0: अरे बिल्कुल पार्सल भी कोई ऐसा वैसा नहीं था गधे का बोझ था
2: तो तुम इन पार्सलों को उतार कर कहीं रख क्यों नहीं देते
0: लेकिन कहाँ रखूं
2: यही कहीं मेज वेस पर
0: मेज वेस कैसी मेज वेस
2: अरे वही के कोई मेज जो यहाँ रखी होती है
0: लेकिन कहाँ
2: अरे वहाँ जाकर खड़े खड़े बातें कर रहे हो
0: लेकिन अंधेरे में ये कैसे मालूम हो कि वहाँ

0: और नहीं तो क्या बेगम, तुम समझ रही हो मैं बेकार खड़ा बातें कर रहा हूँ। मैंने पिछले 5-10 मिनट में बहुत हाथ पैर मारे, कोई मेज कहीं मिलती ही नहीं। सुनो, जहाँ तिकोनी मेज थी ना, वहाँ कुछ भी नहीं है।
1: क्या?
0: और कालीन भी गायब है।
1: कालीन भी कमरे में कोई चीज छोड़ी भी है कम्बख्तों ने?
0: दरियाफ्त करने की बात है।
1: दरियाफ्त? लेकिन दरियाफ्त किससे करें हम?
0: चोर से ही दरियाफ्त करना चाहिए, उसे ज्यादा इल्म होगा। मुझे तो कुछ अंधेरे में मारे
1: है। हटो भी अनवर, मैं मेज से तलाश करती हूँ, मुझसे तो अभी अंधेरे में खड़ा नहीं हुआ।
0: शौक से एकदम चोर कहीं स्विच भी निकाल कर ले गया हूँ।
1: क्यों मुझे बार बार तो डरा रही हो जी? हटो, मैं स्विच को देखती हूँ। दरवाजे की तरह है ना, इसके पास ही होना चाहिए। अरे कहाँ है ये दरवाजा?
0: दरवाजा यही पियानो से, लेकिन यानी जहाँ पियानो था उस जगह से शुमाल मशरक की तरफ रुक करके अगर तुम 10 कदम चलो तो दरवाजे पर पहुँच जाओ। कॉलेज में प्रोफेसर की राय भी मेरे मुताबिक ही हुआ करती थी।
1: करूं?
0: तो क्या हुआ, कहीं दूसरी अलमारी में तो जाकर नहीं घुस बैठी?
1: अरे दरवाजे पे मगर ये स्विच का कहीं पता नहीं चलता।
0: मैंने क्या कहा था, बड़ा ही मुकम्मल आदमी मालूम होता है ये चोर।
1: अलमार?
0: क्या है
1: अलमार?
0: मुझे
1: मुझे खड़ा नहीं हुआ
0: जाता। तो मेरा ख्याल है ये मेरे ओवरकोट का तीसरा बटन
1: नहीं, था नहीं, ये तो मैंने अंधेरे में कुछ गिरा दिया है।
0: लेकिन अब तुम खड़ी खड़ी करके रही हो बिल्कुल।
1: मैं बेकार हो रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। देखो लेकिन ये
0: बिल्कुल, अगर चोर नहीं ले गया तो स्विच दरवाजे और खिड़की के करीब होना चाहिए।
1: दरवाजे और खिड़की? खिड़की? अच्छा, दरवाजा खिड़की है। सुनो, यहाँ पर खिड़की लगाना नहीं है।
0: खिड़की में साथ ले गया। अरे वाह, ये चोर बड़ा ही अपने पंखा नहीं मालूम होता है।
2: मेरे आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। असलम वालिद साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानता
0: हूँ। मैं बाजू में नहीं हूँ, आप गलती कर रहे हैं। मैं ना मना को
2: खबरदारने की कोशिश। वाजिद साहब, वहाँ खड़े रहिए, हाथ उठा दीजिए, वरना ये गोली सीने से पार हो जाएगी। उठा, मोहलत नहीं मिलेगी।

0: आप और ये खातून मेरे मकान में क्या कर रहे हैं?
1: ये मकान आपका है?
0: जी हाँ कबला। और आपने क्या समझा था कि आपका?
1: तो ये नंबर 38 ओलंपिया रोड नहीं है क्या?
0: जी नहीं, ये नंबर 40।
2: 40?
0: जी हाँ 40।
3: आप गालबिन पड़ोस में रहते हैं?
2: अरे
3: 38
0: जी हाँ, इस सड़क पर तमाम मकान एक ही दूरी और एक ही वजह के बने हुए
3: हैं। 40 एक ही शख्स ने बनवाए और कोठियों का नक्शा भी एक ही आदमी का है।
1: बड़ी भूल हो गई है तो।
3: मगर ये चोर वोर की क्या बात थी?
0: यहाँ क्या आपने किसी और को भी देखा है?
1: जी देखा तो नहीं,
0: अलबत्ता सुना बहुत कुछ है। एक शख्स इस कमरे में खड़ा मुझसे दबा हुआ सोना और जेवर तलब कर रहा था।
3: दबा हुआ सोना और जेवर?
0: मैं समझ गया। आपने गलती से मेरा रेडियो सेट चला दिया।
1: रेडियो सेट?
0: जी हाँ
2: जी।
0: ये देखिए
2: जी।
0: जी हाँ, रेडियो इस गिलास के अंदर है। मैं इसका तार लगा हुआ छोड़ गया। आज एक ड्रामा ब्रॉडकास्ट होने वाला था, आपने उसकी आवाजें सुनी
2: होंगी। जो स्विच मैंने दबाया था वो रोशनी का स्विच नहीं, इसी रेडियो सेट का स्विच होगा। लेकिन वो ड्रामा
0: ये तार अंधेरे में आपके पैरों में लचकर निकल गया उसका। खैर, मैं अभी से लगाकर रेडियो ऑन करता।
4: अभी आप रफी पीर का लिखा हुआ ड्रामा सुन रहे थे। लीजिए अभी ग्रामोफोन रिकॉर्ड सुनिए।
0: अल्लाह कुव्वत। तो अल्लाह इस मुदाखलत बेगर माफी दीजिए और अब रुख्सत कीजिए। ये सब पार्सल आपके
3: ये टुकड़ा आपकी साड़ी का पल्लू तो नहीं है?
2: जी देखो अंदर, मेरी नई साड़ी का पल्लू। मुझे
3: ये मुझे अलमारी के अंदर से मिला।
1: ये बेडरूम के थोड़े से अलमारी में चली गई, ये साड़ी का टुकड़ा वही रह गया। ये सब पार्सल

0: सदन में आप सुन रहे थे जनाब रफी पीर का तहरीर करदा पेश करदा ड्रामा सन्नाटा। माविन थे आरसी पांडे, हिस्सा लेने वाले फनकार थे सीपी गुप्ता, सुमन कुमार, हरजीत, हरबंस, सरलोक, राम अवतार शर्मा और मनु शर्मा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 12 बजे हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: यह आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कोनेन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी है। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान में एक कानून पेश किया गया है जिसके तहत वजारत खारजा के लिए यह तयन करना लाजमी होगा कि आया चीन ने तिब्बत में नस्ल कुशी या इंसानियत के खिलाफ जराइम का इरतकाब किया है या नहीं। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई, हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा, मईशत, खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिगेज के हमरा भारत पहुंचेगा। भारत और वेनेजुएला के दरमियान खासतौर पर तवानाई और तिजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉ रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले हैं, जबकि इस कसीर मुल्की निजाम के लिए कुबरुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरेस को 91 वोट मिले हैं। अकवामे मुत्तहिदा के आला मुजाकराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रर उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉ रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अकवामे मुत्तहिदा की जनरल

इंग्लिश का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और बांग्लादेश की मुश्तरक तरजीहात को पूरा करने और कसीर मुल्की तआवुन को मुस्तहकम करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी भी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि ये ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर आए थे। भारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। अमरीकी फौज के जरिए एक ऐसी तंसीब पर हमला करने के बाद जिसे वाशिंगटन ने ईरानी फौजी तंसीब करार दिया है, ईरान ने मंगल को बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिससे कशीदगी में काफी इजाफा हो गया है और एक नाजुक इलाकाई जंगबंदी के मुस्तकबिल पर खदशात पैदा हो गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह तसादुम इस वक्त शुरू हुआ जब ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज करने वाली अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले एक तेल टैंकर को नाकारा बना दिया। अमरीकी हुकाम ने बताया कि एक हेल फायर मिसाइल ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया जिससे वो अपना सफर जारी रखने से महरूम हो गया। ईरान के इस्लामी पासदारान इंकलाब IRGC ने एक मुख्तलिफ मौके पेश करते हुए कहा कि अमरीका ने जजीरे कश्म के जनूब में IRGC की एक मवासलाती तनसीब को निशाना बनाया था। ख्याल किया जाता है कि यह मकाम वही है जिसे अमरीकी हुक्काम ने ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन करार दिया था। जवाब में तेहरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर और कुवैत में एक फौजी हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी बहरीनी और कुवैती दिफाई निजाम ने आने वाले खतरात को फजा में ही नाकारा बना दिया और किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कुवैत की फौज ने कहा कि उसके फजाई दिफाई यूनिटों ने कई मिसाइलों को रोका जबकि बहरीन ने एहतियात के तौर पर मुमलकत में इंतबाही सायरन बजा दिए। ताजा तरीन कशीदगी के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ राबते जारी हैं और इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि सिफारतकारी नाकाम हो चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के कानून साजों ने एक ऐसा कानून पेश किया है जिसके तहत महकमे खारजा के लिए यह तय करना लाजमी होगा कि आया चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया है जिससे बीजिंग पर उसके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के हवाले से कांग्रेस का ताजा दबाव बढ़ गया है। न्यू जर्सी से रिपब्लिकन नुमाइंदे क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक नुमाइंदे टॉम सोजी ने गुज़िश्ता रोज तिब्बत मजालिम का तायुन करने का एक्ट पेश किया जिसके तहत वजीर खारजा के लिए कानून बनने के एक साल के अंदर तिब्बत में चीन के इकदाम का जायजा लेते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगा। यह कानून चीनी हुकूमत के उन इकदाम के जायजे का भी मुतालबा करता है जिनका मकसद तिब्बी बुद्ध मत को चीनी रंग में रंगना और तिब्बती जबान और सकाफत को दबाना है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टोरंटो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हीथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकतदारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। खवातीन की सैफ चैंपियनशिप में आज गोवा के मारगांव में वाकई पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में भारत और भूटान आमने सामने होंगे। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन में अपने पहले मैच में जबरदस्त मुकाबला सर करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं।
مردوں کے سنگلز میں لکشیا سین کو پہلے راؤنڈ میں شکست

0: सामना करना पड़ा। मर्दों के सिंगल्स में आज एचएस प्रणॉय का मुकाबला थाईलैंड के नाट गुयान से होगा और आयुष शेट्टी का सामना चीन के वैंग होंगयांग से होगा। मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी मलेशिया के खाई जिंग कांग और अरुण ताई की जोड़ी से, जबकि मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे का मुकाबला ताइवान के हो लिंग फांग और यांग पो स्वान की जोड़ी से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा डॉ अजय शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी है। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजरकर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। अमरीका के अवैध नुमाइंदगान में एक कानून पेश किया गया है जिसके तहत वजारत खारजा के लिए यह तयन करना लाजमी होगा कि आया चीन ने तिब्बत में नस्लकुशी या इंसानियत के खिलाफ जराइम का इरतकाब किया है या नहीं। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी दो गानों पर मबनी प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की पहली पेशकश अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में केसरी फिल्म का निर्माण, जिसे मौसीकी सजाया तनिष्क बागची ने।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आप सुन रहे थे काला सोना फिल्म का नगमा। नगमा याद थी मजरू, मौसिकार आर डी बर्मन। और समझ लीजिए, अब सुनिए फिजा फिल्म का नगमा सुनीत चौहान और कृष्ण सरगाथिया की आवाजों में। मौसिकार हैं अनु मलिक।

0: इस फल में माहिर और बासमान उस्ताद उसी के दरबार से वाबस्ता थे, जिनमें मीर सैयद अली तबरेजी, ख्वाजा अब्दुस समद, शेरी वसवन, प्रेमजी गुजराती, रामदास मनोहर और हैदर कश्मीरी खासतौर पर पढ़ने लगे थे। इस दौर में फारसी नसी नसर की अहम किताबें तस्वीर नकूस से आरास्ता की गई। दास्तान अमीर हमजा के 12 जिल्दों में करीब 1400 तस्वीर शामिल की गई, जिसकी वजह से ये नाजरीन की तवज्जो का मौका बन गई। इसके अलावा चंगेजनामा, बफरनामा, अजहरनामा, रजमनामा और रामायण जैसी मशहूर जमाना तस्वीर को नकूस तस्वीर से आरास्ता किया गया। अजमर खुद जब इन किताबों को सुनता था तो बहुत सी जगह निशान बना देता था कि इस मकाम पर अगर तस्वीर हो तो बेहतर है। हुनरमंद उस्ताद इस वाकई के एतमाद से खूबसूरत तस्वीर बनाते थे। फनी खताती को भी इस दौर में मुसविरी का दर्जा हासिल था। बहुल फजल ने खत की फजीलत बताते हुए लिखा है कि ये तलीम उस्तादों के तजर्बात से आगाह करता है और इसके जरिए उन्हें फिल्म में तरक्की नसीब होती है। इस दौर की मुसविरी का अंदाजा फटाफट सोफे की दीवारों पर बड़ी तस्वीर से भी किया जा सकता है। हालांकि अब इन तस्वीर के कुछ ही हिस्से देखे जा सकते हैं। मशहूर माहिर मुसविरी ई डब्ल्यू स्मिथ ने सोफे की कुछ तस्वीर का जिक्र किया है जो उसके जमाने तक देखे जा सकते थे। उसके बयान के मुताबिक इन तस्वीर में ईरानी उसलूक के साथ हिंदुस्तानी उसलूक देखा जा सकता है। मरियम जमाने के महल की दीवारों को ईरानी तर्ज की तस्वीर से आरास्ता किया गया था, लेकिन इस महल के बरामदे में बैलों की लड़ाई का मंजर बनाया गया था जिसमें अजंता तर्ज मुसविरी की झलक नजर आते। मुसविरी ने ईरानी उसलूक के साथ रवायती हिंदुस्तानी तर्ज का इस्तेमाल असल में अकबर की शख्सियत और फलसफे का असर है। फसल रूहानी और इलमी मामला की तरह फर्म में भी अकबर का नजरिया था कि इजहार का जरिया बदलने या उसलूक के बदलने से फर्म की अजमत कम नहीं होती बल्कि इजहार में रंगीन पैदा होती है।
1: سامعین بھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا اکبری دور کی مصوری، تحریر ڈاکٹر سجاد رضوی کی تھی، پیش کر رہے تھے اجبار۔ اب پیش ہے میرے سر میرا تمہارا پروگرام کے کچھ اور نغمے۔

मुकेश और हेमलता की आवाजों में आप सुन रहे थे विश्वास फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश आखिर देखी फिल्म का नगमा सुनिए, मोहम्मद रफी और सुलक्षण पंडित की आवाजों में। मौसीकार हैं जय कौशिक।

0: सातवीं सितंबर के साथ ही आज का फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। दिन का एक बजे चाहता है, आलमी खबरें नशर होंगी।
1: अब वापस रवेली से आलमी खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर बेंसी रॉड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। जर्मनी ने आज से भारतीय शहरियों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। नई दिल्ली ने कहा है कि यह कदम भारत और जर्मनी के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान राबतों को मजीद तकवीत देगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कानून साजों ने बिल पेश किया है, जिसके तहत वजारत खारजा को यह तय करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत में नस्ल कुशी की है या इंसानियत के खिलाफ जरायम का इर्तकाब किया है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर बेंसी रॉड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई, हिफ्जान सेहत और दवासाजी समेत अहम शोबों में बाहमी ताउन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के अमूर खाजा मईशत, खजाना और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द भी मोहतरमा रॉड्रिग्स के हमराह भारत पहुंचेगा। भारत और वेनेजुएला के दरमियान खासतौर पर तवानाई और तिजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मुफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवासाजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉ रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्की निजाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रियास काकुरिस को 91 वोट मिले। अक़वामे मुत्तहिदा के आला मुज़ाकराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खितों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रर उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉ रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत काल के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फाल रखेंगे। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने UNGA का सदर मुंतखब होने पर डॉ रहमान को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि वो भारत और बांग्लादेश की मुश्तरक तरजीहात को पूरा करने और कसीर मुल्की ताउन को मुस्तहकम करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर

काम करने के मुंतजिर हैं। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुर समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। खातीन और अतफाल की बहबूद की वजारत ने कहा है कि किसी भी शहरी की तरफ से नामजदगी awards.gov.in पर सिर्फ कौमी अवार्ड्स पोर्टल के जरिए ही हासिल की जाएगी। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि ये ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है। जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे, वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। इससे पहले फ्रांस ने भी ऐलान किया था कि भारत से फिजाई सफर करने वाले शहरियों के फ्रांस से गुजरकर जाने के लिए एयरपोर्ट पर कोई ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। इस पर अमल दरामद अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के कानून साजों ने एक ऐसा कानून पेश किया है जिसके तहत महकमा खारजा के लिए यह तय करना लाजमी होगा कि आया चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ जरायम का इर्तिकाब किया है, जिससे बीजिंग पर उसके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के हवाले से कांग्रेस का ताजा दबाव बढ़ गया है। न्यू जर्सी से रिपब्लिकन नुमाइंदा केस स्मिथ और न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक नुमाइंदे टॉम सूवी ने गुज़श्ता रोज तिब्बत मजालिम का तयन करने का एक्ट पेश किया जिसके तहत वजीर खारजा के लिए कानून बनने के एक साल के अंदर तिब्बत में चीन के इकदाम का जायजा लेते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगा। यह कानून चीनी हुकूमत के उन इकदाम के जायजे का भी मुतालबा करता है जिनका मकसद तिब्बती बुद्ध मत को चीनी रंग में रंगना और तिब्बती जुबान और सकाफत को दबाना है। अमरीकी फौज के जरिए एक ऐसी तंसीब पर हमला करने के बाद जिसे वाशिंगटन ने ईरानी फौजी तंसीब करार दिया है, ईरान ने मंगल को बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिससे कशीदगी में काफी इजाफा हो गया है और एक नाजुक इलाकाई जंगबंदी के मुस्तकबिल पर खदशात पैदा हो गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज करने वाली अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले एक तेल के टैंकर को नाकारा बना दिया। अमरीकी हुकाम ने बताया कि एक हेल फायर मिसाइल ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया जिससे वो अपना सफर जारी रखने से महरूम हो गया। ईरान के इस्लामी पासदारान इनकलाब IRGC ने एक मुख्तलिफ मौकफ पेश करते हुए कहा कि अमरीका ने जजीरा किश्म के जुहूम में IRGC की एक मवासलाती तनसीब को निशाना बनाया था। ख्याल किया जाता है कि यह मकाम वही है जिसे अमरीकी हुकाम ने ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन करार दिया था। जवाब में तेहरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर और कुवैत में एक फौजी हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी बहरीनी और कुवैती दिफाई निजाम ने आने वाले खतरात को फिजा में ही नाकारा बना दिया और किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। कुवैत की फौज ने कहा कि इसके फिजाई दिफाई यूनिटों ने कई मिसाइलों को रोका जबकि बहरीन ने एहतियात के तौर पर मुमलिकत भर में इंतबाही सायरन बजा दिए। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाकौमी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हीथर नाइट और
एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और

तो देखिए जो खूबसूरत सी नायिका है और बड़ी खनकदार आवाज में जो गाना गा रही है, ये कौन है? ये है हमारी फिल्म की नायिका वहीदा रहमान और आवाज है आशा भोसले की। तो ये जो फिल्म की हम बात कर रही है कौन सी है? तीसरी कसम 1966 की बनी हुई और आज हमारी फिल्म ही तीसरी कसम है। और आपसे मैं कुछ पहले पूछूं और आप उसका सवाल का जवाब ना दें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए कितने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कौन है? ये है ये है सुर संगम रेडियो श्रोता विगम गांव गुजरात से अजीत भाव सर, प्रमिला जी हम साथ हैं, हमें नमस्कार कह रहे हैं। ये फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पे देखी थी और इनको प्रस्तुति और गीत सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कौन है? ये है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और कह रहे हैं कि शानदार गीत से आगाज किया है, सच बात है, शुक्रिया। फिर ये लिख रही है कौन? सुरेश कंगनेजा, पूनम कंगनेजा जी ये लिख रहे हैं कि आपका दिल से धन्यवाद फिल्म तीसरी कसम की कहानी और गीत सुनाने के लिए। फिर ये है अनिल मोहन जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, ये लिख रहे हैं इनके साथ ही उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, एक ही फिल्म के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म तीसरी कसम के गीतों को सुन रहे हैं। फिल्म से संबंधित दी जा रही जानकारी बेहद पसंद आ रही है, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारी बधाई अवश्य स्वीकार करें। स्वीकार किया जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और ये है प्रोग्राम पेशकर्ता मैडम सोनाली जी, प्यार भरी नमस्कार, आप द्वारा प्रस्तुत फिल्म तीसरी कसम की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है जी, जो जानकारी आप दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, इस फिल्म की कहानी व सारे गीत बहुत बढ़िया है जी। ये है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। फिर ये है समडिल नवाबारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता, ये है कमल, ये और पिपरिया से है कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, सारा गुप्ता परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये है वर्णिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और कौन है गांव नथाना से पंजाब से है हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी फिल्म तीसरी कसम की और ये सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो ये जो फिल्म है ना, इसके निर्माता और निर्देशक हम आपको बता दें, तो निर्देशक कौन थे? वो है बासु भट्टाचार्य, जो बीमल रॉय के सहयोगी रह चुके थे और ये उनकी पहली डायरेक्शनल वाली फिल्म है ये। उन्होंने फिल्म को अत्यंत संयमित, यथार्थवादी और एक बहुत पोएटिक शैली में ना रचा है। फिर इसके निर्माता थे महान गीतकार शैलेंद्र जी, हाँ उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र जी इस फिल्म के निर्माता थे और यह उनके जीवन की पहली और कहते अंतिम निर्मित फिल्म थी। कहानी से वे इतने प्रभावित हुए थे कि इसे फिल्म बनाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था, लेकिन कहते हैं कि फिल्म की जो क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस समय, तो इस फिल्म की असफलता ने उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचाया था। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि फिल्म बहुत महान कहानीकार, महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के ओरिजिनल उपन्यास मारे गए गुलफाम पर आधारित है। तो आइए अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये एक और गाना।

जी हाँ, मारे गए गुलफाम, ये है इस कहानी का मूल नाम, इस उपन्यास का मूल नाम जिस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम की आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस फिल्म के कलाकारों की बात करते हैं तो राज कपूर हैं, जिनका किरदार इस फिल्म में हीरा मन नाम का एक व्यक्ति है उसका है। फिर उसके बाद वहीदा रहमान है, वो है हीरा बाई की भूमिका में। इफ्तिखार है, ठाकुर विक्रम सिंह, ए के अंगल है, किशोर मुखर्जी है, असीत सेन है, दुलारी है। अब ना इस फिल्म में चूंकि हीरामन और हीराबाई दोनों के नाम ही एक जैसे हैं, तो एक बहुत प्यारा सा इसमें एक वो वहीदा रहमान का एक बहुत प्यारा सा एक शब्द है जो अपने हीरामन को कहती है, वो है मीता। मीता इसलिए कहती है क्योंकि दोनों के नाम शुरू होते हैं हीरा से, तो क्योंकि दोनों एक नाम है, हम नाम है, इसीलिए वो पूरे सफर में उनको मीता नाम से बुलाती हैं। मीता मतलब दोस्त। तो ये तो हुआ इस फिल्म के बारे में। अब इस कहानी का जो सार है वो इस तरह का है कि हीरामन एक सीधा साधा बैलगाड़ी चलाने वाला इंसान है। उसने जीवन में दो घटनाओं जो हो चुकी हैं उसके जीवन में, उसके बाद उसने दो कस्में खाई हैं। पहला तो ये है कि कोई ऐसा सामान वो अपनी बैलगाड़ी में नहीं ले जाएगा जो प्रतिबंधित हो, क्योंकि वो इस बारे में एक बार जब लेके जा रहा था तो किसी मुश्किल में फंस गया था, तो उसने पहली कसम खाई थी कि अब वो ये प्रतिबंधित किसी भी तरह का सामान अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। दूसरी उसने एक और कसम खाई थी, वो थी कि वो अपनी गाड़ी में कभी भी बांस लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार उसने बांस ढोया तो बांस ढोने की वजह से उसकी गाड़ी का एक और गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट हो गया था, और इस वजह से उसने दूसरी कसम खाई थी। कौन सी? कि मैं बांस वाली कोई भी चीज अपनी गाड़ी में नहीं ढोऊंगा। तीसरी कसम क्या थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि तीसरी कसम खाने तक की नौबत क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि एक दिन उसे नौटंकी में नाचने वाली मतलब नर्तकी हीराबाई को मेले तक पहुंचाने का काम मिलता है। लगभग 30 घंटे की का ये सफर है, और इसमें दोनों के बीच ना एक बहुत प्यारा सा दोस्ताना आत्मीय रिश्ता बन जाता है। हीरामन हीराबाई को एक देवी की तरह देखता है, जबकि समाज उसे एक नर्तकी स्त्री के रूप में देखता है। यही सीना फिल्म प्रेम, सामाजिक दृष्टि और मानवीय गरिमा का मार्मिक आख्यान बन जाती है। और अंत में जो हीरामन जो एक कसम खाता है वो यही होता है कि वो कभी भी अपनी गाड़ी में किसी भी नर्तकी को नहीं लेके जाएगा। ये उसकी तीसरी कसम होती है। लेकिन वो इस तक पहुंचता कैसे है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगी और आपकी मेल्स भी जरूर अपने साथ लूंगी, लेकिन उसके पहले ये बहुत प्यारा सा एक गाना है जो अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत क्यूट सा गाना है, और इसको आप देख के दुल्हनों की आपको जरूर याद आ जाएगी। तो आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये एक और गीत।

तो आपको ये गीत याद है? हाँ, बैलगाड़ी में एक नई नवेली दुल्हन जा रही है, पीछे पीछे पूरे बच्चों की एक टोली उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी में जा रही है। तो ये है फिल्म तीसरी कसम। और अब मैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की मेल शामिल करती हूँ। तो ये हमारे साथ कौन है? जी हाँ, ये सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। फिर ये है अजीत भाव सर जी, वीरम गांव गुजरात से, और लिख रहे हैं कि प्रिय आरजी होस्ट सोनाली जी नमस्कार, और राज कपूर और गीतकार मित्र शैलेंद्र ने बनाई है, इस बारे में भी लिख रहे हैं, शुक्रिया। फिर ये कौन है? ये है अरे बाबा, आपने तो बहुत सारी जानकारी इसमें लिख दी है, जब मैं धीरे धीरे आपको बताने ही वाली थी। तो इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कौन है? ये है जिन्होंने हमें पूरी जानकारी से भरी हुई मेल दी है, वो गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये है कौन? ये है चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंदरी लहरे, और इन्हें वो गीत बहुत पसंद आया, कौन सा? मारे गए गुलफाम जी, धन्यवाद। ये है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, और लिख रहे हैं कि इन्हें रोचक जानकारी और मधुर गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। रोहित वशिष्ठ जी लिख रहे हैं सर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, हम तीसरी कसम की बात कर रही हैं, तीसरी मंजिल की नहीं। और लेकिन आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये है प्रेम सागर, शुभ लता, ये है खजाने गेट अमृतसर से, खजाना गेट अमृतसर से। फिर है ये भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये दत्तरेंगी से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर ये हैं गंज गुडुंडवारा से, रामसुल, कमर राही, शाहिन, फातिमा, अदनान खान, अनु खान, और लिख रहे हैं सोनाली जी आदाब, और इन्हें कहानी और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, और आपको भी मेरा आदाब। फिर ये कौन है? ये हैं मारे गए गुलफाम उपन्यास से बनी फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र ने बनाई थी, ये है, अच्छा हम ले चुके हैं, ये है सरसंगम रेडियो श्रोता ग्रुप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर हम बात करते हैं किसके निर्देशन की विशेषताओं की, तो चलते आपको ये भी बता दूं कि भासु भट्टाचार्य ने फिल्म को मेलोड्रामा बनने नहीं दिया, उन्होंने कैमरा पात्रों का पीछा नहीं, उनका जो कैमरा है वो ना कैरेक्टर्स के पीछे पीछे नहीं जाता, उनके साथ चलता है, और ना संवादों से अधिक वहां पर इस कहते हैं कि संवाद से ज्यादा मौन बोलता है इस फिल्म में। जी हाँ, जो बातें बोलकर नहीं की जाती उससे ज्यादा अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से हमारे कलाकारों ने इस फिल्म में अपने आप को बोला है, अपने आप को जाहिर किया है। फिर ना एक चीज और भी है कि इसमें ना कहते हैं कि निर्देशन की विशेषताओं में एक चीज और आती है कि आप किस तरह से प्रेम को दर्शाते हैं, तो इसमें ना प्रेम को व्यक्त नहीं किया जाता, इसमें प्रेम को महसूस कराया जाता है। पूरा जीवन इस फिल्म में जो है वो एक लोक

जीवन की लय में बहता हुआ चलता है हमारे साथ। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के उस दौर में बनी जब भव्यता और नाटकीयता का बोलबाला था, इसीलिए इस फिल्म की जो सादगी है ना, ये सादगी इस फिल्म की क्रांतिकारी चीज मानी गई थी। तो अब हम आपको इस फिल्म का वो गाना सुनाते हैं जो इस फिल्म का बहुत ज्यादा ही फेमस गाना है और हमें भी बहुत पसंद है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

देखिए ये गाना तो इतना ज्यादा सबको पसंद किया जाता है, सबके द्वारा पसंद किया जाता है कि इसके बारे में क्या बोले, बैकग्राउंड में बज रहा है। मैं आपको इसके फिल्म के बारे में दो तीन बातें और बताना चाहूंगी। देखिए इस फिल्म में ना कभी हीरो को एकदम हीरो जैसा नहीं बताया गया, उसे बहुत ही सामान्य इंसान की तरह दिखाया गया है। इस फिल्म में भी ना इस गाने की पिक्चराइजेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो राज कपूर बड़े आराम से आते हैं, ढफली उठाते हैं और ढफली बजाना शुरू कर देते हैं एक आम इंसान की तरह। तो ये इस फिल्म की खासियत है। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे दोस्त हैं, ये हैं पुंजाली नवाकर, रोजी डिकोस्ट्रा और धर्मेंद्र छिपा। ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसे गाया है मन्ना डे ने और उनके साथ हैं उनके बहुत सारे साथी कलाकार। हमारे साथ धर्मेंद्र छिपा जी जुड़े हुए हैं, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। और देखिए वक्त ना बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है तो मैं आपको फटाफट आपके नाम बता देती हूँ। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। फिर उषा मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और रोडी मैंने आपको बता दिया, रोजी डी कास्ट्रो जुड़े हैं हमारे साथ, पर्ल डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिर अजीत भावसार जी हमारे साथ हैं, स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ जो अलग ही जॉनर का है, एक अलग ही तरह का है। बता दूं आपको कि संगीत दिया है संगीतकार शंकर जय किशन ने, शैलेंद्र के बोल हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने साथ में इसके गीत लिखे हैं। और इसका जो अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के कुछ रोचक तथ्यों की तो वो यही है कि इस फिल्म में ना कहते हैं कि राज कपूर ने सिर्फ एक रुपये का अपना पारिश्रमिक लिया था और मूल कलाकार राज कपूर और वहीदा रहमान नहीं थे। शुरुआत में महमूद और हीराबाई, पहले हीरामन के रोल के लिए महमूद और हीराबाई के लिए मीना कुमारी पर विचार हुआ था। फिर उसके बाद में राज कपूर और वहीदा रहमान चुने गए। रिलीज के समय दर्शकों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया था और बाद में लेकिन इसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया और ये बहुत खूबसूरत फिल्म है।

साथ आपको छोड़ूंगी। आपको बता दूं कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म का 1966 में, और अन्य सम्मान इसको मिले हैं बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और इसे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी नामांकन मिला था। तो ये थी आज की फिल्म तीसरी कसम। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे पंजाबी में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

उच्च पदरी महत्व का गठन के पाए। इस कमेटी की प्रधानगी भारतीय जनता खोज और सिक्ख्या परिषद के डायरेक्टर जनरल कंचन देव करेंगे। कमेटी ने इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली चौगेड़ा सिलसिले की संभाल संबंधित मुख्य मुद्दों को हल करने एक निरपक्ष और वैज्ञानिक मुलाकात जरूरी है। इसको पहले पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने चौगेड़ा और जंगलात मंत्रालय वालों पेश की गई रिपोर्ट को लागू करने से रोक ला दी थी और माहरों वालों एक नई समीक्षा का निर्देश दिया था। कमेटी इस गल की जांच करेगी कि अरावली पहाड़ की पछाण लिए तकनीकी माध्यम चौगेड़ा सुरक्षा अधिनियम क्षेत्र में काफी घटा सकते हैं। चौगेड़े पक्षों संवेदनशील क्षेत्र खुदाई या होर गतिविधियां की आग्ञा दे सकते हैं। यह कमेटी रिपोर्ट वरते गए ऊंचाई मापदंडों के विज्ञानिक आधार का भी घोर करेगी और मुलांकन करेगी कि मौजूदा मेनबद्दी सिलसिले अरावली पर्वत लड़ी की रक्षा लिए धुके ने। कमेटी में जंगलात भू विज्ञान चौगेड़ा और वातावरण के माहर शामिल ने। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिव कुमार अज शाम राज्य के 25वें मुख्यमंत्री वजो सह चुकेंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोक भवन उन्होंने सांस पाएंगे। साबका गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री वजो सह चुकेंगे। अज लगभग 10 विधायकों के मंत्री वजो सह चुकन की संभावना है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय प्रधान मल्होत्रा के खड़गे कांग्रेस जनरल सकत्र के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा धार्मिक आगुआ मजदूर लोगों अदाकार प्रमुख कारोबारिया ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ @ARMG ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ARMG-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ @ARMG ਜਲੰਧਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

सालों में वक्त योजनावां सुधारा राही मध्य वर्ग के लोगों को समर्थ बनाया सरल टैक्स प्रणाली बेहतर बैंकिंग बीमा पेंशन सहूलतों ने मध्य वर्ग की आर्थिक सुरक्षा यकीनी बनाई है। नवी टैक्स व्यवस्था तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोगों को कोई आमदन टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके GST ने भी टैक्स प्रणाली सरल बना के रोजाना वरतों दीजा की कीमत घटा के मध्य वर्ग को राहत दी है। 2015 शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लखा लोगों पक्के मकान प्रदान किए ने। इस योजना तहत मंजूर किए गए 1 करोड़ 25 लाख मकानों 98 तो वह

से सुरक्षा मिल जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना तहत जन औषधि केंद्र राही लोगों को किफायती गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल रही ने जो बाजार नालों 50 से 80% सस्तिया दरों से उपलब्ध ने। 2015 शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कारण लोग अपने कारोबार

0: ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਲਟਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलुकियों के अफराद खानदान के लिए 2 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली ऋतु प्रताप बैनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली के तकरीबन 7 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। भारत शमसी सलाहियतों में सालाना इजाफे के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शमसी तरक्की का बाजार बन गया है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज मर्दों के सिंगल्स में HS प्रणॉय और आयुष शेट्टी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। खबरें तफसील से। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस वाकये में 40 अफराद को बचा लिया गया। जनूब दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने बताया कि आग बुझाने वाली 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने पुलिस, फायर खिदमात और दीगर हंगामी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों से 40 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है और उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालविया नगर इलाके में आग लगने के वाकये में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो काम सभी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवायकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड से 2 लाख रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के होटल में आज सुबह आग लगने के अफसोसनाक वाकये में कीमती जानों के इतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर खानदानों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी मालवीय नगर में आग लगने के हादसे में जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफत से निपटने की जिला अथॉरिटी, कैट्स, एम्बुलेंस खिदमात और दीगर हंगामी खिदमात की एजेंसियों की टीमों को मुतहरक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। वजीर आला ने कहा कि इन टीमों की तेज और बरवक्त कार्रवाइयों ने कई अफराद को बचाने और मुतासर अहाते के इनखिला में मदद की। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और मुतासर कुंभों को हर तरह की तिबी मदद और मुआवनत की पेशकश की जा रही है। मगरबी बंगाल की साबिक हुक्मरान पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC में अफरा तफरी का आलम है और यह पार्टी तकसीम होने के दहाने पर पहुंच गई है। TMC से निकाले गए रुकन असेंबली ऋतु प्रताप बैनर्जी ने तकरीबन 7 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। इस तादाद से असेंबली कंट्रोल में फैसला कुन तब्दीली हो सकती है। उनके ग्रुप ने पहले ही असेंबली स्पीकर रथिंद्रा बोस को एक खत तहरीर करके खुद को हकीकी TMC

0: definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes the world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसार

कारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जायेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि यह कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त
बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा

0: वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व एसआईआर मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार से। जी हाँ दोस्तों, आज ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू तो करते हैं लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत और फिर आपसे ही पूछेंगे कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, आज हम बात करेंगे अभिनेत्री सारिका की। जी हाँ, जिनकी आंखें समंदर जैसी गहरी और जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, साथ ही बचपन में जिसने मास्टर सूरज बनकर दिल जीता, जवानी में जो गीत गाता चल की गूंज बनी और आगे चलकर जिसने दो बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम सारिका की। तो शुरू करते हैं सारिका जी के सफर नामिका, यह खूबसूरत सफर, और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों देखिए हमारे पास संदेश भी आ गए हैं हमारे दोस्तों के। तो हमारे पास संदेश आया है चिरमिरी कोरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालेंद्री लहरे जी का। इन्होंने बिल्कुल सही कलाकार हमें बताया है कि आज हम बात कर रहे हैं सारिका की।

दूसरा जो हमारे पास संदेश आया है वो आया है हीरा मणि वर्मा दत्रेगी भाटापार से। इन्होंने भी हमें सही, बिल्कुल सही गैस किया है कि आज हम बात कर रहे हैं सारिका की। जी हाँ दोस्तों, सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में हुआ था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिता जो थे वो परिवार को छोड़कर किसी कारणवश चले गए थे। घर की जो हालत थी वो कुछ खास नहीं थी, तो सिर्फ 5 साल की मासूम सारिका ने कैमरे के सामने खड़ा होना सीख लिया। वो कभी स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि उनकी घर की हालत ठीक नहीं थी और उनके कंधों पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों में एक लड़की का किरदार निभाया और नाम मिला उन्हें मास्टर सूरज। और उस बच्चे ने, यानी सूरज ने, हम सभी का दिल जीत भी लिया था। क्या आप जानते हैं फिल्म बालक का वो मशहूर गाना सुन ले बाबू ये पैगाम, जिस बच्चे पर फिल्माया गया था, वो कोई लड़का नहीं था साथियों, बल्कि वो हम सबकी चहेती थी सारिका। जी हाँ दोस्तों, तो सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म अभिनय की हुई ये गीत।

दोस्तों, अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी का। अगला संदेश आया है हमारे पास गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का। साथियों, आप अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं और देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सारिका ने सबसे पहले जो अपनी शुरुआत की थी वो एक लड़के के रूप में की थी और बाद में वो बेबी सारिका बनी और फिल्म हमराज में विम्मी की बेटी के रोल में उन्होंने सबका ध्यान खींचा। लेकिन साथियों, असल कामयाबी उनकी तब आई जब साल 1975 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज हुई। सचिन पिलगांवकर और सारिका की जोड़ी ने स्क्रीन पर जो जादू बिखेरा वो तो हम सभी को पता है और हम सभी को वो जोड़ी बहुत पसंद भी आई थी। तो लीजिए सुनते हैं उनकी अभिनय की इस फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, सारिका जी ने बहुत समय बहुत कठिन दौर भी अपनी जिंदगी में देखा है, लेकिन इस फौलादी महिला ने हार कभी नहीं मानी और अपने दम पर दोबारा से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। इस संघर्ष के बीच उन्हें प्यार मिला साउथ के सुपरस्टार कमल हासन का। दोनों एक साथ रहने लगे। साल 1986 में उनकी बड़ी बेटी श्रुति हसन का जन्म हुआ, जिसके बाद 1988 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सारिका ने एक्टिंग से दूरी बना ली, लेकिन सिनेमा से उनका नाता नहीं टूटा। दोस्तों, वो कमल हासन की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगी और यहां भी उनके हुनर का डंका बजा। फिल्म हे राम 2000 में जो आई, उनके लिए सारिका को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।

पर जामिया में एक बेबस और पीड़ित माँ के किरदार में उन्होंने ऐसा जीवन अभिनय किया कि पूरा देश रो पड़ा। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। लेकिन अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब वापस अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलूकीन के अफराद खानदान के लिए

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना सातवां आसमान फिल्म से। अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म है साजन।

फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है लॉटरी।

0: कौन है?
1: मैं हूँ जनाब अली।
0: मैं कौन?
1: क्या अर्ज करूँ, नाम बताना तो फिजूल है क्योंकि आप मुझे पहचानते नहीं। जान पहचान करने ही आया हूँ। जान पहचान हो जाएगी तो आइंदा आप पहचान लिया करेंगे।
0: दरवाजा खुला है।
1: आदाब से जनाब।
0: आदाब तशरीफ रखे।
1: शुक्रिया। मैं खादिम अली खुर्जे वाला हूँ।
0: आप शायर?
1: नहीं साहब, शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी शेर बनाया करता था। ऐसे शेर के लोग देखकर दंग रह जाते थे।
0: आप कैसे शेर बनाते थे?
1: मिट्टी के शेर साहब, मिट्टी के।
0: आप खुर्जे के रहने वाले?
1: खुर्जा क्या साहब, अब तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। 15 बरस से यही रह रहा हूँ। इन 15 वर्षों में एक बार भी खुर्जा नहीं गया है।
0: तो फरमाइए आप कैसे तशरीफ लाए?
1: साहब सरोजनी नगर तक तो बस में आया, उसके बाद पैदल। बस मैं एक उम्दा नई साइकिल लेने की सोच रहा हूँ। कल मैं एक साइकिल वाले की दुकान पर गया, उसके बाहर बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ साइकिल किस्तों पर मिलती है। मैंने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक साइकिल ले लेता हूँ और कीमत किस्तों पर चुका दूंगा। मैं दुकान के अंदर गया और मालिक से कहा कि मुझे एक साइकिल चाहिए। उसने कहा कि आप पैसे जमा करा दीजिए और साइकिल की पहली किस्त ले जाइए। पहली किस्त में हम हैंडल देंगे, दूसरी किस्त में है फ्रेम, तीसरी किस्त में पहिए, चौथी किस्त में पैडल और चेन, और पांचवी किस्त में है बाकी का सामान।
0: जी
1: मतलब ये कि 5 किस्तों में साइकिल पूरी कर देंगे। और साहब आप पूछेंगे कि मैं आपके पास क्यों आया? लीजिए मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं टिकट बेचता हूँ।
0: कहाँ का टिकट? जन्नत का, जहन्नुम?
1: अरे जहन्नुम में जाए आपके दुश्मन साहब, मैं तो आपके लिए इस दुनिया में ही जन्नत का इंतजाम कर रहा हूँ।
0: क्या मतलब?
1: मैं लॉटरी का टिकट बेचता हूँ, छुपे हुए खजानों के दरवाजे खोलता हूँ। आप भी लॉटरी का टिकट लीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए और लखपति बन जाइए।
0: तो आप घर घर दरवाजा खटखटा कर टिकट बेचते हैं?
1: आपने सुना होगा जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज के जमाने में भगवान देता है तो दरवाजा खटखटा कर देता है या फिर बाहर की घंटी बजा कर देता है।
0: सुनिए साहब, मैं लॉटरी के टिकट में बहुत पैसा बर्बाद कर चुका हूँ।
1: अरे साहब आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं कहता हूँ आप लॉटरी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए। जब लॉटरी को मालूम होगा कि आप उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले तो एक दिन आपकी जरूर आएगी और फिर आप मालामाल हो जाएंगे, मालामाल।
0: माफ कीजिए, मैं टिकट नहीं लूंगा।
1: ना लीजिए, हरगिज ना लीजिए। पिछले साल की बात है साहब कि मैंने एक साहब से बहुत कहा कि वो लॉटरी का टिकट ले ले, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद वो टिकट एक पान वाले ने खरीद लिया। सच जानिए साहब, खुदा गवाह है, उसी टिकट पे पहला इनाम पूरे 7 लाख रुपए का निकला।
0: भाई इनाम तो उस पान वाले की किस्मत में था, वो कोई भी टिकट खरीद लेता, इनाम उसी को मिलता।
1: अरे साहब मेरा दिल कह रहा है इस बार आपका इनाम जरूर आएगा। फरमाइए, हरियाणा का दूं 5 लाख का, यूपी का दूं 7 लाख का, या पंजाब का 13 लाख का?
0: बात यह है कि मैं अपने पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवा कर टिकट खरीदूं।
1: अरे साहब हमें ये भी मंजूर है, ये लीजिए मेरा कार्ड, इस पर घर का पता लिखा हुआ है। आपका जब जी चाहे, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आप गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, खिदमत करूंगा।
0: आया वर्ष,
1: आया वर्ष।

0: जय राम जी की पंडित जी।
1: जय राम जी की। आओ बाबू रामनाथ जी, जो है सो आज तू बहुत दिनों में दिखाई दिए हो।
0: बस यूं ही पंडित जी, दुनिया के झंझटों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: भाई हमारे पास आना भी एक झंझट समझ लो।
0: अरे जी क्या कहते हो पंडित जी, तुम्हारे यहाँ आना तो हम तीरथ समझते हैं।
1: तीरथ?
0: हाँ तीरथ।
1: कहो सब ठीक ठाक है ना? जो है
0: सब ठीक ही है।
1: बात ये है भाई, आदमी डॉक्टर के पास तब जाता है जब तन से दुखी होता है जो है, और पंडित के पास तब आता है जब मन से दुखी होता है।
0: पंडित जी भगवान की दया से तन भी ठीक है और मन में भी कोई खास चिंता नहीं है। बस इधर से जा रहा था, सोचा पंडित जी से मिल चले।

0: ये तो बड़ी मेहरबानी की आपने। सच बात तो ये है भैया, तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है।
1: क्यों नहीं पंडित जी, जब भी आता हूँ कुछ देकर ही जाता हूँ।
0: लेने देने की बात नहीं है बाबू रामनाथ जी, ये तो दिल की बात है जो है। अच्छा, वो पिछली बार जो साहब तुम्हारे साथ आए थे, पूछ रहे थे लड़का होगा या लड़की, उनका क्या हाल है?
1: अरे कुछ ना पूछो पंडित जी, उनके तो लड़की हुई है और आपने कहा था लड़का होगा।
0: मैंने कहा था लड़का होगा?
1: आपने कहा था लड़का नहीं लड़की।
0: नहीं मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लड़का नहीं लड़की नहीं कहा था, मैंने तो कहा था लड़का नहीं लड़की।
1: अरे वाह पंडित जी वाह, ये तो दोनों तरह ठीक बैठता है।
0: तुम्हारा भी जवाब नहीं पंडित जी,
1: लड़का नहीं लड़की और लड़का नहीं लड़की। क्या बात है पंडित जी। ये बताइए मेरी तरक्की कब हो?
0: अपनी पत्री लाए हो जो है?
1: वो तो नहीं लाया।
0: पंडित के पास कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए जो है।
1: जी हाथ खाली हुए तो क्या हुआ, जेब तो खाली नहीं है।
0: तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी बाबू रामनाथ जी, ये पंडित का वचन है। कह दिया सो कह दिया जो है।
1: जेब खाली तो नहीं रहती पंडित जी, पर पूरी भरी भी नहीं रहती।
0: जेब तो भर जाती है पर आदमी की नीयत नहीं भरती। बस हाथ दिखाओ।
1: ये लो पंडित जी।
0: हाँ देखो, ये है किस्मत की लाइन, सीधी जा रही है बिल्कुल सपाट जो है तो। पर यहाँ आकर इसे एक छोटी सी लाइन काट रही है। अगर ये लाइन इस लाइन को न काटती तो फौरन तुम्हारी तरक्की हो जाती। जी हाँ, ये तो यूँ समझो जो कि मोटर कार दौड़ी जा रही हो, रास्ते में अचानक पत्थर आ जाए।
1: पंडित जी ये पत्थर हटा दीजिए।
0: हटा देंगे भैया, बिल्कुल हटा देंगे, तुम्हारी तरक्की का रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे जो है तो। लेकिन ये पत्थर जरा भारी है, इसे हटाने में काफी पैसे खर्च होंगे जो है।
1: कितने पंडित जी?
0: 51 में जाप करूंगा और इसके बाद तुम्हारी तरक्की फौरन हो जाएगी।
1: अच्छा पंडित जी, अच्छा जाप भी कराऊंगा। पंडित जी
0: हाँ,
1: ये भी देखो कि कुछ लॉटरी वाटरी निकलने का भी कोई चांस है?
0: राहु तेरे घर में है जो है सो, शनिचरियार में है, मंगल भी अच्छी जगह है, बस बन गया काम जो है सो। आएगी जरूर आएगी भाई, तुम्हारी लॉटरी जरूर निकलेगी। बहुत अच्छा समय जा रहा है आजकल जो है।
1: सच पंडित जी?
0: बिल्कुल, इस हिसाब से तुम्हारी किस्मत खुद बोल रही है बाबू जी की लॉटरी जरूर आएगी, जरूर आएगी लॉटरी। कोई टिकट ले रखा है क्या?
1: लिया तो नहीं है पंडित जी, पर ले लेंगे ले लेंगे।
0: हाँ।
1: लॉटरी का टिकट खरीदने में कौन सी देर लगती है।
0: हाँ।
1: हाँ, एक लॉटरी का टिकट बेचने वाला मेरे घर भी आया था।
0: अच्छा।
1: पर मैंने सोचा पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर ही टिकट खरीदूंगा।
0: लो मुहूर्त भी निकाल देते हैं जो है सो, 5 और 3 8, 8 में से 6 गए, बचे 2 जो है सो। आजकल अंधेरी रात है और इधर से आए 40। लो भाई मुहूर्त निकल आया है जो है सो, लॉटरी का टिकट 2:40 पर खरीदना चाहिए।
1: रात के 2:40?
0: हमारे हिसाब से तो यही पखत निकलता है जो है।
1: पर पंडित जी इतनी रात गए कहाँ से टिकट खरीदेंगे?
0: भाई ये तो तुम जानो जो है।
1: और हाँ, याद है।
0: हाँ।
1: वो लॉटरी का टिकट बेचने वाला अपने घर का पता भी दे गया था।
0: हाँ, तो बस उसी से टिकट खरीद लेना जो है।
1: पर 2:30 रात के उसके घर जाना।
0: हाँ, उसका घर कितनी दूर है?
1: हमारे यहाँ से कोई 1 मील होगा।
0: फिर क्या बात है
1: पंडित जी, पंडित जी। हाँ। आप भी हमारे साथ चलिए।
0: चले चलेंगे, तुम्हारा घर तो यहाँ पास में ही है ना।
1: तो ठीक है पंडित जी।
0: हाँ।
1: मैं कल रात को 2 आपके पास आऊँगा।
0: हाँ।
1: आप तैयार रहिएगा।
0: यानी कि रात को तुम मेरे यहाँ आओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ कल 9 आ जाऊँगा, तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूँगा, फिर वहीं से इकट्ठे चले चलेंगे। घर से चलने से पहले कुछ जाप करना होगा, वो भी कर लूंगा।
1: ठीक है पंडित जी। मैं यहीं सेक्टर 3 में रहता हूँ, मकान नंबर 548।
0: हाँ हाँ भैया, एक बात और है।
1: हाँ?
0: हम तो सीधे साधे आदमी हैं, कोई तकल्लुफ न करना, बस 5-6 असली घी के पराठे, मटर पनीर की सब्जी, एक कोई सूखी तरकारी बनवा लेना।

0: चटनी और रायता तो होगा ही, पापड़ हो जाए कोई हर्ज नहीं, मीठी चीज में खीर बनवा लेना, इसके अलावा दो चार मौसम के फल, बस इतना ही काफी है, बाकी झंझट न करना जो है।
1: पंडित जी,
0: पंडित जी,
1: हाँ, राशन तो निकलेगी ना?
0: बिल्कुल निकलेगी बाबू रामनाथ जी, ना निकलने का कोई मतलब ही नहीं है जो है।
1: अच्छा तो पंडित जी, कल रात को मैं आपका घर पर ही इंतजार करूंगा। नमस्कार।
0: नमस्कार। अच्छा।

0: है, ऐसे गाने मत गाया करो।
1: क्यों, आपको क्या एतराज है?
0: मुझे शर्म आती है।
1: शर्माती है? पर क्यों शर्माती है?
0: इस उम्र में भी तुम मेरे नैनों की तारीफ करोगे तो मुझे शर्म नहीं आएगी?
1: आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हारे नैनों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ।
0: शादी से पहले हमारे मकान के सामने एक आदमी रहता था, वो जब भी मुझे देखता ये गाना गाने लगता, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करे।
1: मैं उस आदमी को जानता था, उसकी दो बीवियों और चार बच्चे थे। जब तुम उसे देखती थी तो वो ये गाना गाया करता था। उसका मतलब था कि तुम्हारी आंखें बहुत डरावनी हैं।
0: क्या?
1: इसलिए वो गाता था, दो नैना मतवाले तुम्हारे हम पर जुल्म करें।
0: तुम्हें तो मुझसे डर नहीं लगता ना?
1: मेरी बात छोड़ो, मुझे भूत चुड़ैल से डर नहीं लगता, तुमसे भी नहीं लगता।
0: क्या क्या मतलब तुम्हारा?
1: मतलब ये मतलब ये
0: साफ साफ कहो ना।
1: तो साफ साफ कह दूं, नहीं मानूंगी।
0: कहो, नहीं मानूंगी।
1: तो सुनो,
0: सुनाओ
1: तुम
0: कहो, आगे कहो।
1: तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो।
0: इसमें क्या शक?
1: बहुत ही अच्छी हो।
0: अच्छा सुनो, बाजार से जाकर आधा किलो मूंग की दाल, पाव भर टमाटर और 100 ग्राम काली मिर्च ला दो।
1: आधा किलो पाव भर और 100 ग्राम? अरे 2 महीने बाद मैं 1 ट्रक मूंग की दाल का, 1 ट्रक टमाटरों का और 1 कनस्तर काली मिर्च का घर में डलवा दूंगा।
0: क्या?
1: अब तुम पूछोगी इस घर में इतना सामान कहाँ रखूंगा। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, मैं एक नया मकान भी बनवाऊंगा।
0: ये शेख चिल्ली किसी बातें क्यों बना रहे हो खामखा?
1: चलो तुम्हें तो बता देता हूँ, वैसे तो मैंने सोचा था कि किसी को नहीं बताऊंगा।
0: तो मत बताओ, रखो अपने दिल में।
1: अरे नाराज हो गए? अरे जाती तो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो तो आज वो पंडित फिर मिल गया था, उसने हिसाब लगाया और फिर मुझे बताया कि मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी।
0: ओ लॉटरी निकलेगी?
1: तुम नहीं जानती, वो बहुत पहुंचा हुआ पंडित है।
0: जैसे तो वैसा तुम्हारा पंडित,
1: उसकी बात कभी झूठ नहीं निकलती। मुझे इससे पहले भी किसी नजूमी ने बताया था।
0: तो ठीक है, खरीद लो लॉटरी का टिकट।
1: पंडित ने बताया है कि लॉटरी का टिकट खरीदने का मुहूर्त 2:40 पर है।
0: क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को टिकट कहाँ से खरीदोगे?
1: अरे मैं सब बंदोबस्त कर आया हूँ। पंडित जी कल शाम को यहीं आ जाएंगे।
0: क्या?
1: और फिर 2 बजे रात के मैं और पंडित जी टिकट खरीदने जाएंगे।
0: मेरा ख्याल है तुम किसी लॉटरी के टिकट वाले को भी अपने यहाँ ही बुलवा लो।
1: तुम तो मजाक कर रही हो। हाँ पंडित जी यहीं भोजन करेंगे।
0: क्या करेंगे?
1: उनके लिए मटर पनीर, आलू गोभी, टमाटर की चटनी, रायता वगैरह वगैरह और खीर बनवा लेना।
0: मुझसे इतना झंझट नहीं होगा, समझे?
1: पूरे 2 लाख की लॉटरी है भगवान। लॉटरी निकलने के बाद हमारी दुनिया ही बदल जाएगी।
0: 2 लाख?
1: हाँ पूरे 2 लाख।
0: 2 लाख?
1: Thank you.

0: बहुत सुनसान है, कोई आता जाता दिखाई नहीं देता, मुझे तो डर लग रहा।
1: डर किस बात का पंडित जी, डर किस बात का?
0: भगवान, अगर किसी ने यहाँ पर लूट लिया तो?
1: लूट लिया? आपके पास क्या है पंडित जी?
0: वैसे तो जेब में 2 रुपए 40 पैसे। भाई बाबू रामनाथ जी, मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। जो है
1: सुझा तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैं घबरा। पंडित जी, कोई लाठी तो साथ ले आनी चाहिए थी।
2: खबरदार, जो भागने की कोशिश की, ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम?
1: ये पंडित जी हैं।
2: तुम कौन हो?
1: मैं रामनाथ हूँ।
2: इस वक्त कहाँ से आ रहे हो?
1: पंडित जी आप बता दीजिए।
0: नहीं नहीं, आप ही बताइए।
2: चोर बदमाश कहीं के, चलो थाने।
1: सुनिए संतरा साहब, बात यह है कि हमें इस मोहल्ले में मकान नंबर 3/10 में खाजम अली खुर्जे वाले के यहाँ जाना है।
2: वो जो लॉटरी बेचता है?
0: हाँ, वही।
2: चलो चलो मेरे साथ।
0: अच्छा,
2: उसका तो वो सामने वाला मकान है।
0: जी।
2: अगर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ तो मारते मारते दम निकाल दूंगा। चोर चक्के कहीं के?
0: नहीं, हम चोर नहीं है संतरी, चोर नहीं है,
1: चोर नहीं है।
2: अब सब मालूम हो जाएगा। लो, उसका घर तो आ गया। कौन है? बाहर आओ।
3: या अल्लाह, आधी रात को कौन सी बला आ गई?
2: क्या बात है भाई, जल्दी बाहर आओ।
3: या अल्लाह, या परवरदिगार, अब तू ही कर बेड़ा पार, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू।
4: सलाम संतरी साहब।
2: तुम इन्हें जानते हो?
4: मैं इन्हें नहीं जानता, मेरे इनसे कोई वास्ता नहीं। मैं शरीफ आदमी हूँ, खुदा कसम, मैं कोई बुरा काम नहीं करता, मेरा इनसे क्या ताल्लुक हो सकता है?
2: क्यों बे, तुम लोग इनसे मिलने आए थे? हराम खोर बदमाश कहीं के?
1: हम चोर नहीं है संतरी साहब। देखिए खाजम अली साहब, हम भी आपकी तरह शरीफ आदमी हैं। आप उस दिन मेरे घर पर तशरीफ लाए थे ना, आपने ये कार्ड मुझे दिया था।
2: ये कार्ड तुमने दिया था?
4: कार्ड? ये कार्ड तो मेरा ही है।
1: आपको याद होगा मैंने कहा था कि मुहूर्त निकलवा कर लॉटरी का टिकट खरीदूंगा।
4: अरे ये तो कहा था, पर ये मुझे नहीं मालूम ये लोग करते क्या है।
2: इनका घर कहाँ है?
4: घर Sector 3 में है।
1: जी हाँ, सरकारी क्वार्टर है, मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ।
2: तुम्हारे पास दफ्तर का पास है?
1: जी हाँ, ये है, ये देखिए।
2: पहले क्यों नहीं दिखाया? ठहरो, मैं इसका नंबर नोट कर लूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो छोड़ूंगा नहीं।
1: माफ करना, ये पंडित जी हैं, लाठी के टिकट खरीदने का मुहूर्त 2:40 पर निकला।
4: तुम भी अजीब आदमी हो।
1: अब हमारी लाठी निकल आई खाजम अली साहब, तो आपको भी तो कमीशन मिला।
4: अच्छा अच्छा, कितने टिकट चाहिए?
1: सिर्फ एक टिकट। पर भैया जल्दी करो, 2:37 हो गए हैं, मुहूर्त निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
4: मगर आपको इस वक्त एक टिकट के 2 रुपए देने हैं। हाँ,
1: वो क्यों?
4: ये पूछते हुए शर्म नहीं आती? आधी रात को आके परेशान किया।
1: अच्छा, बाबा 2 रुपए ही दे देंगे, जल्दी से ले आओ।
4: अच्छा, लाता हूँ।
0: हाँ, 2:38 तो हो गए हैं जो है सो।
4: ये लीजिए।
0: अभी फाड़िएगा नहीं खाजम अली साहब, अभी आधा मिनट बाकी है जो है सो, पूरे 2:40 पर फाड़गा।
1: चलो, 1, 2, 3
0: ठीक मुहूर्त पर टिकट फटा है, अब लाठरी जरूर आएगी।
1: ये लो 2 रुपए। 1, 2।
0: कितने की लाठरी है?
1: 2 लाख।
0: 2 लाख।

0: जानते हो रात मैंने क्या ख्वाब देखा?
1: मुझे क्या मालूम, ख्वाब तो तुमने देखा और पूछ मुझसे रही हो।
0: मैंने देखा कि तुम गधे पर बैठे सारंगी बजा रहे हो और तुम्हारे दो सींग निकले हुए हैं।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे ख्वाब देखती हो? अरे ख्वाब देखना ही है तो अच्छे ख्वाब देखा करो, इस तरह के ऊट पटांग ख्वाब देखने से क्या फायदा।
0: अपनी नहीं कहते, तुमने एक बार कहा था कि तुमने ख्वाब देखा कि मेरी टांग टूट गई है, तुम्हें बताओ तुमने ऐसा ख्वाब क्यों देखा?
1: तुम तो बेवकूफ हो,
0: तुम्हें तो सारी दुनिया अपनी जैसी नजर आती है, पूरी बात सुनते नहीं और यूं ही बिगड़ना शुरू कर देते हो। अरे मैं अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ, मैंने पंडित जी को बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ये बहुत ही अच्छा ख्वाब है।

0: गधे पर बैठने का मतलब है कि कोई खुशी की बात होने वाली है। सारंगी बजाने का मतलब है कि कहीं से धन मिलेगा। और जब मैंने पूछा कि सींग का क्या मतलब है तो वो बोले कि दो सींगों का मतलब है कि 2 लाख रुपया। सुनो, जिस लॉटरी का टिकट हमने खरीदा है ना, वो 2 लाख की है ना?
1: हाँ, 2 लाख की है।
0: आप तुम ही सोचो कि पंडित जी को कैसे मालूम हुआ कि लॉटरी 2 लाख की है।
1: मालूम होता है कि ये पंडित भी कोई पहुंचा हुआ पंडित है।
0: हाँ, बड़ा माना हुआ पंडित है।
1: भगवान ने चाहा तो इस बार लॉटरी जरूर निकलेगी। अच्छा, पहले ये बताओ कि अगर लॉटरी मिल गई तो तुम क्या खरीदोगी?
0: 2 लाख रुपया मिलेगा ना?
2: पूरा 2 लाख तो नहीं, कुछ इनकम टैक्स कट जाएगा।
0: कितना टैक्स कटेगा
1: ये तो मालूम नहीं।
0: तो मालूम करो ना।
1: समझ लो कि 1.5 लाख मिल जाएगा।
0: मैं तो पहले 2 दर्जन स्टेनलेस स्टील के चम्मच लाऊंगी।
1: तेरे की 2 लाख रुपया मिलेगा और बात करते हो चम्मचों की।
0: अरे तुम क्या जानो, घर में चम्मच होना बहुत जरूरी है। 4 बरस हुए 1 दर्जन लिए थे, सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी सब टूट गए।
1: भगवान, चम्मच खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया नहीं चाहिए।
0: मैंने कब कहा है कि 1.5 लाख रुपए के चम्मच खरीदेंगे? 2 दर्जन चम्मच ले आएंगे।
1: अरे चम्मच तो अब भी हम खरीद सकते हैं।
0: अगर हम लॉटरी के पैसों से चम्मच खरीदेंगे तो क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी? तुम्हें तो मेरी बात काटने की आदत।
1: अच्छा बाबा, चम्मच भी ले आएंगे, पर मेरा मतलब है कोई और कीमती चीज सोचो।
0: मेरी मानो तो पहले हम फ्रिज खरीदेंगे।
1: फ्रिज?
0: हाँ हाँ, फ्रिज बड़ी काम की चीज है। जब तुम दफ्तर से लौटोगे ना तो छत से ठंडा ठंडा शरबत पिलाया करूंगी और आइसक्रीम भी बनाया।
1: नहीं भाई, पहले टेलीविजन लेंगे। तुम कहती हो ना मैं तुम्हें सिनेमा नहीं ले जाता, बस फिर घर बैठकर फिल्में देखा करना।
0: नहीं नहीं, पहले फ्रिज लेंगे।
1: नहीं, पहले टेलीविजन लेंगे।
0: मैं कह देती हूँ पहले फ्रिज आएगा।
1: मैं भी कह देता हूँ पहले टेलीविजन आएगा।
0: तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो
1: और तुम हमेशा जिद करती हो।
0: मैं कह देती हूँ। हाँ, ये भी तो
1: किस बेवकूफ से पाला पड़ा।
0: बेवकूफ हो गए तो मैं तुम्हारे घर वाले।
1: चुप रहो,
0: तुम चुप रहो।
1: देखो देखो देखो देखो शीला, बात को समझो। 2 लाख मिलने पर हम दोनों चीजें खरीद सकते हैं।
0: यही तो मैं भी कहती हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि पहले कौन से खरीदेंगे?
1: दोनों चीजें एक साथ एक दुकान से भी खरीदी जा सकती हैं।
0: तो फिर क्यों बेकार लड़ते हो?
1: अच्छा मान लिया, दोनों चीजें खरीद ली, ये दोनों तो 8-10 हजार में आ जाएंगी। बाकी पैसे का क्या करेंगे?
0: जमीन खरीदेंगे,
1: मकान बनाएंगे,
0: नए कपड़े सिलवाएंगे
1: या फर्नीचर लाएंगे,
0: कार खरीदेंगे,
1: सब बनाएंगे।

0: 又在外头比赛哦，
1: 你这是在外面哭闹。
0: ये तो बिल्कुल ठीक है, 2 लाख का इनाम है ना,
1: पूरे 2 लाख का। ये लो 2 किलो बर्फी। अरे भाई, लोग मुबारकबाद देने आएंगे तो उनका मुंह तो मीठा करवाना ही पड़ेगा। तो मैं 10 किलो लड्डू का ऑर्डर भी दे रहा हूँ।
0: अच्छा?
1: जो भी बधाई देने आए कम से कम 4 लड्डू। तो मैंने तुम्हारे भाई सतीश को भी कार दे दिया है।
0: अच्छा?
1: कल आ जाएगा और फिर परसों हम लोग लॉटरी की रकम लेने के लिए जाएंगे।
0: अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इतनी बड़ी रकम लेने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए।
1: सुनो, मैंने अपनी बहन को भी खत लिख दिया कि इस खुशी में उसे सोने का हार भी पहनवा दूंगा।
0: अजी, तुम तो खामखा पैसा लुटाने पर तुले हुए हो। सतीश आएगा तो उसे क्या दोगे?
1: उसे एक नया सूट सिलवा दूंगा।
0: बड़े कंजूस हो जी, उसे कम से कम एक मोटरसाइकिल ले देना।
1: चलो मंजूर है, मैंने कहा अब तो खुश हो।
0: अरे देखो तो कौन है।
2: कहिए। नमस्ते, मैं ओखला के यतीम खाने से आया हूँ।
0: आपका यतीम खाना कहाँ है?
2: मैंने अर्ज किया ना, ओखला में। यतीम खाने में इस वक्त 50 यतीम बच्चों की परवरिश हो रही है।
1: आपको कोई सरकारी इमदाद भी मिलती है?
2: जी नहीं, ये यतीम खाना तो आप जैसे फराग दिल और मेहरबान लोगों की इनायत से ही चलता है।
1: वैसे मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा।
2: क्या 500?
0: 500 तो बहुत है, 300 दे देंगे।
1: अपने मुंह से 500 निकला है।

0: हम 500 ही देंगे।
1: मैं तुम्हें इस तरह पैसा बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ,
2: वो भगवान ने हमें दिया है तो हमें कुछ पैसा खैरात में भी देना चाहिए।
1: तो हम आपको 300 दे देंगे।
0: नहीं, मैं 500 दूंगा।
1: मैं तुम्हें 500 नहीं देने दूंगी।
2: तुम हमेशा अपनी जिद करती हो,
1: तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो।
0: आप लोग क्यों झगड़ते हैं? मुझे 300 भी दे दीजिएगा।
2: चलो, ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, हम 400 दे देंगे।
0: कब देंगे?
2: देखो, हमारी लॉटरी निकली है। हमें परसों लॉटरी की रकम मिल जाएगी। उससे अगले रोज आप आ जाए।
0: मुबारक।

0: बच्चे आपको बहुत दुहाई देंगे। अच्छा नमस्ते
1: नमस्ते
2: नमस्ते।
0: मैं फ्रिज और टेलीविजन का ऑर्डर दे कर आता।
1: अरे मुझे भी पहले देखने दो ना।
0: ओहो भगवान ने हमें वो दिन दिखाया है कि हमें अब देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मैं कह आता हूँ जो सबसे बढ़िया फ्रिज और टेलीविजन हो भेज देना।
1: देखो देखो देखो
0: वो सड़क पर पंडित जी जा रहे हैं।
1: पंडित जी
0: ओ पंडित जी
1: पंडित जी
0: इधर आइए। पंडित रोशनी आ गई आ गई
3: मुबारक हो जो 2 लाख की लाठी है ना।
0: हाँ पंडित जी
3: जो हम कहते थे वो गलत नहीं होता। बाबू रामनाथ जी कह दिया था ना कि मुहूर्त पर जो टिकट खरीदोगे तो लॉटरी जरूर आएगी। हमारा हिसाब गलत नहीं हो सकता।
0: तुम्हारा तो जवाब नहीं पंडित जी। ये लो बर्फी मुंह मीठा करो।
3: सिर्फ बर्फी से ही काम नहीं चलेगा साहब।
0: पंडित जी अच्छा अच्छा ये लो 21 रुपए और अब बर्फी खाओ। बेचारा अपना घर ढूंढ रहा है। मुबारकबाद देने आया होगा।
1: पंडित जी इसी के यहाँ तो हम लोग रात को गए थे।
0: आराम से आइए आइए। आप तो एक बार पहले भी यहाँ आ चुके हैं फिर भी मकान भूल गए। ये लीजिए बर्फी खाइए।
4: बनवाइए एक और लॉटरी का टिकट दूँ।
0: पहले इस लॉटरी की रकम तो ले आए हैं। तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा?
3: कमीशन?
0: अजीब आदमी हो जो टिकट बेचते हो उसका नतीजा नहीं देखते हो। अरे भाई अपनी लॉटरी आ गई है
4: आपकी।
0: ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
4: सुबह मैंने भी लॉटरी के टिकट नंबर देखे थे।
0: क्या देखा था? ये देखो टिकट टिकट और ये रहा अखबार।
4: ये नंबर तो ठीक है साहब लेकिन आपका टिकट बी सीरीज का है और ये लॉटरी इस नंबर के टिकट की सी सीरीज में निकली है। जरा गौर से देखिए साहब।
1: भगवान ये क्या हो गया?
3: अरे होना क्या था जो है तो मैं पहले ही कह रहा था कि उसकी घड़ी ठीक नहीं थी। टिकट ठीक मुहूर्त पर नहीं खरीदा गया वरना लॉटरी जरूर निकलती।
0: दस किलो लड्डू लाया हूँ। आपने ऑर्डर दिया था ना
1: कार को? मैंने सिर्फ
0: मैंने सिर्फ
1: भर
0: भर।

0: अभी आप सुन रहे थे आरके शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान था लॉटरी। पेशकश थी प्रेम वोहरा की। हिस्सा लेने वाले फनकार थे बी आर नागर, चांद नारायण सक्सेना, जलालुद्दीन, बी एन रायजादा, एच के घई और सी एस नागर। ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में दीवार फिल्म से।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

大黑

0: किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा आपने जहरीला इंसान फिल्म से सुना। आज के प्रोग्राम के आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म है मर्यादा।
1: तू भी आ जा के आ गई रुक

0: सीबीएसई ने वादा किया है कि दोबारा जांच फीस की अदायगी के लिए तलबा का इन बैंकों में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अमरीकी फौज के जरिए एक ऐसी तनसीब पर हमला करने के बाद जिसे वाशिंगटन ने ईरानी फौजी तनसीब करार दिया था, ईरान ने मंगल को बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिससे कशीदगी में काफी इजाफा हो गया है और एक नाजुक इलाकाई जंगबंदी के मुस्तकबिल पर खदशा पैदा हो गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज करने वाली अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले एक तेल के टैंकर को नाकारा बना दिया। अमरीकी हुकाम ने बताया कि एक हेल फायर मिसाइल ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया जिससे वो अपना सफर जारी रखने से महरूम हो गया। ईरान के इस्लामी पासदाराना इंकलाब IRGC ने एक मुख्तलिफ मौके पेश करते हुए कहा कि अमरीका ने जजीरा किशम के जनूब में IRGC की एक मवासलाती तनसीब को निशाना बनाया था। ख्याल किया जाता है ये वही मकाम है जिसे अमरीकी हुकाम ने ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन करार दिया था। जवाब में तेहरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर्स और कुवैत में एक फौजी हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन ताके। अमरीकी बहरीनी और कुवैती दिफाई निजाम ने आने वाले खतरात को फजा में ही नकारा बना दिया और किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। कुवैत की फौज ने कहा कि उसके फजाई दिफाई यूनिटों ने कई मिसाइलों को रोका जबकि बहरीन ने एहतियात के तौर पर मुमलिकत भर में इंतवाई सायरन बजा दिए। ताजा तरीन कशीदगी के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ रबते जारी हैं और उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि सिफारतकारी नाकाम हो चुकी है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के कानून साजों ने एक ऐसा कानून पेश किया है जिसके तहत महकमा खारजा के लिए यह तय करना लाजमी होगा कि आया चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया है या नहीं, जिससे बीजिंग पर उसके इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के हवाले से कांग्रेस का ताजा दबाव बढ़ गया है। न्यू जर्सी से रिपब्लिकन नुमाइंदे क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक नुमाइंदे टॉम सूजी ने गुज़िश्ता रोज तिब्बत मुजालिम का तयन करने का एक्ट पेश किया जिसके तहत वजीर खारजा के लिए कानून बनने के एक साल के अंदर तिब्बत में चीन के इकदाम का जायजा लेते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीर आजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और मेलहुन के अफराद खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का अच्छा जायजा लेने के लिए आला इख्तियार के हामिल माहरीन का एक पैनल तश्कील दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। शाम के 5 बजने को है, दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बैंड 103.6 MHz से आकाशवाणी का ए अमृतसर केंद्र। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी ए पंजाबी सेवाएं शाम के 5 बजे में हम साड़ी दूजी सभा के प्रोग्राम शुरू होंगे ने। समीन सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम झोक माही दी।
2: मैं रीना कॉल, आप सबको राम राम ते नमस्ते करें दी। हां, आज मैं हाजिर हां आप सब दे सामने सिराई की सूफी संगीत दा एक प्रोग्राम घेन के। ओ सूफी संगीत जड़ी आबिदा प्रवीण जी ने अपनी मिठी मिठी आवाज विच गाया है, ते उम्मीद करें दी हां तो आपको ये प्रोग्राम पसंद हो सी। मैं मंगती

మనస్తో మనం గులా.

लाल सखी मेरे कलब दा नारा अली अली मेरे कलब दा नारा अली अली बन जोगन लाल कलंदर दी बन जोगन लाल कलंदर दी एह कहंदी फिरा मैं गली गली मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच लव मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरे कलब दा

झल्ला पखी पखी झल्ला में पखी झल्ला पखी पखी झल्ला में पखी पखी झल्ला में पखी पखी झल्ला में पखी झल्ला पखी।

ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਜਿੰਦੜੀ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਜਿੰਦੜੀ ਮੇਰੀ, ਝੱਲਾ ਪੱਖੀ।

दोस्तों अज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच असी गलबात करांगे साइकिल दी सवारी बारे। अज दी गल दा विषय रहेगा सस्ती ते सेहतमंद सवारी साइकिल दी। जीआईएन प्रोग्राम दे विच गायिका रेहाना पट्टी नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी, नाल ही नाल सुनावांगे तुहानू तुहाडी पसंद दा गीत प्रोग्राम तमन्ना दे विच। नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता, लेकिन हाजिर हाँ प्रोग्राम देश पंजाब और हुण करांगे अज दी गल सस्ती ते सेहतमंद सवारी साइकिल दी। दोस्तों साइकिल दे लाभ दसन तो पहला आओ साइकिल बारे थोड़ी जी जानकारी हासिल कर दिया कि साइकिल दा जन्म किथे होया सी। ए होया सी जर्मनी दे विच 1817 दे विच कार्ल डरेस ने पहली बारी दो पहिया रनिंग मशीन बनाई सी। ते जानदे हो दोस्तों कि स्टार्टिंग दे विच साइकिल दे पैडल नहीं हुंदे सी, लोकी साइकिल दी काठी ते बह के पैरां नाल जमीन ते धक्के मारदे सी ते अगे वधदे सी। साइकिल कारां तो पहला आम लोकां लई आवाजाई दा सब तो प्रमुख साधन सी। 19वीं सदी दे अंत तक यूरोप ते अमरीका दे विच एशियन कंट्रीज दे विच साइकिल बड़ा हरमन प्यारा सी, लोकी बड़ा पसंद करदे सी साइकिल चलाउणा। दोस्तों अज भी दुनिया भर दे विच तकरीबन 1 अरब तो वध साइकिल ने, जिहड़े कारां ते मोटरसाइकिलां नालों भी किते वध ने। नीदरलैंड नूं साइकिलां दा शहर कहा जांदा है। नीदरलैंड दे विच लोग घट ने पर साइकिल ज्यादा ने। ते दोस्तों एक गल इह वी कही जांदी है कि औरतां दी आजादी 1890 दे दहाके दे विच औरतां नूं अपनी पसंदीदा जगह ते आप जान दी आजादी दित्ती सी इस साइकिल ने, क्योंकि औरतां जदों साइकिल चलाउण लग पईआं फिर घर तों बाहर आण लग पईआं, फिर बाजारां दे विच सब्जियां दालां आप लैण लग पईआं, दफ्तरां च जाण लग पईआं, कारखानियां च जाण लग पईआं। कहण दा भाव इह कि जिहड़ी असीं गल करदे हां वूमन लिबरेशन दी, असीं औरतां दे हक्कां दी गल करदे हां, ते साइकिल उहनां दा पहला हक सी, उहनां दी आजादी दा परवाना। साइकिल सस्ती भी हुंदी है ते इहदे फायदे भी बड़े हुंदे ने। साइकिल दे विच ना पेट्रोल दी लोड़ पैंदी है ना डीजल दी लोड़ पैंदी है, बस तुसीं अपनी शक्ति देनी हुंदी है, अपनी ऊर्जा देनी हुंदी है। काठी ते बैठ के साइकिल चलांदा बंदा सड़क दा राजा ते राणी बन जांदा है। निक्के बच्चां नूं वेख्या पहलां उहनां दी साइकिल दे नीचे स्पोर्ट्स लगियां हुंदियां तां कि बच्चा किधरे डिग ना पवे, उहनूं बैलेंस बनाउणा आवे। हौली हौली जदों पापा या मम्मा साइकिल चलाउणा सिखांदे ने उह पिछे हुंदे ने ते बच्चे नूं लगदा कि हां कोई हैगा मैनूं संभालण दी, पर हौली हौली उह पिछा छड्ड दिंदे ने, साइकिल अपने सारे असीं चलाउण लग जांदे आ ते पहली वार चलाया साइकिल हर किसे नूं याद रह जांदा। उह साइकिल साइकिल नहीं हुंदा, उह साडे खंभ हुंदे ने, असीं दिन रात फिर साइकिल चलाउंदे आ, खूब एक्सरसाइज करदे आ। पुराने वेलिआं दे विच लोकी इक शहर तों दूजे शहर जाण लई साइकिल दा ही इस्तेमाल करदे सी। कई लोकी दिन दे विच कई कई किलोमीटर साइकिल चला लैंदे सी अपनी नौकरियां ते जाण वास्ते, अपने दफ्तरां ते जाण वास्ते, ते जिस दिन उह साइकिल नहीं चलांदे सी उहनां नूं हड्ड भन्नवी लग जांदी सी। क्यों? क्योंकि उहनां दी रूटीन दा इक हिस्सा बन जांदा है साइकिल चलाउणा। दोस्तों साइकिल एक एक्सरसाइज दा ही रूप है। जदों असीं साइकिल चलाउंदे आं मोटापा नहीं सानूं घेरदा, साडियां जिहड़ियां मांसपेशियां ने उह वी मजबूत बनदियां, साडियां लत्तां स्ट्रांग बनदियां ते गोडियां गिट्टियां दी वी कदी प्रॉब्लम नहीं आंदी। साइकिल दा सब तो वड्डा फायदा पता की है कि खर्चा बड़ा घट हुंदा है। पेट्रोल डीजल जिवें महंगे होई जा रहे ने सानू सारा नूं फिकर पै जांदी है कि हाए कारां ते किवें जावांगे, इह पुगदा नहीं, पर साइकिल हर किसे नूं पुग जांदा है। जिहदे कोल पैसा है उहनूं भी पुगदा है, क्यों? क्योंकि उहदी एक्सरसाइज हो जांदी है। जिहदे कोल नहीं है, जिहड़ा कि बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहुंदा है, उहदे वास्ते तां साइकिल वरदान है। नाले तां वर्जिश हो जांदी है, नाले चार पैसे भी बच जांदे ने। रोज अपने दिल नूं तंदुरुस्त रखण दा वादा असीं अपने आप नाल करदे हां, ते इह वादा कदों पूरा हुंदा है? जदों असीं साइकिल चलाउंदे हां। दोस्तों बड़ी चंगी गल है, अजकल तां घरां दे विच स्टेशनरी साइकिल जिन्हां नूं तुसीं स्थिर स्टैंड दे उत्ते खड़ा कर सकदे हो, नीचे स्टैंड बनिया हुंदा है, उह साइकिल डॉक्टर कहिंदे ने कि जे तुसीं रोज रूटीन दे विच 20 मिंट चलाउंदे हो ते तुहाडे गोडे किड्डे किते नहीं जाणे आ, गोडे तुहाडे बिलकुल तंदुरुस्त रहिंदे ने ते तुसीं ऐन अणख दे नाल तुरदे फिरदे हो। दोस्तों साइकिल एनवायरमेंट दा यानी कि वातावरण दा भी बड़ा पक्का दोस्त है, क्योंकि देखो जी जदों असीं साइकिल चलाने आ ना तां कोई उहदी आवाज निकलदी है, ना ही उहदे च कोई पोल्यूशन निकलदा है, ना ही उहदी चीपों चीपों हुंदी।

0: हो गया। सो मेरी मांझा हमेशा रहिंदा आ, बट फिर भी जिंदगी एक सफर चलदा रहना चाहिदा आ। सो अपने वालों असी जो पिछे दा छड के सो अगे नूं जावांगे तां अगे वधांगे। ही अपने वालों कोशिश रहिंदी आ कि हुण जो पिछला आ उहनूं भुल जाइए, बस अगे मेहनत करिए, मेहनत करके बस अगे वधीए। सो श्रोतियां दे देर तक पहुंचिए। गायकी दे विच ही अगे जाना चाहनी आ, बट किसे किसे टाइम अज दे टाइम मन दे विच ही हो जांदा कि मैनू शायद कुछ होर नाल कर लेने चाहिदा। जदों एक मन दे विच अपने एक अपने मन दे विच एक चॉइस एक आपां एक बना ली आ कि हां जो सोच आ एक मोटो आ एक आइडल आपां जिन्हों मान लिया आ कि हां इत्थे तक ही असीं पहुंचना, इह साडा मुकाम आ। सो एक संगीत एक ऐदां दी चीज आ जिन्हों लग जावे ओह फिर रह नहीं सकदा, उस तों बिना रह नहीं सकदा।
1: तुसीं कोई भी चीज करनी होवे ना तुसीं संगीत सुन लो, हर चीज तुसीं भुल जांदे हो सब कुछ।
0: शायद तुसीं भी इह नोट कीता होणा, जदों अपना माइंड उदास हुंदा आ सो आपां इह किते भी कुछ जां किसे नूं गुनगुनांदे देख लीए जां सुन लीए, सो एक कुछ सुकून भरिया सो अपने मन दी मन नूं शांति मिल जांदी है। संगीत एक इस तरह परमात्मा नाल साडा मेल करा देंदा है, एक रब दे नाल। सो सानूं एक शांति सुकून मिल जांदा आ। सो इसे तरह असीं इही चाहने आ कि खुद नूं भी शांत करिए और दूसरिया नूं भी शांत माहौल दईए।
1: किसी बॉलीवुड सिंगर ने भी सुनते हो तुसी?
0: जी बॉलीवुड च मेनू काफी सिंगर्स जिस तरह लता जी, सो उना उहने इस टाइम शरीरिक रूप च साडे च नहीं आ, बट उना ओ अमर ने, उना दे जिन्ने भी गाने ने मेरे पापा जी लता जी नूं सुनदे आ, लता मंगेशकर जी नूं। सो मैं उना उना दे गाने जरूर गाना पसंद करदी आ।
1: गुनगुनांदे वी कोई उना दा गाना?
0: जी उना दे गाने
1: साडे जिहड़े अपकमिंग सिंगर्स ने
0: जी
1: जो गायकी वल आना चाहते ने, की सुनेहा देना चाहते हो? क्योंकि देखो गल इस तरह की कोई रातो रात स्टार बन नहीं जाता
0: जी,
1: और कई हुंदा कि सानू रातो रात मिल जाए, संघर्ष चढ़ा है वह ही जीवन का एक मोटो होना चाहिए
0: जी। हां जी तुसी हुने कहा कि रातो रात, मैं मेरे मन च भी सीगा कि जिस तरह असी सुनीदा ना सारे कहंदे आ कि आ गाना आया सीगा ते रातो रात ही ओह फेमस हो गया, सवेरे उठ के देखिया तां बस बल्ले बल्ले उसकी होगी कि हां ए सिंगर है। अज दे भी जिस तरह बच्चे यही सोचते अगे आ रहे आ कि उन्हां नूं मेरा यही है कि आप जिस तरह मेहनत करदे आ बचपन तो लैके आप स्कूलिंग तक, स्कूल साडा चलदा आ सो उथो लैके प्लस टू तक अगे कॉलेज, इस संगीत भी इसी तरह आ कि हौली हौली हौली हौली मेहनत ने नाल ही आप अगे जा सकते आ। जे तां असी एक जंप करना चाहिए ते ओ जंप वाला काम नहीं सही हैगा। सो मेहनत दे नाल जिस तरह मेहनत करो रियाज करो। सिंगर्स ने ओ आपा सिर्फ टीवी तक देखदे आ हुण, क्योंकि मैं खुद इह लाइन दे विच अगे जा रही आ सो मैनूं पता म्यूजिक पहला सोंग चूज करना, गाना चुनना, फिर ओहदा कंपोजिशन बनदी आ, फिर जाके म्यूजिक डायरेक्टर कोल जिदा आपा जाना, फिर गाना, फिर ओहनूं प्रैक्टिस करनी ओहदी, फिर रियाज करना, फिर ओहदे पिछे ओह किस तरह पहुंचे आया उत्थे तक जाके, ओह किसे नूं नहीं मुश्किल आ, ओह कोई नहीं देखदा, बस जदों स्क्रीन ते आ जाना आ जां उहनां ने सुन लैणा आ बस इही, ओह उहनां नूं सिर्फ इही दिखदा है कि आ गया आ, हां इह बहुत अच्छा आ, पिछला किसे नूं नहीं दिखदा। सो अजकल इही कह रहे हां कि बहुत टफ आ, बहुत संघर्ष आ, सो स्टेप बाय स्टेप अगे वधन। अज इत्थे आके मैनूं बहुत खुशी हुई आप जी दे नाल गल करके, सो मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत आ आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ते आई आ। सो दूरदर्शन जदों मैं जानी आ सो उत्थे जाके इत्थे दा कहंदे आ सारे कि उत्थे भी तुहानू जाणा चाहीदा, अज मैनूं मौका मिलिया।
1: सो रिहाना जी असीं इही चाहने कि तुहाडा सफर हमेशा अगे चलदा रहे और इसे तरह तुसीं संघर्ष करके अगे वधो और होर अगे जाओ। सो तुसीं आए गल्लां बातां सांझियां कीतियां, बहुत बहुत धन्नवाद।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया।
2: दोस्तों प्रोग्राम जी आया नू तुसी सुन रहे सी, साडे अज दे मेहमान सन गायिका रिहाना पट्टी। उम्मीद करदे आं एक गल बात थानू बहुत पसंद आई होगी। तो जी फिर हुण वेला हो गया है पंजाबी फिल्म संगीत दा। सब तो पहला दिलराज कौर दी आवाज दे विच एक गीत।

दोस्तों हम तुहानू सुनाउण जा रहे हां महिंदर कपूर ते सविता साथी दी आवाज दे विच ए वंगा वाला गीत।

अंग अंग तेरा ललारी पाण सावा दौड़ के मैं रंग दे अंग अंग तेरा पहला एक बार गोरिए हाय पहला एक बार गोरिए लिख दे अंग उत नाम मेरा हाय नी नाम मेरा हाय नी नाम मेरा।

कहानियां दिपुहे तरह रख फेर के भाजपा वकीलों की लैना छेड़ के कहानियां दिपुहे तरह रख फेर के भाजपा वकीलों की

0: तलाक हो गई। बल्ले बल्ले बैतुल के तलाक हो गई। मुकुल राज राज यहाँ खलौंदा के फूल के तलाक हो गई। मुकुल राज राज यहाँ खलौंदा बैतुल के तलाक हो गई।
1: बल्ले बल्ले गवांडिया ने पेट दुख दे।
2: बल्ले बल्ले गवांडिया ने पेट दुख दे।
1: गटा पर

0: हरपुर दे
1: सल्ले होशियारपुर दे
0: सोने गोल जिमें से कश्मीरी ते अंब होशियारपुर।

0: bei Kalle, Kalle, wann der Ambi hat.
1: Kalle,

रेडियो 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं सारे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। शाम दे 6:30 बज चुके ने, अब हुण सुणदे आं देहाती प्रोग्राम।

0: ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
0: जी, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबन तो पहला एक मिनट प्लीज रुको, सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो। वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी शाम 7 बजे सुनोगे पंजाबी खबरां।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ETF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ETF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ETF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन दिस सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से भरी जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रूपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे

डॉक्टर जी परमेश्वर ने, उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। लोकेंद्र भाई देखिए, अगर हम अपने भाइयों से बताया कि आज हम उन्हें कृषि समाचार दर्शन में कुछ किसान भाइयों से भी मिलवाएंगे और
1: उनके अनुभव मनोरंजन भी कराएंगे,
0: बिल्कुल मनोरंजन भी कराएंगे और साथ ही साथ उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे इस बदलते हुए मौसम के बारे में। जैसे कि गर्मी का बहुत ही भरपूर गर्मी इस वक्त हो रही है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो गर्मी में घर से बाहर निकलते समय किस तरह का अपने आप को आपको बचा के रखना है गर्मी से किस तरह से, तो वो सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: क्योंकि अगर आपको लू लग जाती है या आपको किसी वजह से कोई तबीयत खराब हो जाती है तो आप सबसे पहले क्या करें।
1: देखिए बिल्कुल बंदा है ना, आपने सही कहा कि देखिए ये मौसम जो इस टाइम गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, उसमें हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। क्योंकि हमारी जो किसान भाई है देखिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर मेहनत करने के साथ साथ अगर उन्हें लू लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उनको स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, और देखिए जब कहते हैं ना जब लू लग जाती है तो आपको उल्टी, दस्त, सर में दर्द, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते रहें और साथ ही साथ इस तरह का खाना खाएं जो तरल पदार्थ हैं, जैसे आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, अगर फ्रूट्स नहीं है तो खेत में बैठे तो खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीजें भी हैं वो भी खाते रहें। साथ ही साथ अपने पास पानी का घड़े भर के इंतजाम रखें कि भाई पानी जरूर होना चाहिए, नींबू पानी आप ले सकते हैं कि भाई फ्रिज का पानी में आप फ्रिज का पानी यूज ना करें, नींबू का पानी अगर आप घड़े के

0: पानी में ही बना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नुकसान भी नहीं करेगा और आपके शरीर में भी, आपके शरीर को भी हाइड्रेट करेगा।
1: और देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, इसके साथ साथ जो हमारा पशुधन है उसका भी इस मौसम में विशेष रूप से ध्यान देना है और उनको ऐसी जगह बांधना है कि उनके हवा तो लगे लेकिन धूप ना लगे।
0: बिल्कुल, और गर्म हवा ना लगे। हाँ। ये भी एक बड़ी बात है कि हवा लगे लेकिन गर्म हवा ना लगे। उनको अगर आप कमरे में बंद करते हैं किसी मतलब छाया के वाले स्थान पे उन्हें रखते हैं, तो वहाँ पे बोरी जो होती है ना उसको भिगो के डाल दें तो हवा आएगी वो ठंडी होकर आएगी। कूलर का, पंखे का, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह भी पहले जमाने के लोग ऐसी चिक डाल के उसके ऊपर पानी डाल देते थे तो ठंडी हवा बन के अंदर आती थी।
1: इसके साथ साथ देखिए पशुओं के लिए दिन में कई बार साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराना चाहिए और गर्मी के में शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे। अगर पशुओं को अगर ऐसा होता है पानी की कमी होती है तो उन्हें परेशानी होगी और उनके इस मौसम में हरी चारे का संतुलित आहार और खनिज मिश्रण और नमक का उचित मात्रा में शामिल करें और चारा सुबह और शाम के समय दें और ठंडा समय मतलब ठंडे समय में भी उसका खिलाना लाभकारी है। इसके साथ साथ वंदन मैं अपने भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि पशुओं को दोपहर में जो बाहर बांधते हैं उसको ठंडी जगह पर, जैसे हमने पहले भी कहा, उसको ठंडी जगह पर बांधना चाहिए और उन्हें शुद्ध पानी देना चाहिए ताकि वो हमारे पशुधन है उनका विशेष रूप से ध्यान देना है।
0: आपको अपना और अपने पशुधन का विशेष रूप से ध्यान रखना है इस गर्मी भरी लू से भरे हवाओं से। और आइए सुनते हैं ये एक हमारे कृषि समाचार संध्या गुप्ता से, जो कि हमारे
1: किसान भाइयों
0: से बातचीत कर रही है।
1: उन्होंने अपने अपने अनुभवों को साझा किया, आइए सुनवाते हैं अपने भाइयों को।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में आइए सुनते हैं आम की बागवानी करने वाले किसानों के अनुभव।
3: मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कस्बा कांधला का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में पूर्व से ही बाग और खेती होती आई है, मतलब मैं कहूँ तो पिछली 7 पीढ़ियों से, और हमारे परिवार में फिलहाल लगभग 550 बीघा खेती की भूमि है। अगर आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखें तो मल्टी लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉप फार्मिंग में ज्यादा लाभ किसानों को मिलता है। मैं भी उसी ट्रेंड पे हूँ। आम का हमारा एक पुराना बाग बाबा जी के समय का 100 बीघे का बाग कांगला में है। उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, लंगड़ा, चौंसा, दशहरी, रामकेला, डेंगा, मालदा। लेकिन उसके बाद हमारा एक कृषि फार्म 400 बीघे का कांगला से 8 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहां पर 2012 में मैंने एक तो लंगड़ा, चौसा, रामकेला तो लगाया ही। लास्ट ईयर ही जो कोसा की नई वैरायटी आई है आम की, कुछ रंगीन वैरायटी है, वो मैंने वैरायटी अभी लगाई है, अभी उनपे फ्रूटिंग नहीं आया। लाडवा जो है कुरुक्षेत्र में, वहां पे हरियाणा हॉर्टिकल्चर का एक सेंटर है, वहां पे मैंने जाके वो वैरायटी देखी है, वहीं से प्रेरणा लेके मैंने वैरायटी अपने यहाँ लगाई है। देखिए, जिस जमीन में कोई खेती होती है, चाहे गन्ना करें, गेहूं करें, कुछ भी करें, उस जमीन में वो कैसी भी मिट्टी है, वैसे तो दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है, वहां पर आम हो या कोई और वैरायटी हो, कोई भी क्रॉप हो जाती है। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पे आम के आपने देखा होंगे बहुत सारे बाग पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि आम से आय उतनी नहीं होती। 15-20 साल पहले आम का जो मूल्य होता था बाजार में वो 15-20-30 रुपए किलो, आज वो मूल्य 40-50-60 रुपए किलो, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ आम के मूल्य में नहीं आया है। हमें बहुत सारे स्प्रे करने की आजकल जरूरत पड़ने लगी, वो इसीलिए पड़ने लगी कि ये जो बागों के आसपास पोल्ट्री फार्म खुल गए तो वहां पे तरह तरह के कीटाणु होते हैं, वो सब फसलों पे अटैक करते हैं, उसका नुकसान हर फ्रूट्स को होता है। तो सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि जो कम से कम ग्रीन लेयर है जहां पे बाग होते हैं ज्यादा, वहां पर इस तरह पोल्ट्री फार्म खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसके नुकसान होता है। इसीलिए आम की तरफ थोड़ा सा कम रुझान हुआ है, लेकिन हम क्योंकि पुराने जमाने से आम की खेती करते आ रहे हैं, मैंने भी नई वैरायटियां भी लगाई हैं। आम एक बहुत अच्छी क्रॉप है अगर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, समय समय पर जब जिस चीज की जरूरत है, मान लिया कोई भी आपको नजर आए कि कोई बीमारी आ गई, कोई कीड़ा आ गया, तो तत्काल किसी वैज्ञानिक से राय लेकर और उसका उसी समय जो भी सही दवाई हो उसका स्प्रे करें। और आम जो है या कोई भी पेड़ है वो भी हमारी तरह ही है, उसको भी सभी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि आम की कुछ क्रॉप में एक साल फ्रूटिंग होती है, एक साल नहीं होती, उसका कारण यही है हार्मोन्स डिस्टर्बेंस। अगर आम के पौधे को आप समय समय पर पूरा पोषक तत्व दें तो आप इस साइकिल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो आम के जो पौध हम लोग

0: लगाते हैं वो जुलाई बरसात खत्म होने की जब तरफ होती है और गर्मी थोड़ा कम पड़ती है, क्योंकि गर्मी भी मान जाता है नया पेड़ और पाला भी मानता है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए हम उसको लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो वेरायटी अब पूसा की नई आई है, हाई डेंसिटी उनको बोलते हैं, मतलब वो कम दूरी पर भी लग जाते हैं, जैसे चौसा और लंगड़ा जो वेरायटी है वो 16 गज पे लगते हैं, यानी कि 16 से 48 फीट पे कम से कम लगाना चाहिए। लेकिन जब आम का पेड़ लगभग 10 साल बाद अच्छे से फल देना प्रारंभ करता है, तो उस बीच में हम क्या करें, 10 साल तक के बीच में हम ये कर सकते हैं कि आम के बिल्कुल मध्य में यानी कि 24 फुट पे नाशपाती का पेड़ लगा सकते हैं, 24 फुट के बीच में यानी कि 12 फुट पे जैसे कि मैंने किया आड़ू लगा सकते हैं और अमरूद लगा सकते हैं। वो इसलिए आड़ू और अमरूद की जो आयु मानी जाती है वो लगभग 15 से 20 वर्ष मानी जाती है, तो इतने आम फल देना स्टार्ट करता है इतने वो समाप्ति की तरफ होते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं, आम और नाशपाती तैयार हो जाती है और दोनों ही क्रॉप आज किसान को बहुत अच्छी आमदनी दे रही है। जो आम की वेराइटीज हैं वो अलग अलग समय पर तैयार पकती हैं, जैसे मालदा हमारे यहाँ एक वेरायटी है वो सबसे पहले शुरू होती है, उसके बाद दशहरी आता है, उसके बाद लंगड़ा आता है, फिर उसी बीच में रामकेला आ जाता है जो अचार के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद चौसा आता है। तो जब आम पे हल्का सा येलोइशपन आना शुरू हो जाए पेड़ पे लगे हुए तो उसको तोड़ लेना चाहिए, और उससे पहले भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो अधपका होता है, उसके अंदर स्वाद नहीं रहता, उसमें खट्टापन रहता, और कभी कभी अपने आप जो पेड़ फल तैयार हो जाता है तो वो टपक भी जाता है, जिसको बोलते हैं टपका, तो उसमें जो स्वाद होता है वो किसी में नहीं होता। और मंडी के भाव का तो आपके हाथ में है नहीं कि कब आपको भाव अच्छा मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये सब मांग और पूर्ति का खेल है।
1: मेरा नाम मोहम्मद अंसार है, मैं सियाली का रहने वाला हूँ और बाग है, आम का भी है फसल हमारे पास में, चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, बम्बई है, ये नस्ल है हमारे पास 4, 15 बीघे के बाग है अभी फिलहाल हमारे पास में, और तकरीबन 50 साल हमारे पास में हो गए बाग को हमारे पास, यानी तकरीबन 25 फुट पर ये पेड़ लगता है, 25 फुट ऐसे चौड़ाई में, यानी जो आपस में मिले ना पेड़, फासला यानी 25 फुट लगता है, कहीं लंगड़ा लगा हुआ है तो कहीं दशहरी है तो कहीं चौसा है, तो ऐसे है सब, एक पेड़ बीच में लंगड़े का, चौसे का, बम्बई का, ऐसे लगाते हैं दशहरी, ऐसे एक एक पेड़ छोड़कर, बस पानी देना है इसको और कुछ नहीं, नलाई वलाई बस, इसे पूरा पेड़ हो जाता है, आम आने लगते हैं तो फिर इसकी खुदाई होती है, कसने से फिर इसकी खुदाई होती है, इसमें खाद भी लगता है, इसकी फिर धुलाई होती है, तकरीबन 3 साल के बाद फल देने लगता है। ये तो अब आने के ऊपर बात है कि एक कितना बड़ा पेड़ है, वो भी एक कुंटल भी निकल जाता है, एक पेड़ पे 50 किलो भी निकल जाता है, 25 किलो भी निकल जाता है, आम के ऊपर बात है कैसा फल आना है। यहाँ से तो सारा माल ये आजादपुर मंडी में जाता है दिल्ली, कुछ ऐसे होते हैं व्यापारी जो कलकत्ते से खुद ही व्यापारी लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ, वो तोल के हिसाब से भी लेते हैं, 50 रुपए धड़ी, 100 रुपए धड़ी, जैसा मतलब रेट निकल गया आम का। तो गत्ते के डब्बे, पहले लकड़ी के डब्बे आते थे, अभी तो गत्ते के डब्बे आते हैं छोटे छोटे, उसमें भी ये भरा जाता है, बंसी से टूटते हैं कुछ चढ़ा देते हैं ऊपर, ऊपर चढ़ के नीचे गिराते हैं, अगर पक्का है तो कुछ नीचे वो करना पड़ेगा, कपड़ा वपड़ा बिछाना पड़ेगा कि जिससे आम दगीला ना हो गिरने के बाद, और अगर आप नीचे कच्चा है तो आप ऐसी तोड़ भी झटका मार के डंकी से तोड़ सकती है। सबसे महंगा चौसा है, उसके बाद में फिर ये लंगड़ा है, दशहरी है, ये सब फिर एक भाव में आ जाते हैं। जो आंधी आती है, ये तूफान आता है तो ये आम को मतलब कोई नहीं लगता, बस ये झड़ जाता है, और बारिश बारिश होती है उसमें कोई वो नहीं है खतरा, उसमें वो इकट्ठा करके डब्बे में भर के दिल्ली आजादपुर में दिया जाता है। हाँ, आम की और फुलवारी की नर्सरी भी हमारे पास में, अभी पहले तो ये बरसात के मौसम में ज्यादा लगता था जब बारिश होती थी, लेकिन अभी तो वो थैली में है तो अभी किसी भी मौसम में लगा सकती हो, हमने अभी गुड़गांव में लगवाया है। हाँ, हम दिखाते हैं उनको लगा के कि ऐसा लगेगा, या ऐसे बता देते हैं कि इतने इंच पर लगना है, इतने फुट पर लगना है, ऐसे लगना है, ऐसे सब कुछ उनको हम बता के जब वो कर लेते हैं तो फिर वो जाकर लगा लेते हैं, या फिर हम लोग खुद ही वो हमें ठेका दे देते हैं कि भाई आप खुद ही लगाओ, खुद ही हम तो जो बताओ कितने का, फिर हम उनको उसी हिसाब से पैसे बता देते हैं, वो हमें पैसे दे देते हैं, हम जाकर अपनी लेबर जाकर खुद ही लगवा देते हैं। हम बाग भी लगाते हैं आम का और बागवानी भी करते हैं। देखो, अब किस ज्यादा महंगा नहीं रहेगा माल, अब किस सस्ता ही रहेगा, ये ऐसा भी हो जाता है हमारे पास में, यहाँ 10 रुपए किलो भी मिलता है क्योंकि यहाँ बाग वगैरह ज्यादा है, यहाँ का माल ज्यादातर आजादपुर मंडी में जाता है, दिल्ली और कहीं नहीं जाता, कलकत्ते भी जाता है लेकिन वो खुद व्यापारी आते हैं कलकत्ते के हाथ लेने के लिए।
2: मेरा नाम मलिखान सिंह है, ग्राम पोस्ट बछाचा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। 1 एकड़ में बाग है, मतलब 5 बीघा बाग लगाए तो करीब करीब 35 साल हो गई हमको, और इसमें दशहरी भी है, लंगड़ा बोलते हैं।

0: हमारे यहाँ टिकारी भी बोलते हैं, फजली भी है, चौसा भी है, ये देसी भी है। ये जातियाँ प्रजातियाँ हैं, करीब 4-5 पौधे फजली के हैं, बलुई दोमट भी है उसमें भी हो जाता है, और ये मोटी मिट्टी उसमें भी हो जाता है। सबसे जल्दी पकने वाली वैरायटी है दशहरी। चौसा जो है जुलाई अगस्त में पकता जा करके, और लंगड़ा वो भाई लंगड़ा की पोजीशन है, तो अगर बढ़िया पैदावार लेते तो 3 वर्ष के बाद ही, 3 वर्ष पहले फल नहीं लेते हैं, उसके बाद 4-5 साल का हो जाता है, उसके बाद फल चालू हो जाता है उसमें। 1 वर्ष तो आम बहुत अच्छा आएगा, और द्वितीय वर्ष में उसमें फल कम आएगा, किसी पे आता फल, किसी पे नहीं आता फल। सितंबर अक्टूबर में पौधों के नीचे गुड़ाई वगैरह करनी पड़ती है, खाद वगैरह देनी पड़ती है, अप्रैल मई और जून में इनमें सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि फल वगैरह अच्छा आता है, फल में बढ़ोतरी होती है। जाला लगा करके तोड़ते पेड़ों पे चढ़ करके, और ये बांसों में लगी बना करके, और उसमें जाला लगा करके तोड़ते हैं, जो कि आम खराब न हो, तोड़ करके करेटों में रख करके, और पक जाते हैं आम, और उसके बाद फिर मार्केट में बेचते हैं, खुले मार्केट में, खुले बाजार में अपने अपनी कीमत के हिसाब से बेचते हैं। दशहरी जो आम है वो जून से तोड़ना चालू हो जाता है, करीब करीब लगभग नुकसान हो जाता है, जब आंधी या तूफान हो जाता आता है 20-30% नुकसान हो जाता है। मार्केट मंडियों में ले जाते हैं, मंदा संदा जैसा कुछ है तैसा बेचते हैं। सबसे बढ़िया दशहरी जो मार्केट दशहरी के, दशहरी आम है उसका बराबर कोई टक्कर नहीं है। उसके बाद चौसा का है बढ़िया, बम्बई का है, लेकिन बम्बई अपने पास है नहीं, काला बम्बई आता है ना। ज्यादातर बाजार में दशहरी की रहती, दशहरी जल्दी चालू हो जाता, अगेती चालू हो जाता दशहरी। दशहरी जब आता है उधर से मलियाबाद फैजाबाद से आता है, तो वो कई एक मतलब उत्तर भारत में दक्षिण भारत में सबकी तरफ जाता है दशहरी। आम का साइज वही करीब 250-300 ग्राम का, 400 ग्राम का हो जाना चाहिए दशहरी का। बढ़िया दशहरी होता है तो करीब 400 ग्राम का हो जाता है, 500 ग्राम का हो जाता है दशहरी। और ये चौसा है वो उससे ज्यादा वजन का हो जाता है, फजली तो करीब और ज्यादा वजन का हो जाता है। आम की खेती तो बढ़िया है, लेकिन इसमें जब रोग लगता है यही दिक्कत हो जाती है। रोग के फिर बाद बारे में दुकानदारों से जाके दवाई लेते जाकर के, जैसे अब इसमें लसी जैसा चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ इसमें लगा हुआ है, तो उसे जब भी तो स्प्रे कर रहे थे बाग में, तो चिपचिपा जब पदार्थ हो जाए तो ये डंठल पे पहुंच जाता है, तो ये डंठल को कमजोर करता है, आम टपक जाता है अपने आप। आम की खेती बढ़िया है, अच्छा है, और मुनाफा भी अच्छा है अगर मार्केट में सही बिक जाए, लेकिन भाव मिल जाए। बस सबके सबसे बड़ी चीज है भाव राजा होता है। इस बार तो अच्छा रेट रहेगा, इस बार यहाँ मतलब कहीं क्षेत्र में है नहीं आम, ज्यादा नहीं है।
1: नमस्ते किसान भाइयों, मैं अलियासपुर जिले के गांव छतरडो मध्य प्रदेश में जो आता है, वहाँ से मैं किसान युवराज सिंह। मैं आम की खेती किसानी करता हूँ, और मैं विशेष करके केसर के आम ज्यादा लगाए हुए हैं मैंने, जिसमें मेरे 5000 पेड़ केसर के हैं। केसर का अभी प्रोडक्शन चालू हो गया है, अभी पकना चालू हो गया है। मेरा आम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सभी को जा रहा है। केसर का नाम इसलिए केसर पड़ा कि उसको काटने पे जब पकता है तो उसमें केसर की खुशबू आती है, और हमारा केसर की डिमांड बहुत है आसपास के जिलों में, आसपास के राज्यों में यहाँ से केसर जाता है, और बहुत अच्छा उसका कीमत मिलता है। मैं उसके पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, कोई केमिकल नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं, इसलिए हमारे केसर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और केसर के आम के साथ में मैंने नूरजहां का पौधा भी लगाया है, जो 4 किलो का फल होता है, 4 किलो की साइज होती है, और हापुस, लंगड़ा, दशहरी उनके भी मैंने बाग लगाए हुए हैं। और मैंने पूछा की जो नवीनतम वेरायटियां हैं, पूसा संदान दिल्ली, वहां से मैंने ला के पिछले साल पूसा की 8 किस्में जो लगाई है, उसमें सबसे बढ़िया अरुणिमा, दीपशिखा, श्रेष्ठा, लालिमा, मनोहारी, पीताम्बरी और प्रतिभा, ये भी वेरायटी बहुत अच्छी चल रही है मेरे वहाँ पे। पूसा की अरुणिमा बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस आ रहा है यहाँ पे। आम के लिए हमारा जिला सबसे अच्छा उपयुक्त जिला है, जहाँ की हमारी जलवायु और हमारी मिट्टी आम के लिए बहुत उपयुक्त है। केसर मैंने 20x20 की दूरी में लगाया, 20 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 20 फीट पौधे से पौधे की दूरी पे। उसका तीसरे साल चौथे साल से प्रोडक्शन चालू हो जाता है, और उसकी कीमत हमारे यहाँ पे लगभग 120 रूपये से लेकर 150 रूपये किलो तक जा रहा है। और केसर में मैंने एक और इस बार नवीनतम प्रयोग किया है, केसर में मैंने एक गोल्डन केसर बनाया है, गोल्डन कलर का केसर निकलता है, जिसकी कीमत मार्केट में 200 रूपये किलो तक जा रही है। और उसकी खासियत है कि उसमें सनलाइट, सूर्य की रोशनी नहीं लगती है, जिसके कारण उसका कलर बहुत अच्छा निखरता है, और मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। और मैंने अभी उसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी में भी लगाया है, जिसमें उसकी दूरी कम कर दी है, पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट, और उसमें भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, जिससे हमें पर एकड़ में पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, और उससे हमें उत्पादन की मात्रा भी ज्यादा मिलेगी तीसरे साल से।

0: केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक तरह से पकाते हैं, झाड़ पे ही पका के उसको सेल करते हैं। इसलिए हमारा मार्केट चलेगा, 15 जुलाई तक चलेगा, लगभग 8 से 10 लाख का केसर बुकिंग पड़ा हुआ है।
1: आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: वंदन बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत आम की बागवानी, और इनसे हमारी जो किसान भाई हैं उनसे अनुभव को साझा किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया संध्या गुप्ता ने।
3: जी हाँ, हमारे किसान भाइयों ने भी ये सुना होगा और इससे जरूर लाभ उठाएंगे कि उन्हें अब अपनी आम की फसल को कहाँ और किस तरह से बाहर भेजना है, किस तरह से उसको उगाना है या किस तरह मंडी में भेजना है। इन सब बातों को संध्या जी ने साझा किया हम लोगों से। तो अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं ये उपदेश सुभाष चंद्र
2: प्रकाश चंद
3: प्रकाश चंद से।

0: और अभी हमारे भाई सुन रहे थे सुभाष चंद्र और प्रकाश चंद की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार परासर, संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 और ठीक 15 सेकेंड्स हुए हैं और हमारे श्रोता जानते हैं ये समय होता है गजल और कव्वाली के कार्यक्रम का। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं जगजीत सिंह और आशा भोसले की आवाज में इस गजल के संग।

0: और इसी के साथ गजल कव्वाली के इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की दीप्ति को इजाजत दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 9585 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। इस परियोजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली

0: एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बनाई जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के फौरन बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रंजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी एजेंसियां दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अधिकारी सभी संबंधित दस्तावेज जुटा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध एनओसी थी या नहीं।
3: कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं। तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही है।
2: दिल्ली अग्निशमन सेवा के जनसंपर्क अधिकारी एके मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस इमारत में आग लगी है वह अंदर से पूरा पैक है।
4: सामने की तरफ फसाड़ लगा हुआ था और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी सील। इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं दे एक्ट एज ए चिमनी, तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेजी से सारी फ्लोर पर फैल जाता है जिससे कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिलता।
2: दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकार त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर जनसेवा सदन पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का अहम मंच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार

0: स्थानीय समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने आज जंगपुरा और डिफेंस कॉलोनी अंडरपास क्षेत्रों में चल रहे नागरिक सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई और व्यापक स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा भी की।
0: इस दौरान एमसीडी की जमीन पर अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया गया और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए। नगर निगम ने क्षेत्र में भीड़ कम करने और यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति का आकलन किया। वहीं निगम ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विकसित की जा रही वर्षा जल संचयन संरचना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने क्षेत्र में कचरा और निर्माण मलबा फेंकने से रोकने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। निगम ने लाजपत नगर में चल रहे पार्क पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर कुछ अधूरी और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में भी जनता को हमेशा राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में ये फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा और लोग उसे बाद में ले सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जा सकेगी और न ही राशि किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला आरोपी के पास से 216 ग्राम मादक पदार्थ और 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। यह बरामदगी दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और सक्रिय पुलिसिंग तथा निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से जन सुरक्षा बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 16वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि आवंटित की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम की, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
1: दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए 2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के

0: कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में आज सुबह के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। हेलो, सलाम, नमस्ते। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बार फिर आपका फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका। और आज के गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में आपके साथ रहूंगी मैं, आपकी अपनी दीप्ति। शुरू करेंगे एकदम शुरू से, लेकिन सबसे पहले एक किक स्टार्ट विद अ कप ऑफ कॉफी। व्हाट से

हाँ जी साथ हो आपका तो बस हमारे लिए क्या, हमें तो बस एक सिंपल सी कॉफी ही किक दे देती है। और अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है विद अ किक ऑफ 1 कप सिंपल सी कॉफी। तो हम और आप तैयार हैं टू एंजॉय द रोलर कोस्टर राइड ऑफ गीत मालिका। श्रोताओं, आज के गीत मालिका में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं हिंदी फिल्मों के कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे खास गीत जिन्हें हमने पर्दे पर देखा तो है, एंजॉय भी किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को ध्यान होगा कि वो गीत फिल्माए गए हैं बाइसिकल यानी साइकिल पर। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत जो कि है बाइसिकल पर फिल्माए हुए। अच्छा बताइए तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। शुरू करें।

जी हाँ दोस्तों, आज का दिन है उन दो पहियों के नाम जिन्होंने न जाने कितनों को चलना, संभलना और आगे बढ़ना सिखाया। आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे। याद है आपको आपके बचपन की पहली साइकिल? वो ख्वाब, वो गुनगुनाते से गीत, ऐसा लगता था ना साइकिल पर नहीं हम तो पायलट बन गए, हम उड़ा रहे हैं हवाई जहाज। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आज भी आती है। एक्चुअली क्या है ना, साइकिल एक ऐसा पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट है जो कि ना तो प्रदूषण फैलाती है ना ही पेट्रोल मांगती है, और इसीलिए दे जाती है ढेर सारी ताकत और बहुत प्यारी प्यारी मुस्कान।

माशाअल्लाह कहना तो मना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशाअल्लाह कहना

साइकिल सिर्फ दो पहियों का जरिया नहीं है बल्कि यादों, आजादी और सेहत का ना खूबसूरत सा मेल है। बचपन की गलियों से लेकर आज के फिटनेस ट्रैप तक साइकिल हर दौर में हमारे साथ रही है और इसीलिए आज का दिन और आज का गीत मालिका कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं अपने दो पहियों के उस साथी के नाम जिसने न सिर्फ हमें रास्तों पर चलना सिखाया है बल्कि गिरकर संभलना भी सिखाया है।

और अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल 3 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। 2018 में इसे आधिकारिक मान्यता मिली ताकि लोगों को साइकिल के फायदों और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। वैसे आप में से कितनों को अपने बचपन की वो मेमोरी याद है जिसमें डाकिया आया करता था डाक लेकर साइकिल पर?

और बाइसिकल की फायदों की अगर बात करें तो साइकिल चलाना ना सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है, ये आपके हार्ट को भी हेल्दी रखती है। प्रदूषण तो ऑफ कोर्स कम करती ही है, लेकिन ट्रैफिक का बोझ भी कम करती है। और सबसे बड़ी बात, साइकिल चलाने से मन का बोझ बहुत हल्का होता है। याद है जब बचपन में पहली बार बिना सहारे के साइकिल चलाई थी तो जो खुशी मिली थी, आज भी वो खुशी अलग ही है। कितनी भी कार हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप सफर कर ले, लेकिन वो खुशी जो आपने पहली बार बगैर किसी सहारे के साइड व्हील्स हटा करके साइकिल चलाने में पाई थी ना, वो खुशी दोबारा पाना, वो बचपन के दिन दोबारा लाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक काम हम लोग कर सकते हैं, कसम खा सकते हैं कि फिर से जितना हो सके हम साइकिल पर स्विच करने की कोशिश जरूर करेंगे।

और जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उनको याद दिलाते चले कि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड को आप एंजॉय कर रहे हैं विद योर वेरी ओन दीप्ति। और आज आप और हम मिलकर के मना रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो एक बार फिर से चलिए पुकारते हैं पुराने दिनों को साइकिल पर।

अगर दोस्तों सच कहें ना तो साइकिल का रिश्ता सिर्फ सेहत से नहीं बल्कि एहसासों से भी है। वो पहली बार बिना सहारे के चलाना, फिर गिरना, फिर उठ जाना, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। दोस्तों के साथ रेस लगाना और ये सब यादें शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। आज जब दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तब भी साइकिल हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि प्रोग्रेस हमेशा स्पीड से नहीं बल्कि बैलेंस से आती है।

दोस्तों क्यों ना आज इस खास दिन पर कुछ देर के लिए मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाकर पुरानी यादों की सवारी कीजिए, अपनी साइकिल उठाइए, थोड़ा पैदल मारिए और महसूस कीजिए हवा का वो झोंका जो आज भी बचपन की तरह मुस्कुराना सिखाता है।

दोस्तों ये तो आपसे करने को बहुत सारी बातें हैं, सुनवाने को बहुत सारे गीत भी हैं जो कि खास साइकिल को फ्रेम में रखकर फिल्माए गए हैं। लेकिन क्या करें, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने भी ना हमारे बचपन की साइकिल की तरह स्पीड ले ली है और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। तो फिलहाल के लिए गीत मालिका प्रोग्राम की रोलर कोस्टर राइड को लगाते हैं ब्रेक। इजाजत दीजिए अपने साथ ही अपने मित्र दीप्ति को, मिलूंगी फिर यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ईटीएफ प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ईटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ईटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेज, पुराने ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा

0: का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिल्का हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
1: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रूपये भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसभा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा

0: रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको
1: है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जरूरी से दवाई खोजे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी

0: हजार करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs have started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha.
3: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जिसका फेज वन आज अप्रूव हुआ है.
2: इन ओडिशा द फेज वन ऑफ द कोस्टल हाईवे वाज अप्रूव टुडे. इट विल एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वर थ्रू कोणार्क अप टू पारादीप, कवरिंग द स्ट्रेच फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ ओडिशा टू इट्स सेंट्रल रीजन रीचिंग पारादीप. एडिशनली अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन बिहार, दैट इज द फोर लेनिंग ऑफ द रोड बिटवीन खगड़िया एंड पूर्णिया.
3: खगड़िया से पूर्णिया के बीच में फोर लेनिंग.
1: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women

αυτό που σου είπα, είναι νόμιμο κομπίσμα που έδωσε σε μένα από γράφει λίγο στο πρωμαμπλή προγράμμα, έχει φανκάρ. Σημαίνει. Θα σου λέω μόλι χαμπρέ να σου κοίζει έγκυ νόμιμο κομπέθαλη σε μέρπα. Νόμιμο κομπέσμα μέρπα, απλά το τέψε το πρωγράμμα που έτσι κουλπάτε από και σε έτσι και βάλισε. Or, αν τα σπουζέ, αν το βίνα σε το πρωγράμμα. Και δεν τα πω, η αμαζά κράσουνε. Κανονίο με εκτετάμια και η αμύατο και μόνο και όλε οι σουρκά ράτη προφέρα σχαρ. Μουτζάχατ, Δόκτωρ Σόμψολ, Χακ Οσμάνι, Δόκτωρ Τάρι, Τσετάρι. Θα μέσω δεν μιλάω από πρώτα πριν προγράμμα, Χωγά. Δεν σα πω τι σημαίνει πέρ, Τάμιε Ρουσάτ. ये प्रोग्राम 11 बजकर 30 मिनट तक जारी रहेगा दौरान प्रोग्राम आप सुनेंगे रात 11 बजे खबरें बरले सगीर से ग्यारह बजकर 45 मिनट पर कवालियां नशर की जाएंगी आज की फनकार हैं चांद कादरी कवाल और हमनवा शब के 12 बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी क्लासिक मौसीकी का प्रोग्राम 12 बजकर 10 मिनट पर नशर किया जाएगा अब्दुल हलीम जाफर खान का सितार पर بجایا راگ مشر شیو اور شیو پہاڑی آپ سنیں گے صدا اللہ فیمی نغموں کا پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا سنیں یہ تھا ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ یہ آکاشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات لیسا میرا پیش ہے غیر فلمی غزلوں پر مبنی پروگرام ایک فنکار آج آپ طلعت عزیز کی گائی غزلیں سماعت کر

0: दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स्ड डबल मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गड्डे की जोड़ी ने चेनी ताइपाई के यांग पोसियन और हुलिंग फेंग की जोड़ी को स्ट्रेट गेम्स में 21-14, 21-14 से हराकर एक और जीत दर्ज की है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने के खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली ऋत्राब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉ जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर्स ने काबीनी वुजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के अशरियात। जैसे मैं अब पेश है हेल्थ टिप्स प्रोग्राम में कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। समीन, आज हम आपको एक ऐसे फल जो मौसम गर्मा का फल है, लजीज है, गजाइयों से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होने के बाइस से जिस्म को हाइड्रेटकता है और निजाम हाजमा को बेहतर बनाता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि आड़ू के बारे में। आड़ू फाइबर का बेहतरीन जरिया है जो कब्ज से निजात दिलाता है और निजाम हाजमा को सेहतमंद रखता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में इसमें मौजूद विटामिन सी बहुत अहमियत का हामिल है और आड़ू में मौजूद पोटेशियम और पॉलीफेनोल खून की शरियानों को यानी कि नलियों को साफ रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और अमराज कल्ब का खतरा काफी कम हो जाता है। जिनकी हिफाजत में काफी मददगार है ये, यानी इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जल्द को चमकदार और जवान बनाते हैं। वजन कंट्रोल करने में काफी मददगार है। कम कैलोरीज और ज्यादा फाइबर वाला ये फल पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिलती है। विटामिन की मौजूदगी आंखों के पट्टों को मजबूत करती है और उम्र बढ़ाने के साथ नजर की कमजोरी को रोकती है, यानी कि इसमें जो विटामिन ए होता है वो आंखों की बीनाई को सेहत बख्शता है। जिसमें पानी की कमी पूरी करने में ये बहुत ही मुजर्रब है, यानी कि ऐसा फल है जो हमारे जिस्म को हाइड्रेट नहीं होने देता। गर्मियों में आड़ू का इस्तेमाल जिस्म के हाइड्रेशन को दूर करता है, थकान को दूर करता है। कैंसर से बचाओ, इसमें यानी मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर का सबब बनने वाले जो खुलियात हैं यानी कि फ्री रेडिकल्स को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। डायबिटीज में मुफीद बहुत है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो है, आड़ू में कुदरती मिठास होती है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो खून में शुगर की सतह को कम करता है उसको काबू में रखने में काफी मददगार साबित होता है। आड़ू में सोजिश कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एलर्जी और जिस्म की सूजन को कम करती हैं, और इसके अलावा आड़ू के और भी मुख्तलिफ फायदे हैं, जैसे दिल की तमाम बीमारियों को दूर करता है, भूख लगाने में काफी मददगार साबित है, खाना हजम करने की इसके अंदर खासियत

0: गर्मी के मौसम का सबसे मुफीद फल है। गर्मियों के दौरान अगर इस फल को बाकायदगी साथ मुतवाजन मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से तिब्बी फवायद हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि आड़ू की तासीर ठंडी होती है जो न सिर्फ जिस्म में गर्मी की शिद्दत को कम करती है बल्कि डिहाइड्रेशन से बचाने में भी अहम किरदार अदा करती है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सामीन, चूंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त और बाजार जाइए और आड़ू को खरीद कर इस्तेमाल करिए और उसका फायदा उठाइए। सामीन, आप हेल्थ टिप्स प्रोग्राम में सेहत के हवाले से कुछ बातें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के अंशरियात। प्लीज सामीन पेश है प्रोग्राम अदबी नशस्त।
1: आज की अदबी नशस्त में प्रोफेसर असगर वजाहत साहब और डॉक्टर शमसुल हक उस्मानी साहब और ये खादसार तारिक छतारी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस नशस्त का मौजू है कहानी में इख्तितामिया की अहमियत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफसाने या कहानी में बहुत से अजजाए तरकीबी हैं, अपनी अपनी जगह सबकी अहमियत है। अरस्तू ने बहुत पहले ही प्लॉट की जब तारीफ की थी तो आगाज वस्त और अंजाम का जिक्र किया था। बहरहाल शुरू से ही अंजाम या इख्तिताम पर सबकी तवज्जो खास तौर से रही है। इस वक्त भी जो अफसाने लिखे जा रहे हैं वो एक तवील सफर के बाद जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, मुख्तलिफ किस्म के इख्तितामिया का रिवाज उर्दू हिंदी और दूसरी जबानों में रहा है। यहां प्रोफेसर असगर वजाहत साहब खुद बहुत अच्छे हिंदी के बहुत मशहूर अफसाना नगार हैं, नॉवल नगार हैं, मास मीडिया से भी आपका खास ताल्लुक है। और डॉक्टर शमसुल हक उस्मानी न सिर्फ उर्दू के एक अहम नकाद हैं बल्कि वो खुद भी अफसाना नगार और तख्लीककार हैं। यूं तो उनकी तनकीद में भी तख्लीकी और तख्लीकियत साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं उनमें खुद एक प्लॉट के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से, फन के लिहाज से बहुत तवज्जो दी है और खास एहतमाम किया है इख्तिताम का। वेदी पर उनका बहुत अच्छा काम है। मैं समझता हूं कि इस बात का आगाज के कहानी में इख्तितामिया की क्या अहमियत है हम डॉक्टर शमसुल हक उस्मानी साहब से ही करना चाहेंगे और वो बात का को शुरू करेंगे, उसके बाद हम सब लोग उसमें शरीक होंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो शमसुल हक साहब, इख्तितामिया की कहानी में शुरू से अहमियत रही है या किसी जमाने में इसको ज्यादा अहमियत मिली, इस पर आप
2: साहब। मेरा करना तो यह है कि कहानी दुनिया की हर शय और हर जीजान की तरह शुरू तो हो जाती
1: जी,
2: मगर वो होते होते कहां जाकर इख्तिताम पजीर होगी यही हमें देखना होता है। मैं जीता हूं और लोग जीते हैं, मेरे साथ साथ और हैवानात भी हैं, लेकिन हमारा इख्तिताम किस मर्तबे और किस दर्जे और किस जाइए कि किस पोटेंशियल के साथ होता है। कहानी अफसाना एक हुनर है और इस हुनर की तमाम तर कुव्वत मेरे नजदीक सिमट आती है इख्तिताम में। हम उसे बरतते किस तरह हैं, यानी आगाज क्या है, वस्त क्या है, उनता वगैरह क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स वगैरह से होते हुए हम इख्तिताम पर पहुंचते हैं, यकीनन बहुत अहम बात है, क्योंकि यही मुसन्निफ अपने उस मजमू जौहर को समेट लेता है जिसके लिए उसने कहानी का आगाज किया था और उन्हीं मदारिक उनको दर्जा बदर्जा कारी के जहन में इस तरह मुंतकिल करता है कि इख्तिताम के लिए उसका जहन तैयार हो जाए। अगर इख्तिताम ही में वो चूक गया
1: जी,
2: अगर इख्तिताम ही कमजोर हुआ, या मैं तो यहां तक अर्ज कर सकता हूं कि अगर मुसन्निफ के जहन में इब्तदा में ही इख्तिताम नहीं आया है तो कहानी के कमजोर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आपने फरमाया कि एक जमाना था कि कहानी का इख्तिताम बहुत आम, मसलन हमारे दुनिया के मास्टर्स में चौखर और मपासा

0: के प्रधानी है। हमारे यहाँ बहुत मारूफ नाम इस जमीन में जो लिया जाता है, हालांकि और नाम भी है, लेकिन मंटो का नाम अपने अख्तामियों के लिहाज से बहुत अहम रहा। और हम सब लोग वाकिफ हैं इस बात से कि मंटो ने जिस तरह आलमी अफसाने के पस मंजर में इख्तामियों को अहमियत दी और उससे काम लिए, यानी एक ऐसा आम इस अल्फाज में मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा चौंका देने वाला इख्तिताम जो कारी के पूरे वजूद को अफसाने के लिए असर नो हल कर दिया करता
1: जी, जी।
0: इस लिहाज से आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इख्तिताम यह निहायत अहम चीज है। अगर इसके बगैर, इस पर तवज्जो के बगैर अफसाना लिखा जा रहा है तो ना सिर्फ ये कि उस ख्याल की, उस एहसास की तरसील नामुकम्मल रहेगी, बल्कि क्राफ्टमैनशिप के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो कहानी के वो तमाम साबिक अज्जा बामानी नहीं बनते जब तक के इख्तिताम मुनासिब और उसके बतन से पैदा न हो। यानी अफसाने के तमाम हिस्से दरअसल कोख होते हैं इख्तितामिया के।
1: बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब, इसलिए कि हमारे पुराने किस्सों में भी और इपिक में भी या ड्रामे में तरबिया और अलमिया की शनाख्त ही इख्तिताम से होती थी और इख्तिताम ही डिसाइड करता था कि ये तरबिया है या अलमिया है। अब जैसा कि आपने अभी फरमाया कि चखोफ और मोपासा और ओ हेनरी को उसमें शामिल कर सकते हैं, इनके खास तरह का इख्तिताम होता था, इस्तेजाबिया चौंकाने वाला उसको कह सकते हैं, जिसका असर या जिसकी रिवायत को पर चलने वाले हमारे यहां उर्दू में मंटो है। अच्छा, लेकिन कुछ अफसाननिगार ऐसे भी हैं, चखोफ को जरा सा मैं समझता हूं कि ओ हेनरी से शायद अलग रखना पड़ेगा, इसलिए कि ओ हेनरी का या मोपासा का जिस तरह चौंकाने वाला इख्तिताम होता था उससे कुछ मुख्तलिफ चखोफ का होता था। ऐसा लगता था कि ये उतना ज्यादा शिद्दत से नहीं चौंका रहा है हमें, और पीछे जो कुछ उसने बयान किया है उसका एक फितरी नतीजा मालूम हो रहा है। हालांकि मंटो के यहां भी और ओ हेनरी के यहां भी जब इख्तिताम होता था तो हमारी तवक्को खिलाफ तो होता था इख्तिताम, लेकिन वो होता एन फितरी ही था, यानी उस पर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि कोई गैर फितरी इख्तिताम हुआ।
0: अफसाने की फितरत के मुताबिक
1: अफसाने के वही होता था। अब लेकिन कुछ अफसाना निगार ऐसे भी हैं कि ऐसा महसूस होता है कि उनके यहां कहानी वस्त में है और इख्तिताम के बाद भी वो कहानी चल रही है, यानी एक तो ओपन एंड और क्लोज एंड की तो इस्तेमाल हमारे सामने है ही, ओपन एंड के अलावा एक चीज ऐसी होती है कि कहानी बस ऐसी जगह खत्म हुई कि वो लगता है कि ये तकमीलियत का एहसास नहीं होता और वो कहानियां भी बहुत कामयाब और मशहूर हुई। तो मैं समझता हूं कि इख्तितामिया की कोई एक क्वालिटी जिस पर असर वजह साहब रोशनी डालेंगे, कोई एक क्वालिटी हम तय नहीं कर सकते कि इस्तेजाबिया अगर इख्तिताम है तभी ज्यादा पुरअसर होगा, या ऐसा इख्तिताम है जो कहानी खत्म होने के बाद कहानी कारी के जहन में शुरू कर देता है तो वो बेहतर है, या दायरवी कोई इख्तिताम है यानी कहानी जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती है। मुख्तलिफ तरह के अफसाना निगार हमारे यहां लिखते रहे, कृष्णचंद्र का अंदाज कुछ बिल्कुल दूसरा था, और हिंदी में भी ऐसा हुआ कि इख्तिताम पर जाहिर के फन पर जहां तवज्जो दी जाएगी तो तमाम अजाए तरकीब उसमें आएंगे, अख्ताम भी। तो इसको बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मजीद गुफ्तगु से कुछ बातें निकलेंगी, मैं प्रोफेसर असगर वजह साहब से गुजारिश करता हूं कि इस बात का रोशनी करें।
2: जनाबे वाला, अभी तक जो गुफ्तगु हुई मैं मुत्तफिक हूं उससे पूरी तरह, और मैं अपनी बात को यहां से शुरू करना चाहूंगा कि किसी अफसाने को पढ़ने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका यह है कि उसकी पहली और आखिरी लाइन
1: जी
2: दो लाइनें पढ़ी जाती हैं और उसके बाद पढ़ने वाला यह तय करता है कि उसको हम पूरा पढ़ें या न पढ़ें। तो इससे मुराद दरअसल यही है कि पहली लाइन अगर ये डायरेक्शन तय करती है कि अफसाने का कैनवस क्या होने जा रहा है, किस कैनवस पर ये जा रहा है, तो आखिरी लाइन ये तय करती है कि राइटर ने उसको कौन सा डायमेंशन दिया है
1: जी।
2: और अक्सर ये होता है कि पूरी कहानी पढ़ते हुए आपको उस डायमेंशन का, यानी मैं इसको ड्रामाई सेंस में नहीं कह रहा हूं बल्कि ये है कि समझिए कि नजरियाती

0: उसमें कह रहा हूँ कि वो आखिर तक पहुंचने के बाद आपको लगता है कि इस पूरे मसले का एक इतना बड़ा डायमेंशन ये भी था जिस तक हम सिर्फ एक लाइन जो आखिर में लिखी गई थी उसके जरिए से पहुंच गए
1: जी।
0: तो यहाँ ये है कि जो क्रिएटिव जीनियस है उसका टेस्ट जो है वो आखिरी लाइन में होता है, अगर इख्तितामिया जो है उसका ऐसा है जो कहानी को एक डायरेक्शन दे रहा है और कहानी को ऐसी सिमतों में ले जा रहा है जो कारी के तसव्वुर में या उसके करीन कयास नहीं थी, तो ये एक बहुत ही अहम बात है। अगर इसमें ये भी है कि हम सब जानते हैं कि इस सिलसिले में कोई फार्मूला हम नहीं बना सकते हैं, ये तो ऐसा है कि कहीं कोई एक लफ्ज, कहीं कोई एक इशारा, कहीं कोई एक वाकया, कहीं कोई एक बात इख्तितामिया में आती है और वो उसको अहम बना देती है। तो ये तो डिपेंड करता है, मुनहसिर है इस बात के ऊपर कि आपकी कहानी कैसी है, उसमें किस किस्म के कैसा माहौल है और क्या आपने फॉर्मेट उसका क्या बनाया है। तो इस फॉर्मेट के लिहाज से इख्तितामिया भी बदलता रहता है
1: जी।
0: तो ये गया ये
1: बिल्कुल इस पर जो हम लोगों ने गुफ्तगू की है अभी, मैं समझता हूँ शमसुल हक उस्मानी साहब और असगर वजह साहब दोनों चूंकि कहानीकार हैं, तो अब अगर हम इस बात को अपने सामईन के लिए कुछ कहानियों के हवाले से बात आगे बढ़ाएं तो भी मुफीद साबित हो सकती है। मेरा ख्याल ये है कि जैसा कि अभी असगर वजह साहब ने कहा कि इसका हम कोई उसूल नहीं बना सकते और अलग अलग अफसाना निगार अलग अलग फिल्म के अपने हुनर दिखाकर अख्ताम करता है, तो जैसे चखोफ का भी आपने जिक्र किया था, चखोफ की जो बहुत मशहूर कहानी है हमारे सामईन ने भी सबने पढ़ रखी होगी, टियर की मौत, और वो उस अफसाने में सब अजीब गरीब देखे एहसास होता है कि जिसका उनवान जिसका अख्ताम बता दे उसमें भी अख्ताम में दिलचस्पी कायम रहे, यानी उनवान से पता चल गया कि क्लर्क की मौत होने वाली है चूंकि उनवान ही है, इसके बावजूद पूरी कहानी में तजस्सुस भी रहा है और इख्तिताम पर आकर लगता है कि इख्तिताम हुआ है। तो ये जो इख्तितामिया है ये बिल्कुल डिफरेंट है मोपासा से, या गिफ्ट जो कहानी उनकी है हेनरी उसमें जो एक कपल है और दोनों एक दूसरे से बेपना मोहब्बत करते हैं, उसके बाद क्रिसमस डे पर एक दूसरे को तोहफा देना चाहते हैं और बीवी को अपने शौहर के बारे में मालूम है कि उसको अपनी घड़ी बहुत अजीज है और उस घड़ी की चेन खराब हो गई है, शौहर को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बीवी को अपने लंबे बाल बहुत अजीज हैं और उसके पास सोने का टेप नहीं है, दोनों इरादा करते हैं और दोनों वो चीजें लेकर आते हैं, तो एक तरह से इख्तिताम पे ऐसा लगता है कि दोनों की ख्वाहिश पूरी हो रही है, लेकिन राज जो खुलता है वो ये कि उसने अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए सोने का क्लिप लिया था और उसने विग कंपनी में जाकर अपने बाल बेचकर उसके लिए सोने की घड़ी ली थी, उसकी घड़ी के लिए चेन ली थी, तो वहां जो एक तश्नगी यानी तकमील होते होते जो एक तश्नगी रह जाती है और वहां से कहानी फिर शुरू हो जाती है, वो सोशल एक जो उसका एस्पेक्ट है या उसे उनकी मोहब्बत की जो इंतहा है जो ट्रेजडी पर जाकर खत्म होती है, वो भी लगता है कि इख्तिताम वहां ऐसा है कि जहां से कहानी का आगाज हो रहा है।
2: दूसरी नौयत आपकी मिसालों से ताल्लुक सर आया और मैं यानी इस बात के समझ में आने का सबब अजाज साहब की जुमले थे
1: जी,
2: मुसन्निफ कहना क्या चाहता है
1: जी,
2: ये जो कुछ उसने हमें दिया वो उसकी नौयत क्या है। इसी गुफ्तगू में कफन का इख्तितामिया मुझे याद आया, कफन के इख्तिताम में बाप बेटे शराबखाने के बाहर निकल आए हैं वो शराब पीकर खाना खाकर, वहां बहुत ही एक अजीब और गरीब पहलू है तारिक साहब उस अफसाने का, कम ही लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो दी, एक छोटी सी लाइन एक लोकगीत की वहां पर प्रेमचंद ने इस्तेमाल की, ठगनी नैना क्यों झमकावे ठगनी, ये एक छोटी सी छोटा सा मिसरा है, छोटा सी लाइन जो है ये गा रहे हैं, अगर हम इस ठगनी को जिंदगी मान लें
1: बिल्कुल,
2: ठगनी नैना क्यों झमकावे ठगनी, वो पूरा क्राइसिस वो पूरी जो एक करना चाहिए कि ग्रिम कहानी दुख भरी जिंदगी की एक पूरी तफसील बताने के बाद भी जिंदगी के लिए एक कशिश
1: जी
2: कफन जैसी चीज

0: के पैसे को खा पी कर चार जाने वाले लोग, वो उनकी जबान पर ये मिसरा है, ठगनी नैना क्यों झमकावे ठगनी। तो मेरे समझ में ये आता है, महदूद समझ में, कि प्रेमचंद इस लाइन के जरिए कह रहा है कि इस तमाम तर सरबत जहमत तारीकी गुर्बत इफलास माफीजेगा इंसानी कमीनगी के बावजूद ये जिंदगी अपनी एक कशिश रखती है
1: जी।
0: ये जो इसके ये ठगनी जो है ये हमारे दिल को मोह रही है, और इसके जो नैना झमकावे आंखें, यानी उसी जबान में अर्ज करूं कि आंखें मटका मटका कर जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है जिंदगी, ये हमोज पुरकशिश है।
1: मरियान इस बात से आपकी एक दूसरी बात जहन में आ रही है, शायद जो है दिलचस्प हो, पूरी कहानी नसर में लिखी जाती है, इख्तितामिया नज़्म में होता है।
2: वाह,
0: ये बहुत अच्छा
1: कोई जुमला हो, चाहे वो मंजूर ना हो, लेकिन फिर भी वो नज़्म
0: होता है। हम जानते हैं तीनों लोग कि कहानी के इख्तितामी जुमले कितना पसीना बहवाते हैं, और अगर उसके बनाने में हम जरा सा चूक जाएं तो हमारी वो पूरी इमारत जो है, जो हम नीचे से दिखाना शुरू कर रहे हैं, कहिए कि जो बल्कि ये कहिए कि समंदर में नजर आता हुआ जहाज है जो हमें नीचे से दिखाई देता है, तो अगर हम क्लाइमेक्स में चूकते हैं तो जाहिर है कि हम पूरी कहानी की तामीर के भी हकीकी मायने में कहना चाहिए कि जिम्मेदारी या उसके क्राफ्ट को बढ़ाने वाले नहीं बन सकते। तो अर्ज में कर रहा था कि भाई अजहर वजाह साहब का फरमाना कि मुसन्निफ एक बाशऊर अमल से, एक पुरशऊर एक शऊरी अमल से गुजर रहा होता है, वो कोई एक लाशऊरी या दीवानगी का मरहला नहीं होता। अपनी दीवानगी को मलफूज करने के लिए जो अक्ल वो इस्तेमाल कर रहा है उसका जौहर कहानी के अख्ताम में खुलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर हम उसको एक मामूली चीज, और यू ही निभस्त मामूली से अफसाने, हाँ देखिए क्या याद है, मामूली से इख्तितामिया बजाहिर नजर आते हैं, जैसे सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानी आदमी का इख्तितामिया, कार में वहां पहुंचा है उस बाग के किनारे जहां पर जहां से वो बचपन में गुजरा है, और उस बाग के माली को फावड़े से मिट्टी खोदते बारहा देख चुका है, वो उसका एक तरह का बुजुर्ग दोस्त है, लेकिन जिस जमाने में वो बालिग है, एक ऑफिसर है, उस जमाने के सोशल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स ने उस आदमी की हैत बदल दी।
1: बिल्कुल।
0: और वही कह रहा है कि उसको अपने दोस्त को लेकर भागता है बाग से, वो कार में बिठाता है, कार चला तेजी से चला कर ले, फिर वो दोस्त पूछता है कि आखिर क्या देख क्या हुआ, तो कहता है बाग में एक आदमी था, उसके हाथ में कोई हथियार था जो जमीन पर टिकाए हुए खड़ा था। नहायत थी कहना चाहिए वो सादा जुमला है, लेकिन अगर पूरी कहानी की कोख से नहीं निकला होता ये सारा जुमला,
1: बिल्कुल
0: उन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद वजूद में ना आया होता, तो बाहर की कहानी की वो मानवीयत ही नहीं बन पाती जिसके गरज से मुसन्निफ ने अफसाना लिखा।
1: और हर दौर में मैं समझता हूँ अक्सर ये कि हिंदी में भी जो गुलेरी या प्रेमचंद या उसके बाद का दौर था, और आखिर आते आते नई कहानी तहरीक जब शुरू होती है, तो वहां ऐसा लगने लगा जैसे प्लॉट का रिवायती अंदाज बिल्कुल खत्म हुआ है, प्लॉट टूटा है, इसके बावजूद इख्तिताम ने अपनी हैसियत को नहीं खोया। जैसे मुझे कहानी अभी याद आई मन्नू भंडारी की, यही सच है,
0: यही सच,
1: जिसमें वो एक लड़के से मोहब्बत करती है और एक लड़का वो है जो कभी उससे पहले मोहब्बत करता था, जो इस वक्त दूसरे शहर में है। यहां ऐसा लगता है कि शादी इसी लड़के से होगी जिसके साथ ये इस शहर में है, लेकिन किसी काम से इंटरव्यू के जब वो दूसरे शहर पहुंचती है तो वहां पुरानी मोहब्बत फिर से जागती है, और ये एहसास कारी को होने लगता है कि अब शादी इससे होगी, लेकिन जब वो पुराने अपने इस शहर में आती है जहां ये दूसरा वाला लड़का था, तो आखिर में फैसला दोनों शादी का करते हैं। बिल्कुल वाजह नहीं किया कि ये फैसला क्यों किया, और जिस तरह रिवायती इख्तिताम होता था और क्लाइमैक्स के बाद इख्तिताम आता था, उसके छोड़ने की वजह भी समझ में नहीं आई। बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत कर रहा है वो सच्चे, और ये भी सच्ची कर रहा है, तो यहां फिर जब कहानी खत्म हो गई तब इस इख्तिताम की अहमियत पता चली, सोचते रहने के बाद कि इंसान जो आज जिस सेटअप में है उसमें वो फैसला वक्ती तौर पर जहां उसकी उस वक्त की जरूरियात पूरी हो रही हैं, उसको वो बगैर किसी पुराने फोर्स से रुके हुए उसको अख्तियार कर लेता है, यानी यहां मोहब्बत बेमानी हो जाती है, यहां

0: उसके दूसरे जो ख्वाब हैं वो बेमानी हो जाते हैं। यहाँ हकीकत जिंदगी की ठोस हकीकत है, मजबूर उसको मजबूर भी नहीं करती, उसको आमादा करती है कहानियां बहुत अहम हो जाता है। तो इसी तरह हिंदी में बहुत सी तहरीकें आई, उर्दू में जदीदियत का रुझान आया, बल्कि आप अगर जदीदियत का उर्दू के अलावा हम बात करें तो काफका जैसे एक अफसाने का जिसके बारे में हम सभी कह सकते हैं कि उसके यहाँ प्लॉट की जाहिर कोई अहमियत नहीं है और अलामतों का इश्तेहारों का जोर था, उसका एक बहुत छोटा सा मिनी अफसाना है। हालांकि डॉक्टर असगर वजह साहब ने वो सब अफसाने उनके देखे होंगे कि बाद अफसाना तो अधूरे ही छोड़ देते थे और इख्तिताम पे तस्वीरें बना देते थे कुछ, यानी गोया इख्तिताम उनका लफ्जों में नहीं बल्कि मुसव्वरी में हो जाता था। एक उनका छोटा सा अफसाना है दरख्त, सिर्फ तीन जुमले हैं उसमें, तीन चार जुमले हैं कि हम सब बर्फ में लगे दरख्तों की मानिंद हैं कि हवा के एक झोंक एक हवा का एक झोंका हमें उखाड़ के फेंक सकता है। दूसरा जुमला है कि लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक पैवस्त हैं, यहां तक तो उसकी तसल्ली होती है। आखिरी जुमला जिसको हम इख्तिताम कहेंगे वो सिर्फ इतना वो लिखते हैं, जैसा कि डॉक्टर असगर वजह साहब ने भी कहा कि वो शायरी में होता है, सिर्फ इतना लिखते हैं ये भी तो महज एक धोखा ही है। तो जब वो ये कहते हैं तो लगता है कि ये इख्तिताम का वो जोर है जो कारी के जहन पर और दिल पर असर करता है।
1: तो ये भी तो महज एक धोखा ही है, पर मुझे हतक का इख्तिताम याद आ रहा है, मंटो की कहानी हतक, जिसके इख्तिताम में सुगंधी जो है वो अपने खारिश जदा कुत्ते को
0: अपने समय और किस तरह वो बदला लेती है एक तरह से।
1: हमें वो पूरा कहिए कि आपकी बात कि उस अब उसकी फितरत ने उस सब कुछ को कबूल कर लिया। बहुत देर तक सोचती रही, जब उसने अपने उस खला को पूर करने का कोई और जरिया न पाया, कुछ इस तरह के लफ्ज आते हैं वहां, तो उसने अपने खारिश जदा कुत्ते को गोद में भरा और उससे पलंग पर लेट कर सो गई। यानी हम यानी इस तरह कह सकते हैं दारिफ साहब कि पूरी फजा तखलीक करते करते अफसाना निगार अपने कारी को एक खास मिजाज, एक खास माहौल, एक फितरत और इंसानी एहसासात के एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां फैसले उसके मुताबिक होते हैं। और अगर ये मैं अर्ज करूं तो शायद भेजा ना हो कि उसके मुताबिक इख्तितामिया अगर है तो कामयाब इख्तितामिया है, वरना नहीं।
0: तो असगर वजह साहब, आप कुछ हिंदी अफसानों के बारे में रोशनी डालें, जैसे कफन का भी जिक्र हुआ, कफन का इख्तितामिया, कफन उर्दू में पहले छपी है, हिंदी में ये अलग बात है लेकिन हिंदी में भी वो उतनी ही तस्लीम की जाती है जितने उर्दू में है, उसके बाद क्या क्या ट्रेंड इसमें इख्तितामिया के सिलसिले में आए?
2: मुझे ये लगता है कि हिंदी उर्दू में आमतौर से यानी कुछ इसको छोड़कर तकरीबन एक सही, क्योंकि दोनों जुबानें इतनी करीब हैं एक दूसरे से और दोनों जुबानें के राइटर्स जो हैं वो एक दूसरे से इतने करीब हैं कि वो एक दूसरे से मुस्तफीद होते रहते हैं। और ये बात जो है वो सामने आती है कि दरअसल पूरा नक्शा जो है वो दोनों को साथ रखने से ही बनता है।
1: बेशक बेशक,
2: मतलब आप अदब के ऊपर हिंदी या उर्दू गुफ्तगू करेंगे
0: नहीं हो सकती,
2: तो इसी तरह इख्तितामिया पर भी करेंगे तो उसमें भी जो है वो जो बातें हम लोगों ने यहाँ उर्दू अफसाने के सिलसिले में की हैं तो बेशतर जो है वो हिंदी अफसानों के ऊपर भी। हम आप जानते हैं कि नई कहानी का जो आंदोलन था, नई कहानी का जो मूवमेंट था, तो उसमें इख्तितामिया की अहमियत ड्रामाई न होकर
0: जी
2: मतलब उसमें से ड्रामाई अंसर जो है वो कम हो गया था, लेकिन ये कि वो एक ह्यूमन सिचुएशन की एक जिसे कहना चाहिए कि ट्रेजेडी
0: जी
2: उसकी तरफ इशारा करने वाला, जैसे चीफ की दावत है
0: जी,
2: की कहानी है
0: विष्णु सारी,
2: या जानवर और जानवर है मोहन राकेश की कहानी, या कमलेश्वर की कहानी है
0: घोई हुई दिशाएं
2: हैं, तो ये सब कहानियां ऐसी हैं कि इनके जो इख्तितामिये हैं ये ड्रामाई न होते हुए भी एक कैफियत आपके ऊपर हुआ ये तारी होती है
0: जी।
2: और उस कैफियत के तहत आपको डायरेक्शन पता लगता है कि अफसाना निगार आपको किधर ले जा रहा है। उसके बाद साठोत्तरी कहानी, साठोत्तरी कहानी में ये चीज जो है वो थोड़ा सा इसमें ड्रामाई अंसुर बढ़ा, लेकिन बाद में फिर

0: ये एक तरह से बैलेंस्ड जो अप्रोच है और एटीट्यूड है सामने आया, और इस तरह से ये इख्तितामिये की अहमियत आज मतलब मैजिकल रियलिज्म के दौर में भी उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। सिर्फ ये है कि अंदाज बदलते रहते हैं, तरीक़ाकार बदलते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आज गुफ्तगू रही। इससे हम ये देखिए, एक बात और एक कहानी याद आती है मुझे, इसमें चौथाई की, ये मंटू की एक कहानी है, टोबा टेक सिंह, इसमें चौथाई की है, चौथी का जोड़ा। अब दोनों कहानियों में ऐसा लगता है कि खास मायूसी और उदासी पे अख्तितम हो रहा है। वहां वो उसकी बेटी मर जाती है, वो कफन सीते सीते दूसरे का जोड़ा सी रही है, और ये भी किरदार जाके ऐसी जगह पे मरता है जो नो मैंस लैंड है। लेकिन आप देखिए कि तरक्की पसंदों का जो एक खास नुक्ते नजर था कि कभी भी मायूसी और उदासी पे अख्तितम नहीं होता था, और कोई ना कोई रोशनी की किरण कहीं ना कहीं नजर आती थी। तो दोनों सूरतों में अख्तितम ऐसा करने के बावजूद जो एक नजर में नजर आता है मायूसी भरा, लेकिन उसमें जब टोबा टेक सिंह मरता है तब भी एक पैगाम होता है कि उसने अभी जिंदा है ऐसी कदर कि वो इधर से उधर जाने को दिल से कबूल नहीं कर सकती। तो वहां भी ऐसा रहता है खुशाइन कोई इसका अख्तितम है। अच्छा, इसमें चौथाई का देखिए वो याद होगा आपको, आखिर में उस लड़की का कफन, उस लड़की का जोड़ा सी लेती है और उसकी आंखों से दो आंसू टपक जाते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और
2: इत्मीनान का सांस लेती है।
1: अभी जुमला यही है, इत्मीनान का सांस लेती है वो। इसका मतलब दूसरों की खुशी में शरीक होके वो अपने दुख को भुलाने का एक रास्ता उसने ढूंढ लिया है, जो दूसरे की जोड़ा सीती है वो तो उससे। तो ये लगता है कि इख्तिताम की इस कदर अहमियत है कि किसी भी नजरिए का शख्स हो और किसी भी जमाने में कहानी लिखी गई हो, इख्तिताम एक खास नुक्ते उसके खास नुक्ते नजर को जाहिर करने, कहानी में वसत पैदा करने और कहानी खत्म होने के बाद भी कहानी का आगाज करने में बहुत ही मुआविन
2: कहानी
1: हुआ है।
2: कहानी यानी इसके साथ एक चीज और भी शामिल कर लें तारिक साहब, कि कहानी की जो दुनिया तामीर की है उसने
1: जी,
2: वो छोटी सी यूनिवर्स जो बनाई है, उस यूनिवर्स का मुद्दा
1: जी
2: या उस यूनिवर्स से खल्क होने वाली बसीरत
1: जी,
2: वो विजन जो क्रिएट करना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ की इजाजत चाहूंगा कि पूरी दुनिया में मौजूद होने के बावजूद मुसन्निफ जब कहानी लिख रहा होता है तो वो एक अपनी दुनिया बना रहा होता है
1: जी,
2: वो लम्हे होते हैं उसके अपने कायनात खल्क करने के, उस कायनात के अपने मुतालबे जिन्हें हम अफसाने के आदाब भी कह सकते हैं
1: जी,
2: जो आदाब कभी नहीं छूटते। हर कहानी का एक आगाज जरूर होगा
1: जी,
2: कहीं ना कहीं वो तेजी इख्तियार करेगी, उरूज की तरफ जाएगी, फिर उरूज से इख्तिताम की तरफ जाएगी और फिर वो इख्तितामिया जुमले हमें मिलेंगे। प्लॉटलेस कह लें हम
1: जी,
2: कोई भी टर्म इस्तेमाल कर लें, एक फितरी तरीका कहानी का जो हमेशा से है वो हमेशा बाकी रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: तो इसमें यानी वो पूरी दुनिया आपने जैसे अभी जिक्र किया टोबा टेक सिंह, विशन सिंह जो है वो पड़ा हुआ इधर उधर पड़ा हुआ,
1: बिल्कुल
2: आदमी न जाने कहां कहां इस तरह की सरहदें पैदा बन रही हैं और हो रही हैं। तो यानी कहानी अपने तौर पर एक हर कहानीकार, हर अच्छा बड़ा अहम कहानीकार अपनी दुनिया बनाकर पेश करता है और हमें अपनी दुनिया में जीने की कुव्वतें उससे मिलती।
1: तो ये बहुत अच्छी आज गुफ्तगू रही। यूं तो अफसाने के बहुत से अजजाए तरकीबी उनवान से लेकर इख्तिताम तक अपनी अपनी जगह अहम है, लेकिन आज खास तौर से इख्तितामिया पर प्रोफेसर असगर वजाह साहब ने, डॉक्टर शमसुल्लाह उस्मानी साहब ने इतनी गहराई में उतरकर गुफ्तगू की कि इख्तितामिया के मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने आए, उर्दू हिंदी और दूसरी जबानों के अफसानों के हवाले से हमने जाना कि इख्तितामिया की हर दौर में क्या अहमियत रही है। गोया के इख्तितामिया ही एक वो जुज है जो अफसाने की तख्लीक में मरकजी हैसियत रखता है, वो मरकज में हो या ना हो, क्लाइमैक्स के बाद आए या क्लाइमैक्स उसी पर खत्म हो जाए, वही कहानी खत्म हो जाए क्लाइमैक्स पर ही, लेकिन इख्तितामिया बहुत ही मजबूत और बहुत पुर असर अगर है तो वो कहानी को यकीनन एक बड़ी कहानी, सोचने वाली कहानी और अहम कहानी बना देता है। इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म होता है और अब हम इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: समय आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबी नशिस्त, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। میڈیم ایف 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. جسے ہم نے پیش فرمائش فلمی نقموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد، تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے پرخلوص آداب.

नोएडा उत्तर प्रदेश से, फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी, और टाइगर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की फरमाइश। ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है मगस्ता गेट भावपुर मड़ियाऊ जौनपुर से, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनही जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। ये फरमाइश सांगली जिले के जत शहर से मौसूल हुई अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला।

राजेंद्र कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता और मौसम गुप्ता फरमाइश इस साल करते हैं। ऐशबाग लखनऊ से रानियों के गुप्ता रश्मि गुप्ता ने भी फरमाइश इस साल की है। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली मीना श्रीमाली और ये फरमाइश अनागली बाजार जग राव से कमल पटक सुनील पटक गुप्ता मल्होत्रा और ये हमें फरमाइश इस साल की है। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी मुदस्सर साबरी मुजक्के साबरी और कुछ और दोस्त अहबाब रेलवे रोड गंजवारा से मोहम्मद फरमाइश हमें सेल करते हैं। मोहम्मद करीम जख्मी जिसमें बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी और इसके अलावा हमें और भी फरमाइशें मौसूल हुई हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली फरमाइश सेल करते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल यादव अनुसूया यादव पवन राज जाधव कालका से शुभचंद बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज सेक्टर सिस्टर मोहाली चंडीगढ़ से टीली महतरा रीतिक महतरा प्रतीक मल्होत्रा और ये फरमाइश शामिल करते हैं। गुजरात गांधी से गांधीग्राम से परमीन सोनी कलावती सोनी बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत गोहणकर लाडला टुक टुक गोहणकर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर ओम कुमार सुरलकर पटियाली रोड उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी नसद बेगम बेबी अरीबा हबीबा मुल्लांपुर दाखा से राजेश जैन बिट्टू जैन संजीव जैन और ये फरमाइश शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी अनिता सैनी गौरव सैनी बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और रमेश साहू इनके साथ है। फरमाइश साल करने वालों के नाम हैं दतरंगी भड़ापार छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और साथ में घर एक और साथी है। बड़ी खाम गांव से अनंत वाड़ है रामेश्वर वाड़ है और शुभम साक्षी और साथ में इनके घर के तमाम अफराद शाहिना हसन नाजिया इब्राहिम सहारन गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से फरमाइश साल करते हैं। आइए आपको काला बाजार फिल्म नकमा सुनाते हैं। मोहम्मद रफी का गाया हुआ शैलेन्द्र नकमा निगार मौसीकार सचिन देव बर्मन है और ये फरमाइश हमें इस साल की है। रुद्दीन मंठाल आसिफ भट्टी और शब्बीर भट्टी और आसिफ इकबाल कर्नाटक गुलबर्गा से ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और नवान शहर कोलाम रोड और गोविंद नगर से सुरेंद्र संधु अनित संधु रितेश संधु फरमाइश सेल करते हैं। ये फरमाइश हमें भेजी है शास्त्री नगर बीस शहर से किशन सबकाल अशर सबकाल और विशाल सबकाल ने कन्या मोहल्ला पटियाला से मुखिल बत्ता नीलम बत्ता और हार्दिक बत्ता इनके साथ एक और साथी है। दो महल महसूस सीतामढ़ी बिहार समसर जहानाज तरह जहानाज और फरहत जहां नाज को भी हमने शामिल कर लिया है। और इसके अलावा ये फरमाइश हमें साल की है मानक चंद राठौर अशोक कुमार वाघे मोहम्मद रफी पवार ग्राम जामली कला से फरमाइश साल करने वालों के नाम बड़ी गबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द और घर के
میں پورا ادےپور سے سبیہ خانم فریدہ بانو رئیسہ خاتون، یہ فرمائش ہمارے گوگل نگر دلی سے موصول ہوئی، ظفر معظم شیخ، فاروق تبسم شیخ اور بیبی علی شبہ شیخ. تو لیجیے سامعین، آپ سب کی پسند پرین رقم آپ سب کی خدمت میں.

am Ende am Ende प्रोड्यूसर ने फिल्म का नाम नगमा आपको सुनाते हैं किशोर कुमार का गाया हुआ नगमा निगार राजन कृष्ण ने और मौसीकी तरतीब दी है आर डी बर्मन ने फरमाइश आप सब की देश में गई तुम्हारे से पंजाब राम टिके यशोधरा राम टिके और शौभ्य राम टिके की फरमाइश पर आपने ये धमा सुना अगली फरमाइश हमें इस तरह से मौसूल हुई है खेला पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी अरोड़ा और रायगढ़ शरीफ जिला खंडवा से सलीम चौधरी माहिनूर सुल्ताना गांधी रोड गंजवाड़ा से मोहम्मद अजीम मोहम्मद जावेद मुन्ने सलमानी नंदन कुमार सिंह अंकित कुमार सिंह संदीप कुमार सिंह और इनके एक और साथी हैं जिला बेगूसराय बिहार से फरमाइश हमें साल करते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा की फरमाइश लेकर आए हैं के संजीव डाबे राव डॉक्टर रसिका डाबे राव डॉक्टर कौस्तुभ डाबे राव विदर्भ अकोट से तशरीफ लाते हैं नरेंद्र मिर्गी प्रियदर्शनी मिर्गी डॉक्टर प्रियंका कालपांडे साईनगर आरवी महाराष्ट्र से फरमाइश हमें साल की गई है गंगा दरिया में कर प्रमोदिया में कर प्रदीप में कर मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से और ये फरमाइश जोहानगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी की मौसूल हुई है तो ये जमीन आपकी पसंद प्रिय हुआ

ये आकाशवाणी है बरसगीर की खबरों के साथ मैं तनवीर। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तसादी तालमेल की अक्कासी होती है। आज कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलावामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा। मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए के माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मनसूबाबंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने ओडिशा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश कयादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख्वातीन और जवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे। गुज़श्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी असलाहत के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाख्तियार बनाया है, टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंक कारी को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज को मजीद बेहतर बनाया। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा जीएसटी में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे आम लोगों को हिफ्जान सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केन्द्रों पर मियारी जेनेरिक दवाएं 50 से 80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आज सुबह मालवीय नगर दिल्ली के एक होटल में भयानक आग लगने के वाके में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया है। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है।

0: भी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस अहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमलावरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई के लिए होटल, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला और शुमाल मशरकी काउंसिल के चेयरमैन अमित शाह कल मेघालय के शिलांग में काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए बनाई गई वजीर आला की आला सतही टास्क फोर्स की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका IOC PLC ने सपूस गासकांडा पावर स्टेशन के 2026-27 प्लांट ए के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। इस सिलसिले में श्रीलंका की काबीना ने भारत की कंपनी RS इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की मंजूरी दी है। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावेन फोम विहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दरीना सकाफती ताल्लुकात हैं, जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के कयाम की 70वीं सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। आज सुबह सवेरे कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। एक ड्रोन कुवैत के फजाई दिफाई निजाम को पार करते हुए कुवैत के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के असल मुसाफिर टर्मिनल पर गिरा, जिससे एक भारतीय शहरी हलाक और दीगर 63 लोग जख्मी हो गए। कुवैत में भारतीय सिफारत खाने ने इस हमले में अपने एक शहरी की हलाकत की तस्दीक की है और सोगवार कुनबे से दिली ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि मिशन कुवैती ओहदेदारान के साथ करीबी राबते में है और हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एलियोना रॉड्रिग्ज गोमेज भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफद भी उनके हमराह भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्ज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादला ख्याल करेंगी। इस तबादला ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तिजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शुबों में मजीद ताउन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वेंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। और आज कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। ये समय न पेश है फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तमिल शाद के बाकी नगमे।

मंडी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी इस नंबर को सुनना चाहते थे। सफी मुल्ला जी, गिरीश मुल्ला जी, रफीक मुल्ला जी भगत बेल हुगली कर्नाटक से, और ये फरमाइश गौतम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़, लेक सिटी उदयपुर से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। सोना सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और दीगर घर के अफराद गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से फरमाइश ये हमें मौसूल हुई है। कहां से? सब्जी मंडी बुल्ताना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा की। और उपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंद शहर से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद सैद अब्बासी, नगर परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी। ये फरमाइश विजय पाटिल, पूनमभाई पाटिल, चिरंजीव नयानेश्वर पाटिल, महाराष्ट्र जालना से फरमाइश में इन्होंने भेजी है। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार झाजी भी हैं और इनके साथ इनके दीगर दोस्त अहबाब। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एम पी शाहजहांपुर से मोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित भी प्रोग्राम में शामिल हुए। अगली फरमाइश इस तरह है। मलियान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मास्टर जिव्याम जैन। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। और ये फरमाइश हमें, जैसा कि हमने आपको बताया, मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी की है, साथ में उनकी गुड़े कुमारी, भव्य कुमारी और उनके दीगर दोस्त अहबाब और घर के साथी हैं। ब्राउन थाना पंजाब से हरजीत छिंदा, जसवी जस्सी, सीता, गीता। सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग भी फरमाइश लेकर आए हैं। मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयुब खत्री, चिपा कॉलोनी खंडवा से फरमाइश भेजते हैं। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद है, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना, काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से। नगमनिगार मजरूह, सुल्तानपुरी और मौसीकार चित्र गुप्त फरमाइश हमें इस साल की है। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, आरव खुराना और साथ में घर के दीगर अफराद। फरमाइश हमें फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजी नासिर, साजिद शाहिद की मौसूल हुई है। और दूसरा फरमाइश मोहम्मद शराफत रंगरेज, आसिफ रंगरेज, सादिक रंगरेज, वसई ईस्ट मुंबई से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज, तला जहानाज, मुफरहत जहानाज को भी हमने शामिल किया है। और ये फरमाइश आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, आशीष गौड़। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता गौड़, निखिल कांगड़ा, सुशांत प्रिया झा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, टंबा मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से फरमाइश इस्तेमाल की है इन्होंने। ठीकरी मध्य प्रदेश से शबनम और इनकी शौहर अक्रम और दोनों बच्चे भी शामिल हुए हैं। और इसके अलावा स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी, टुक टुक सामिन। अब
आपको आपकी पसंद का नगमा सुनाते हैं, काले टोपी लाल रुमाल फिल्म से।

समय लता मंगेशकर का गया हुआ डिनर में आप ये सुन रहे थे ब्लैक कैट फिल्म से। हमारे यहाँ जानिसार अख्तर मौसीकी तरतीबी थी एन दत्ता ने और फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई थी। ये फरमाइश करने वाले हैं गांव फरान से जिला हिसार से राजकुमार दूती प्रमोद कुमार दूती और विनोद वंडलकर वीना वंडलकर विविधा वंडलकर। मैं इस नाम को सुनना चाहता रायगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ से। और अब ये फरमाइश इस तरह थी तेज संतोष एस काले तेजस एस काले शिगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से लोकेश एस काले इनके साथ है। सहारनपुर जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो और इनके साथ उनके कुछ और साथी हैं। छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विश्वकर्मा चेतन विश्वकर्मा त्रिशोनी चौहान अंकिता अग्निकेत चौहान विजय चौहान और वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। फरमाइश ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से सारू नूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमदी और दीगर दोस्त अहबाब अहमदपुर के गांव खंडवा से कैलाश फूलमाली दीपक फूलमाली और वैदिका फूलमाली महमूद बंदे युमला जी और अब्दुल्ला वाघ जी डबावरा सूरत गुजरात से। ये फरमाइश इंद्र चौक दिल्ली से हमें मौसूल हुई है अजीम वकार माहिर अजीम और निशा अजीम की। अस्तूरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी बेगम रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवान परवीन अब्दुल्ला आजाद छोटे बलिया मुंबई करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले जोहित सदफ फुलवाले लखमीनिया जिला बेगूसराय से ये फरमाइश सर करते हैं शमीम अहमद फुलवाले इमरान अहमद फुलवाले और अहले खाना साबरा शवान और रईसा खंडवा की तीनों भूमि शामिल हुई हैं। ये फरमाइश हमें इस साल की है मुल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान शेख मोहम्मद अजीम भाई कामरान खान जेल रोड जलंधर से रोशन जहां मन जहां इशरत जहां सौराष्ट्र राजकोट से जुली जगदीश गुजराती जलेश गुजराती और लड्डू कुमारी असीन नबी मंसूरी रफीक मंसूरी पालदाना का इंदौर मध्य प्रदेश से सैयद शमा परवीन सुफियान इमाम अर्शी सुल्तान गिरडी झारखंड से ताजमहल अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर

चौधरी द्वार से, कोलकाता से सुब्रत चौधरी फरमाइश लेकर आए हैं। शर्मा मनवा डॉक्टर दबीरुल हसन और इनके साथ हैं बी मोहन प्रकाश गौतम, अभी खुसरो रोड गंज द्वारा से। गाजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, अशरफ मंजू और आई सामिन, अब आपको सुनाते हैं बेटी बेटे फिल्म का नामा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज सुने। सर जयपुरी नगमा निगार मौसीकार शंकर जय किशन, फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई है। संतोष नामदेव, संजना, अनन्या और घर के तमाम अफराद, मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोराई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश हमें इरसाल की गई है। और इसके अलावा और भी पैगामत प्राणा तलब से वलीला अंसारी, उस्मान अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, फैज अहमद अफसाना हो रहे फातिमा गायत्री कॉलोनी खंडवा से, हमीदा बानो आशा भदौरिया और सईदा बानो खंडवा की सहेलियां, गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी, बांदा आरमकोट मुंबई ईस्ट से शाहीन परवीन सोनम, मारिया आयश शेख, मोहम्मद अरीफ शेख, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हनीफ पेंटर बाबू खती कॉलोनी खंडवा से, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले की फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं और ये फरमाइश हमें इस साल की है। सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन सुनार, कुसुम और सरोज सुनार ने, नामुरवाड़ी महाराज से सुपन ताड़े, वसंत राव भोज ने पीएस ना होकर, पिपरिया से कमलाकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, अहमदपुर मरलडाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, मीना राजेश रिंकी, गुलाब का कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से राजीव भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक और ये फरमाइश तमराम चेन्नई से, शाहिद अली फतवारुकी और हिफ्जा अली की, जमी जोरी पूजा और पाई जोरी कंडला बंदरगाह कच्छ से फरमाइश साथ करते हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। तो लीजिए साहब, आप सबकी पसंद है, आप सबकी खिदमत में है।

ऐसा मीन प्रोग्राम के अंदर में आपको सुनवाते हैं शर्त फिल्म का नगमा, हेमंत कुमार का गाया हुआ, और इस नगमे को कलमबंद किया है मौसीकी तरतीब दिए खुद हेमंत कुमार ने, और कलमबंद किया है SH बिहारी ने। फरमाइश आप सबकी है, ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। संतोष जायसवाल, मधु जायसवाल और अमन जायसवाल पंधाना जिला खंडवा से। गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नुमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख। गंगाधर सोनकर की फरमाइश शामिल करनी है लेकिन उन्होंने अपने नाम हमें इरसाल नहीं किया अभी तक, और ये फरमाइश हमें इरसाल की है अल्तमस अमीना और फिर दोस्त ने जुमा कर खंडवा के ये बच्चे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा दिशानी और इनके साथ इनके एक और साथी है। आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से मोहम्मद मुजीब शेख, जैना नाबिया शेख, बेबी अमीरा शेख। और ये फरमाइश उदयपुर से रमेश नचानी, मिनित नचानी की शामिल हुई। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्य जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी। मेरठ कैंट से सुरेश, संदीप और अनुश्री। राहड़गांव के अमरावती महाराष्ट्र से दीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर। श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्ष जेठवा। और ये फरमाइश है प्रोफेसर कलोरी खंडवा, मध्य प्रदेश, आनंद जोशी, तनुजा जोशी, फाल्गुनी जोशी और इनके साथ इनकी एक और साथी है। उदयपुर राजस्थान से नजीब खान, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान। मरोड़ पंजाब से राज शर्मा, योगेश शर्मा, मांडी शर्मा। फरमाइश इरसाल करने वाले हैं उमर खेर से नरेंद्र, सिराज और शबाना। फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और साथ में कुछ और साथी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से ये फरमाइश इरसाल करती है। ताज लिसंस क्लब कल्लमगंज खंडवा से कौशल बी पवार, हसीना बी पवार, हिना सईद खोखर। जलंधर से संदीप कुमार जटोलिया। और फरमाइश साल हमें की है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। तो लीजिए सामने आप सबकी पसंद पर ये नगमा आप सबकी खिदमत में है।

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2025 में सालाना शमसी तवानाई की सलाहियत में इजाफे के लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी शमसी तवानाई की तरक्की करने वाली मंडी का मुकाम हासिल कर लिया है। भारत ने नसबशुदा शमसी तवानाई की मजमुई सलाहियत 155 गीगावाट से तजावुज कर गई है, जिससे मुल्क को गैर हयातियाती ईंधन से 50% तवानाई हासिल करने के हदफ के हुसूल और अपनी कौमी सतह पर तयशुदा अहदाफ एनडीसी को मुकर्रा वक्त से पहले पूरा करने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी अहम स्कीम में आवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला रही हैं और अब तक 40 लाख से ज्यादा कुनबे छतों पर नसब शमसी निजाम रूफ टॉप सोलर के जरिए मुस्तफीद हो चुके हैं। इस नुमाया कामयाबी को उजागर करते हुए नई व काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की शमसी तवानाई की तरक्की की दास्तान आलमी मेयार कायम कर रही है और मजबूत पॉलिसी मुआवनत जिद्दत तराजी और आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की बदौलत रिकॉर्ड सतह पर सलाहियत में इजाफा हो रहा है। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलावामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपने आप में ये काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा। मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए के माली अखराज के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खत्ते से मुतालिक मनसूबाबंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला और शुमाल मशरकी काउंसिल के चेयरमैन अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खत्ते की तरक्की की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए बनाई गई वजीर आला के आला सतही टास्क फोर्स की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में शुमाल मशरकी विजन प्लान 2047 पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें 2047 तक शुमाल मशरकी खित्ते को इक्तिसादी तरक्की का एक मरकज बनाने, कनेक्टिविटी, इख्तिरा, पायदारी और सकाफती खुशहाली में बदलने के लिए एक तवील मुद्दती खाका पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेट फ्रेडरिकसेन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक्तदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकतदारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिकसेन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एलियोना रॉड्रिग्स गोमेज भारत के पांच रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उन्होंने खारजा इक्तसादियात और खजाना के वुजरा और दीगर हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमराह भारत आया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के साथ दो तरफा तबादला ख्याल करेंगी। इस तबादला ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत व सरमायाकारी, दवा साजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद ताउन के लिए राह हमवार करना शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: कल मालवीय नगर दिल्ली के एक होटल में भयानक आग लगने के वाके में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया है। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि डीएम डीसीपी और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में आज से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमलावरी से मुतालिक मुआयने ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल गेस्ट हाउसों नर्सिंग होम्स कोचिंग सेंटर और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापूस गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट A4 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। इस सिलसिले में श्रीलंका की काबीना ने भारत की कंपनी RS इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की मंजूरी दी है। कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। एक ड्रोन कुवैत के फिजाई दिफाई निजाम को पार करते हुए कुवैत के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के असल मुसाफिर टर्मिनल पर गिरा जिससे एक भारतीय शहरी हलाक और दीगर 63 लोग जख्मी हो गए। कुवैत में भारतीय सिफारतखाने ने इस हमले में अपने एक शहरी की हलाकत की तस्दीक की है और सोगवार कुंबे से दिली ताजियत का इजहार किया है। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंगसावन फोमविहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दैरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के कयाम के 70वीं सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संगमील है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वेंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और रुत्विका की जोड़ी ने चीनी ताइपे के यांग पो हुजान हुलिंग फांग की जोड़ी को स्ट्रेट गेम्स में 21-14 से हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सालाना शमसी सलाहियत में इजाफे के लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शमसी तरक्की करने वाली मंडी बन गया है। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिग्स 5 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गई हैं और दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के सबब एक हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शुरुआत। जैसा मैंने पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब्द।

ये आकाशवाणी है, जमीन आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। निजामैन पेश है क्लासिकी मौसिकी। इस प्रोग्राम के तहत अब्दुल हलीम जाफर खान का सितार पर बजाया राग मिश्र शिव और रंजनी शिव पहाड़ी सुनते हैं।

अफसर फिल्म का नाम आपने सुना, सुरैया का गाया हुआ। आइए अब हेमंत कुमार को सुनते हैं, फिल्म है घर नंबर 44।

मन का कहना मत डालो, मन को पिंजरे में न डालो।

कहेगर विस्क पियो फिर छिस्की मिले तुम पुस्क पियो। अरे तीन चीज है ये करो मत गम, भाई तीन चीज है ये करो मत गम, कभी नहीं सोचना कि थर्रा ये रम, कितने पियो के उखड़ जाए दम, बाटली मिले तो पूरी बाटली खत्म। अरे जब विस्की से मन भर जाएगा, भर जाएगा तो तौबा कर जाएगा, मन पे जो कोई काबू कर जाएगा, भवसागर से वो तर जाएगा।

देती है। इस नए दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स 5 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गई हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के सबब एक हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2025 में सालाना शमसी तवानाई की सलाहियत में इजाफा के लिहाज से अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शमसी तवानाई की तरक्की करने वाली मंडी का मुकाम हासिल कर लिया है। भारत में नसबशुदा शमसी तवानाई की मजमुई सलाहियत 155 गीगावाट से तजावुज कर गई है, जिससे मुल्क को गैर हयातियाती ईंधन से 50% तवानाई हासिल करने के हदफ के हुसूल और अपनी कौमी सतह पर तयशुदा अहदाफ एनडीसी को मुकर्रा वक्त से पहले पूरा करने में मदद मिली है। वजीर आजम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी अहम स्कीमें आवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला रही हैं और अब तक 40 लाख से ज्यादा कुनबे छतों पर नसब शमसी निजाम के जरिए मुस्तफीद हो चुके हैं। इस नुमाया कामयाबी को उजागर करते हुए नई वकाबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की शमसी तवानाई की तरक्की की दास्तान आलमी मेयार कायम कर रही है और मजबूत पॉलिसी मुआवनत जिद्दत तराजी और आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की बदौलत रिकॉर्ड सतह पर सलाहियत में इजाफा हो रहा है। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलावामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा। मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए के माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खत्ते से मुतालिक मनसूबाबंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखला और शुमाल मशरकी काउंसिल के चेयरमैन अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए बनाई गई वजीर आला की आला सतही टास्क फोर्स की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरे बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिकसन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद मुश्तरका इख्तदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एलोइना रॉड्रिग्स गोमेज भारत के 5 रोजा दौरे के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। अमूर खारजा इक्तसादियात और खजाना के वज़रा और दीगर हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफद भी उनके साथ भारत आया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिक्स वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के साथ दोतरफा तबादला ख्याल करेंगी। इस तबादला ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कल मालवीय नगर दिल्ली के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया है। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस अहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जामात के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली

0: म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाके की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि डीएम, डीसीपी और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में आज से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमलावरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई के लिए होटल, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापूस गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट A4 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। इस सिलसिले में श्रीलंका की काबीना ने भारत की कंपनी आरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की मंजूरी दी है। कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर ईरान जंग में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। एक ड्रोन कुवैत के फजाई दिफाई निजाम को पार करते हुए कुवैत के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के असल मुसाफिर टर्मिनल पर गिरा, जिससे एक भारतीय शहरी हलाक और दीगर 63 जख्मी हो गए। कुवैत में भारतीय सिफारतखाने ने इस हमले में अपने एक शहरी की हलाकत की तस्दीक की है और सोगवार कुनबे से दिली ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि मिशन कुवैती ओहदेदारान के साथ करीबी राब्ते में है और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए काम कर रहा है। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दरीना सकाफती ताल्लुकात हैं, जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसा और रामायण से जाहिर होते हैं। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वेंग हॉन्ग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका की जोड़ी ने चीनी ताइपे के यांग पोसान और हुलिंग फांग की जोड़ी को स्ट्रेट गेम्स में 21-14 से हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सालाना शमसी सलाहियत में इजाफे के लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शमसी तरक्की करने वाली मार्केट बन गया है। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स 5 रोजा दौरे पर भारत पहुंच गई है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैरआदतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वेंग हॉन्ग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामीन शब का एक बजा चाहता है उर्दू सर्विस की आज की तीसरे मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर होती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

0: काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यविट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिनफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारैक्काल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के कार्यक्रम की सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना से शुरुआत कर रहे हैं और इस खूबसूरत कार्यक्रम यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं ये आज का सुंदर बेहतरीन खूबसूरत पहला शानदार गीत।

ये बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं चेली।

जी हाँ दोस्तों, वाकई मन पाचे भागे, वाकई बहुत ही सीरियस यानी कि गमगीन, गंभीर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। मन भागे, वाकई क्या कहें इस गीत के बारे में। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं होती हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, अनमोल गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे। आज मैं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। आइए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं आपको। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहद खूबसूरत गीत रचना।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे

जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

मेहमान गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ए तेरे गरीब है तंदाना, मेहमान गरीब है तंदाना, सूरज

दोस्तों वाकई हमने तो जान गंवाई रही आई ने अब तक बालों में। बाकी बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, काहे को देर लगाई रही। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाएं आज आप सुन रहे हैं, काहे को देर लगाई रही, फिल्म दाग से लता मंगेशकर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज में शानदार रचना। ये फिल्म दाग 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत हसरत जयपुरी के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। आइए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत रचना की ओर। ये रचना आ रही है बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत गीत रचना है, तू रात खड़ी थी छत पे, फिल्म हिमालय की गोद में, जो 1965 प्रदर्शित फिल्म रही। मोहम्मद रफी साहब और उषा टिमोथी की आवाज में और साथ में कोरस यानी कि साथियों की आवाज में शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन शानदार गीत।

0: क्या बात है, क्या मस्ती भरा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बाकी लाजवाब बेहतरीन गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही शानदार रचना। जैसे कि इतने सारे गीत अभी आप सुन रहे थे, वाकई कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी जो पसंद है वाकई बहुत ही शानदार रही है, वाकई खूबसूरत भी है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, जी हाँ, फिल्म तीन देवियां जो 1965 प्रदर्शित फिल्म रही, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में शानदार रचना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और गीत और संगीत SD परमन साहब का। तो आइए सुनते हैं शानदार खूबसूरत रचना।
1: चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं इसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का

जी हाँ दोस्तों, सुनो सजना के आए दिन बहार के वाकई बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, वाकई बहुत ही कमाल और बेहतरीन रचना। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम बेहतरीन खूबसूरत गजल, जी हाँ, गीत सुनहरे के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21

मुखर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्त समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई ने कंबोडिया में यूपीआई भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक एसीएएलईडीए बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैं आपको बहुत चला
1: रहा हूँ। बर्दाश्त भी हद हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुटकी मत कहा करो। अब मैं छुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम छुटकी नहीं रही।

सुनो मेरे दीवार, मैं नाचे गए चलो आ सारी रात मेरी दीवार।

0: जय साथियों, इन्हीं सुंदर खूबसूरत गीतों के साथ आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: लापरवाही के कारण ये हुआ है। पुलिस

0: योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री जेविड कूपर भारत की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान किया शंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for the domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, "This is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers."
2: ATF price stabilization fund में
3: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs have started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: लगा था because of the stress in the sector. वो इससे significantly mitigate होगा.
1: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said, "Today he will join the first World Yoga Sena Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat." Mr. Modi said, "The platform has brought together yoga enthusiasts from around the world." United Kingdom Secretary of State for Foreign Commonwealth Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. In a major political development in West Bengal, Rita Pratap Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said that the deceased include 9 Indian

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 3:10 श्रोताओं, यह वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत और गजल का।

तिनसुकिए भगवान मुरुगन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं स्वर टीएम सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है एनएस चिदम्बरम की रचना।

I'm

Bye.

श्रोताओं, ज्ञात ब्रह्म कार्यक्रम में अभी आपने पी रामाचंद्रन द्वारा गाया राग मध्यमती सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

19 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून 2026 सुबह के 4:58 और 43 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

गौ ब्राह्मण को पर लाभ हो गोबर तरण न जाई तो तीट का तेज अपमाली तान मिले सखाई अंतर पूजा पढ़े कते बस।

ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਪਿਕਾ ਹੋ ਪਿਕੋ ਪਿਕਾ ਸਦੀਏ ਪਿਕੇ ਪਿੱਕੀ ਸੋਏ।

0: सटिए मटका विके पाहे पिता मूर्खा किए पाणाल है सजाए महला पहला
1: अंदर झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल और सरती जे नावे उतरे नाही मैं दिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हस रंग रोवे चुप्पी कर जा प्रवाह ना ही किसे करी बात सच्ची ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खा दीवाने को कल में कह महात्मा में डाले लेखा पीर छुट्टे नानक का जो तेल पौड़ी आप ही करा।